मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज शुक्रवार है।

1948 के ज्येष्ठ माह की पहली तिथि तदनुसार 22 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने को है। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला

0: मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news. मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

जिस प्रकार एक धूप जला देने से उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, उसी प्रकार अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है।

0: अभी आप लता मंगेशकर, नरेंद्र चंचल और अनुपमा देशपांडे के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम गांधी चर्चा।

दूसरी ओर कुरान शरीफ, हदीसों और पैगंबर साहब की जीवनी का भी अध्ययन किया। उन्होंने जहां एक ओर बाइबल और तोरेत का अध्ययन किया, वहां दूसरी ओर गुरु ग्रंथ साहब, धम्मपद और जैन धर्म तथा पारसी धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया। इस गहरे अध्ययन के बाद उन्हें ये सच्चाई साफ साफ दिखाई देने लगी कि दुनिया के सब बड़े बड़े धर्म मजहबों के बुनियादी सिद्धांत एक हैं। और तभी उन्होंने दावे के साथ ये कहना शुरू किया कि यदि मैं सच्चा सनातनी हिंदू हूँ तो उसी दर्जे का सच्चा मुसलमान भी हूँ, सच्चा ईसाई भी हूँ तो सच्चा यहूदी भी हूँ, सच्चा बौद्ध हूँ तो सच्चा सिख भी हूँ, और सच्चा जैन हूँ तो सच्चा पारसी भी हूँ। सब धर्मों की बुनियादी एकता जब गांधी जी ने देख ली तो धर्म मजहबों के अलग अलग फर्क उनके दिल से जाते रहे। तब उपनिषद के शब्दों में सारी वसुधा उनके लिए एक छोटा सा कुटुंब बन गई। गांधी जी ने अपने रचनात्मक कामों में सबसे पहला स्थान सांप्रदायिक एकता को दिया था। गांधी जी ने सांप्रदायिक एकता की व्याख्या करते हुए कहा था, सांप्रदायिक एकता दिलों की अटूट एकता का नाम है। आजाद हिंदुस्तान में हिंदुओं की नहीं, हिंदुस्तानियों की हुकूमत होगी और उसका आधार मजहब या सांप्रदायिक बहुमत न होगा, बल्कि बिना मजहबी भेदभाव के समूचे राष्ट्र के नुमाइंदों का बहुमत होगा। आजाद हिंदुस्तान में लोग अपनी सेवा और योग्यता के बल पर चुने जाएंगे। मजहब एक व्यक्तिगत चीज है जिसका राज शासन में कोई दखल नहीं होना चाहिए। गांधी जी मानव जाति की बुनियादी एकता पर विश्वास करते थे। वे कहते हैं, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि इंसान इंसान के बीच इस तरह का भाईचारा कायम हो जिसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी सब एक समान शामिल हों, क्योंकि मुझे दुनिया के सब बड़े बड़े मजहबों की बुनियादी सच्चाई में विश्वास है। मुझे यकीन है कि यह सब मजहब ईश्वर के दिए हुए हैं और उन लोगों के लिए जरूरी थे जिन्हें ये ईश्वर से मिले। मुझे इस बात का भी यकीन है कि अगर हम अलग अलग मजहबों की किताबों को उन मजहबों के मानने वालों की निगाह से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि सब मजहबों की जड़ एक ही है। गुजरात विद्यापीठ में अपने एक भाषण में गांधी जी ने कहा था, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मकान के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हों और सब तरफ की खिड़कियां ठूस ठूस कर बंद कर दी गई हों। मैं चाहता हूं कि मेरे मकान के चारों तरफ सब मुल्कों की संस्कृतियां, कल्चर खुली हवा की तरह पूरी आजादी के साथ बहती रहें, पर मैं ये कभी नहीं चाहता कि कोई हवा मेरे पैर उखाड़ दे।

0: अपनी एक प्रार्थना सभा में महात्मा जी ने कहा था,
1: प्रार्थना जो मनुष्य सच्चा हृदय से करता है और पीछे भगवान के साथ कोई कोई इकरार कर लेता है कि हाँ मैं प्रार्थना तो करता हूँ और उसका मुझको आज के आज उत्तर चाहिए, तो भगवान को जानता है वो क्या शक्ति है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य एक दूसरे के साथ झगड़ सकते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ तो मुझको 500 रुपया दो, तो 500 रुपया नहीं देता है तो आप उसके साथ लड़ते हैं। तो क्या हम ईश्वर जो निरंजन है, निराकार है, जिसको कोई पहचान नहीं सकता है, उसके साथ झगड़े तो नहीं हो सकता है। और या तो उस पर हम न्याय करने के लिए देखा वो भी नहीं हो। प्रार्थना का महत्व बता देना चाहता हूँ कि प्रार्थना एक ऐसी चीज है कि जो करना हमारा परम कर्तव्य है। हम खाने का छोड़ सकते हैं, पीने का छोड़ सकते हैं, कहीं जाना है तो जाने का छोड़ सकते हैं, नींद को छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन आदमी में एक भी सांस पड़ा है तब तो उसको प्रार्थना करना ही है। वो कैसे करे, तब बताया है हमको कि नाम देव। तो इस व्यक्ति ने भी जाके बताया ना कि नाम भजन से क्या होता है। और पीछे आखिर में तो कहा

से साहेब मिलत वो सबूरी में, सबूरी में कहो तो फकीर में जो कुछ भी उसमें कहना चाहते हैं तो उसमें मिल जाता है। साहेब को ईश्वर को नाम उसमें दे दिया है, बहुत बहुत बड़ा नाम है उसमें। तो प्रार्थना वो तो नाम है, नाम तो नाम स्मरण करो तो नाम स्मरण में मतलब ये होगी कि ईश्वर का स्मरण करो। तो एक आखिरी का साथ निकलता है तब तक वो नहीं चाहिए। अगर हम प्रार्थना का रूप बन गए हैं तो हमारे हाल ऐसे होने चाहिए कि हम कभी मूल से स्थिति में न रहें। ऐसा नहीं कि वो हमने ठान लिया है जैसे नमाज पढ़ते हैं कि प्रातः काल का पढ़े पीछे असर का है बीच में आता है ऐसे करें, गायत्री है संध्या है वो अपने अपने समय पर करें। लेकिन राम नाम के लिए ऐसा समय नहीं है। सारा दिन भर एक भी श्वास चलता है उसके साथ साथ वो चलना चाहिए। ऐसा जब चले तब आप कहिए कि उस आदमी का खेल है और उस आदमी को 125 वर्ष जिंदा रहने का हक है। हुआ मैं ही आप ही कोई भी मनुष्य है तो उसको कहो कि तू 125 वर्ष के पहले मर जाएगा तो हम कैसे कहें कि प्रत्येक श्वास और निश्वास में उच्छ्वास में तेरे में राम नाम नहीं था तो मैं आपको कहता हूँ कि आप कह सकते हैं। अगर मैं 125 वर्ष के पहले मर जाऊँ तो आप कह सकते हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं, जानवरों से आदमियों में फैलने वाली बीमारियां और उनसे बचाव विषय पर डॉक्टर जयप्रकाश यादव से चंद्रजीत यादव की बातचीत।

0: पशुपालक भाई, आप सब देखा तरह तरह के पशुओं के पालत है। निश्चित तौर पे भाई, चाहे वो दूध के लिए या फिर बोझा ढोवे के लिए या फिर खेत में भैया काम करे के लिए या फिर अपने सुरक्षा के लिए, तो भाई देखा इन्हन पशुओं से आपके बहुत लगाव होत है और बहुत महंगा भी पशुधन होत है। तो ऐसा स्थिति में भाई देखा आप सब कुछ ज़्यादा ही उनसे उनके करीब हो जात है। ऐसी कभों कभों देखे में आवत है कि ढेर सारी बीमारी उनके द्वारा जौन के उनमें होत है आपके में भी फैल जात है, आपके शरीर में आ जात होकर कीटाणु। तो ऐसा स्थिति में भाई देखा थोड़ा सा ध्यान भी रखे की जरूरत बाटे कि कैसे पशुओं के भी आप पाला और उनसे जौन बीमारी होत है, खतरनाक बीमारी होत है, वो आपके अंदर ना आ पावे। तो ऐसा स्थिति में आपके कुछ विषय पे, कुछ बातन पे विशेष ध्यान दे पड़े। तो आज हमारे साथे बाटे हैं डॉक्टर जयप्रकाश यादव भैया, जो उनके यही कुल के विशेषज्ञ हैं। वे आपके कार्यक्रम में स्वागत बाटे और हम आपसे जानना चाहब कि पशुओं के द्वारा कौन कौन ऐसा बीमारी बाटी जो उनकी मनुष्य में फैले के संभावना होत है और करे बचाव के लिए का कुछ करे की जरूरत है, बताऊँ।
1: देखा किसान भाई, जैसा कि आप खेती के साथ साथ घर में जानवर भी पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, तो कभी कभी इनके रख रखाव और खान पान में गड़बड़ी की वजह से ये बीमारियां पशुओं से जानवरों में फैलती हैं। इन बीमारियों को जूनोसिस अर्थात प्राण रुजा रोग कहते हैं और हर वर्ष 6 जनवरी को आम जनता को प्राण रुजा रोग

0: प्रति जागरूक करने के लिए विश्व प्राणी रुजा रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: जी
0: किसान भाइयों, जैसा कि मनुष्य में कुल लगभग 1415 बीमारियां होती हैं, जो कि विषाणु, जीवाणु, रिकेट्सिया, फफूंदों, प्रोटोजोआ और कृमि के द्वारा होती है। इनमें से 868 बीमारियां यानी 61% पशुओं के द्वारा होती हैं, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 1 अरब रोगी ग्रसित होते हैं और उनमें से लाखों की मृत्यु हो जाती है।
1: का मतलब भैया कि ढेर सारी ऐसी बीमारी बाटी जौन कि पशुअन से आदमी में फैलत बाटी।
0: जी
1: तो इन्हन बीमारियों के विषय में भैया अगर जागरूकता हो जाए तो निश्चित तौर पे भाई देखा आदमी बच बचाए के रहे और इन्हन बीमारियों से बच सकत है। तो ऐसा कौन कौन प्रमुख बीमारी हैं हम आपसे जानने चाहब जौन कि पशुओं से मनुष्य में फैलत थी, एक विषय में बताऊँ।
0: मुख्य बीमारियों में जैसे रेबीज हो गया, जापानीज मस्तिष्क ज्वर, ब्रुसलोसिस, एंथ्रैक्स, टीबी, प्लेग, लेप्टोस्पायरोसिस, क्यू ज्वर, टोक्जोप्लाज्मोसिस, लिस्मानियासिस, बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू ऐसी बीमारियां हैं जो समान रूप से मनुष्यों में देखी जाती हैं और वह पशुओं के द्वारा फैलती हैं।
1: डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहें पहले रेबीज के विषय में जो उनकी भाई एक सामान्य व्यक्ति भी रेबीज से परिचित हुआ जो उनकी जानवर के ही काटे से ये बीमारी फैलत है। तो ये कौन कौन जानवर हैं जो उनकी रेबीज के जो उन विषाणु होते हैं उनके शरीर में होता है और उसी फैलत मनुष्य में।
0: रेबीज जैसे कि एक भयानक बीमारी है जो पागल कुत्तों के काटने से फैलती है। इसके अलावा बिल्ली, बंदर, नेवले, सियार व लोमड़ी के काटने से भी यह रोग हो सकता है। इससे ग्रसित मनुष्य में दो तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, एक उग्र रेबीज और दूसरा लकवा ग्रस्त रेबीज।
1: जी
0: उग्र रेबीज में मनुष्य पागल जैसे लक्षण दिखाई देता है, वह चिल्लाता है, उसे पानी पीने एवं खाना खाने में तकलीफ होती है, क्योंकि इससे ग्रसित मनुष्य के गले की मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो जाती है और वह पानी को देखकर चिल्लाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं।
1: अच्छा काहे मतलब भैया कि ये जौन विषाणु बाटे ये जौन है रेबीज जौन का हाथ बाटे आप बीमारी फैलावत है ये पशुओं के द्वारा ही मनुष्य में फैलत है।
0: जी
1: तो
0: जी
1: काहे मतलब भैया कि अगर पशुओं से ऐसा पशु जौन के भैया पागल हो गए बा उसी दूरी रखा जाए तब ऐसी सुरक्षा हो सकत है।
0: जी
1: अगर पशु के द्वारा ये अगर विषाणु मनुष्य के शरीर में आ जात बा यानी पशु काट लेत बा तो का कुछ एक सुरक्षा बा व्यवस्था।
0: जी अगर कुत्ते के काटने के पहले दिन, काटने के तुरंत ही बाद उसको तेज़ धार के पानी से धोना चाहिए और फिनॉल युक्त साबुन से उसको अच्छी तरह धोएं और कभी भी हल्दी और उन सब का उपयोग न करें। इसको जाके पशु चिकित्सक से इसको जाके सरकारी हॉस्पिटल में इसका पहला टीकाकरण करवाएं। सबसे पहला टीका इसका 0 दिन पे लगता है, उसके बाद 3रे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 28वें दिन और लास्ट टीका 90वें दिन पर लगाएं।
1: अच्छा, तो ऐसी बचा जा सकत
0: ये
1: है।
0: जी
1: एक जो बताएं भैया आपके जापानी जो है मस्तिष्क ज्वर इका इहू के भैया फैलाव पशुओं के द्वारा होत है।
0: जी यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। क्यूलेक्स मच्छर संक्रमित सुअर एवं पक्षी जैसे बगुला एवं मैना से संक्रमण मनुष्यों में फैलाते हैं
1: जी
0: और इससे मुख्यतः बच्चे संक्रमित होते हैं और बच्चों में मस्तिष्क का संक्रमण एवं मिर्गी जैसे लक्षण मेनली देखने को मिलते हैं।
1: अच्छा मतलब इस बीमारी में जैसे मृगी के लक्षण आवत है बेहोशी हो जाए
0: जी
1: मुंह से जो ना झाग जैसे निकलब
0: जी
1: इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं।
0: जी
1: तो ये जो ना है भैया मच्छर के द्वारा फैलावा जाता है।
0: जी
1: और भैया कौन बीमारी बाटे।
0: इसके अलावा मुख्य रूप से जैसे टीबी हो गया, टीबी अक्सर देखने को मिलता है। टीबी भी एक विषाणु जनित रोग है, जीवाणुओं के द्वारा रोग है, जो कि संक्रमित पशुओं का कच्चा दूध के सेवन से एवं संक्रमित वायु में सांस लेने से होता है। टीबी से संक्रमित मनुष्य में बुखार, खांसी, दुर्बलता, कमजोरी एवं थकान जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं।
1: अच्छा ये देखे माओ डॉक्टर साहब कि पहले लोग पशुओं से दूध निकाल के तुरंत ओकर इस्तेमाल कर लेते रहें लेकिन भाई देखा अब जैसे कि विशेषज्ञ भैया आप सब बतावत है कि भाई देखा पशुओं से दूध निकाले के बाद ओका अच्छी तरह से उबाल लिया जाए तब इस्तेमाल किया जाए।
0: जी
1: तो का ये जो टीबी बीमारी होते जो उनके मनुष्य में होते ये पशुओं में एक जीवाणु पावा जाते हैं जो उनके
0: जी
1: दूध के द्वारा फैलते हैं।
0: जी इसमें पशुओं में भी ये रोग होता है टीबी, और पशुओं से कभी कभी जब आप इसका सही उपयोग से जैसे कच्चा दूध या मांस का अगर पका के नहीं खाएंगे तो यह पशुओं से मनुष्यों में भी फैल सकती है।

0: पुरानी बीमारी।
1: अच्छा, तो काहे मतलब भैया कि टीबी बीमारी भी पशुओं से मानव में फैल सकत है, एक लिए थोड़ा सा भैया चेतक की बा कि दूध उबाल के पिए और मांस के अच्छी तरह से पका के
0: जी।
1: और भैया कौन बीमारी बाटे?
0: इसके अलावा जैसे प्लेग हो गया, प्लेग का ये भी एक, इसका भी संक्रमण चूहों चूहों के पिस्सुओं के द्वारा काटने या खून चूसने से होता है। प्लेग से संक्रमित मनुष्यों में गिल्टी में मवाद, निमोनिया व शरीर का नीला पड़ना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।
1: अच्छा, काहे मतलब कि भाई जौन एक पिशु होते हैं उनके ऊपर एक जौन जीवाणु वो पाई जाते हैं तो चूहन से भी बचे के जरूरत बाटे, काहे से एकरे द्वारा भी प्लेग की बीमारी फैल सकत है।
0: जी
1: अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब ये बताओ, जैसे तरह तरह की बीमारी जौन कि भाई पशुओं के द्वारा मनुष्य में फैलत बाटी, इन्हन बीमारियों से बचे के लिए एक सामान्य व्यक्ति के का उपाय करे चाहे, का पशुओं से दूरी बनाए रखें या फिर उनका टीकाकरण के भी समय समय पर जरूरत होते है जौन से उनके द्वारा मनुष्य में बीमारी न फैले।
0: जी इसके रख बचाव के लिए मुख्यतः कुत्तों एवं बिल्लों का समय समय पर टीकाकरण करवाना जरूरी है, और कीड़ों मकोड़े एवं चूहों का आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें जिससे कीड़े मकोड़े एवं चूहों का प्रकोप ना हो, और आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें क्योंकि इकट्ठे पानी में मच्छर अंडा देते हैं और उसी में पनपते हैं, तो जिससे मच्छर की जनसंख्या बढ़ती है और यह रोग होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और कच्चे दूध एवं मांस का सेवन ना करें, संक्रमित पशुओं की जेर को नंगे हाथ से ना छुएं, और शौच के बाद एवं खाना खाने के पहले हाथ को अच्छी तरह साबुन से धो लें।
1: अच्छा, काहे मतलब इस तरह के उपाय करके इन बीमारियों के पशुओं से मनुष्य में फैले से रोका जा सके।
0: जी
1: डॉक्टर साहब आए हैं और इतना बढ़िया जानकारी दें, ये सब जानकारी के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे जानवरों से आदमियों में फैलने वाली बीमारियां और उनसे बचाव विषय पर डॉक्टर जयप्रकाश यादव से चंद्रजीत यादव की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर आशीष टंडन की वार्ता टीवी से बचाव और नियंत्रण।
1: टीबी की बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होती है। ये आदि अनादि काल से क्षय रोग के नाम से जानी जाती है। टीबी की बीमारी विश्व में प्रति मिनट एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनती है। ये बीमारी हमारे भारतवर्ष में बहुत अधिक फैली है, या ये कहा जाए कि पूरे विश्व की 15-20% टीबी की आबादी भारतवर्ष में पाई जाती है। मधुमेह का रोग भारतवर्ष में बढ़ने के कारण हमारे देश में टीबी का संक्रमण बढ़ रहा है। आज छोटी उम्र के बच्चों में ये बीमारी तेजी से फैल रही है। टीबी की बीमारी में इसको हल्का बुखार होता है जो प्रायः शाम या रात्रि में बढ़ता है। रात को सोते समय अधिक पसीना आना, वजन में कमी आना, भूख न लगना, उदासी का होना, कभी कभी बलगम में खून भी आ सकता है। यदि किसी रोगी को खांसी आ रही है जो कि सूखी है और वो 3 हफ्ते से ज़्यादा है तो ये टीबी का लक्षण हो सकता है। ऐसे रोगी को तुरंत निदान के लिए अपने पास के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए। निदान के लिए बलगम की जांच की जाती है और ये जांच 3 बार बलगम लेके की जाती है। खून की जांच और एक्सरे की जांच भी नितांत आवश्यक होती है। टीबी की बीमारी का इलाज आज सरलता से उपलब्ध है। बलगम की जांच पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में अत्याधुनिक मशीन के द्वारा होता है। इसे हम जीन एक्सपर्ट टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये टेस्ट एक दिन में ही बीमारी को दर्शित कर देता है। इससे साधारण टीबी तथा रेजिस्टेंट टीबी दोनों के बारे में

0: पता लग जाता है, जिससे इलाज अच्छे तौर पे अच्छे रूप से प्राप्त हो सकता है। और यह इलाज पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध है। टीबी की बीमारी से बचाव बहुत जरूरी है, रोगी का पूरा निदान और पूरा इलाज करना चाहिए। बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए BCG का टीका लगता है, यह टीका पैदा होते ही तुरंत लगना चाहिए। बलगम में कभी कभी बलगम में खून भी आ सकता है, निदान के लिए खून की जांच, खाल में टीका लगना जिसको हम मांटूक्स टेस्ट बोलते हैं, और सीने का एक्सरे सहायक होते हैं। क्षय रोग एक से दूसरे रोगी में फैल सकता है, जिसको हम संक्रामक रोग की संख्या देते हैं, और अधिकांश तौर पर ये खांसी और छींक के द्वारा फैलता है। इसके नियंत्रण के लिए टीकाकरण, खास करके BCG का टीका, और क्षय रोग से ग्रस्त रोगी को एक दूसरे से दूर रख के तथा प्रभावी इलाज के द्वारा बचाया जा सकता है। पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में ये दवाइयाँ सरकारी तौर पर सभी केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध हैं तथा सभी जांचें भी मुफ्त उपलब्ध हैं। इसको हम डॉट्स प्रोग्राम के अंतर्गत जानते हैं। कभी कभी क्षय रोग रेजिस्टेंट TB के नाम से जाना जाता है या भयावह रूप ले लेता है। इसको कंट्रोल करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए डॉट्स प्लस नाम के प्रोग्राम को सरकार चला रही है, और उसमें रोगी को चिकित्सक के द्वारा निदान करने पर अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तथा चिकित्सक की सलाह से बलगम की जांच करके पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में रजिस्टर करके उसका पूरा इलाज किया जाता है। गंदगी, भीड़ भड़ा वातावरण और कुपोषण के द्वारा क्षय रोग फैलता है। उचित यह है कि स्वस्थ वातावरण में क्षय रोगी को रखें और नियंत्रण करने के लिए अच्छा उसको उपचार दें, जिससे ये बीमारी पूरी तरीके से नियंत्रित हो और भारतवर्ष क्षय रोग से मुक्त हो जाए।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आशीष टंडन की वार्ता, TB से बचाव और नियंत्रण। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे देते हैं हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। सुबह 11 बजे आप सुनेंगे विज्ञान भवन नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के 23वें अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मारक व्याख्यान 2026 का सजीव प्रसारण, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर उस्ताद आमिर खां का ख्याल गायन, दिन में 12:15 पर पंडित सी आर व्यास का ख्याल गायन और रात 10:30 पर पंडित उमाशंकर का सितार वादन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति होगी सुंदरम तिवारी की।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर समृद्धि श्रीवास्तव के स्वर में भजन और गीत सुनिएगा। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वॉयस ऑफ प्रयागराज। सुबह 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

दिन में 12:30 पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनिएगा, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। दोपहर 1:15 पर हेलो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फिल्म परदेश और अभिमान के गाने।

दोपहर 2:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे भान सिंह, अनुराधा श्रीवास्तव, विष्णुकांत चौबे। नन्हे मुन्ने सुनेंगे कार्यक्रम नन्ही दुनिया 5:00। शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे जैव विविधता प्रकृति की असली पूंजी विषय पर डॉक्टर पीसी दुबे से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर ललित कुमार की वार्ता संस्कृत व्याकरणस्य प्रयोजनानाम उपादेयता।

रात 8:30 पर अंग्रेजी कार्यक्रम में आप सुनेंगे के राशि कुमार की वार्ता आकाशवाणी 19 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। रात 9:30 पर गजलों का कार्यक्रम आप सुनेंगे कहकशा। रात 10:00 कलीम उर्फी का लिखा नाटक सुनिएगा दाढ़ी वाला हाथी। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

0: सशस्त्र लुण्ठनम् सागरीय आतंकवादः मादकद्रव्याणां क्रय विक्रयणम् अवैधम् अनिर्दिष्टम् अथ अनियन्त्रित मत्स्यपालनम् अपि च अन्यानि सागरीय संकटानि चापि चर्चिताः। कोलकाता उच्च न्यायालयेन आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालये बलात्कार हत्या प्रकरणस्य अन्वेषणार्थं विशेष अन्वेषण दलस्य स्थापना कृतास्ति। त्रिसदस्यीयस्य एसआईटी इत्यस्य नेतृत्वं केन्द्रीयान्वेषण विभागस्य पूर्वक्षेत्रस्य संयुक्त निदेशकः भविष्यति। न्यायालयः जून मासस्य 25 दिनांकात् पूर्वं स्वप्रतिवेदनं दातुं दलम् आदिष्टवान्। एनईईटी परीक्षापत्र श्राव प्रकरणस्य प्रमुख विकासे लातूरनगरस्य बालरोग चिकित्सकः डॉक्टर मनोज शिरुरे इत्येषः केन्द्रीयान्वेषण विभागेन गृहीतः इति कथ्यते। सूत्रानुगुणं डॉक्टर शिरुरे इत्येषः स्वपुत्र्यै एनईईटी परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् अकृणोदिति अन्वेषण संस्थाः शङ्कयन्ति। 21st-2000 पुलवामा आतंकवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हमजा बुरहान नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञात भुशुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे मध्यप्रदेशे विदर्भप्रदेशे च उष्णतरङ्गात् तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यति इति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ तटीय आन्ध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडाचक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् 91 धावनांकैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 33-200 धावनांकानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्य चतुर्दश कन्दुक क्षेपणचक्रेषु 40-100 धावनांकान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

हनुमान के विदा हो जाने के बाद हर्षित भरत ने कुल गुरु को ये समाचार सुनाया कि श्री राम नगर में पहुंचने वाले हैं। राजमहल से ये संदेश तत्काल पूरी नगरी में फैल गया। चारों ओर कौशलपति की अगवानी की तैयारियां होने लगी। दूध दही आदि मांगलिक वस्तुएं थाल में सजाकर नारियां श्री राम सीता और लक्ष्मण की आरती को निकल पड़ी। कुलगुरु वशिष्ठ भाई शत्रुघ्न अन्य कुटुंबियों तथा ब्राह्मणों को साथ लेकर भरत जी श्री राम की अगवानी के लिए निकल पड़ते हैं। सबकी आंखें आकाश की ओर लगी हैं, जहां किसी भी क्षण पुष्पक दिखाई देगा। उधर पुष्पक में बैठे श्री राम अपने सहयोगियों को पवित्र नगरी अयोध्या की महिमा सुना रहे हैं। वो अयोध्या जो उनकी जन्मभूमि है, जो उन्हें वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। इस सुंदर नगरी के उत्तर में सरयू की पवित्र धारा बहती है, जिसके निर्मल जल में स्नान करने मात्र से प्राणी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रभु का संकेत पाकर पुष्पक विमान अयोध्या नगरी के समीप उतर गया। लंका से अयोध्या तक की यात्रा पूरी हो गई। श्री राम ने जब विमान को अपने स्वामी कुबेर के पास लौट जाने को कहा, तो एक बार उस जड़ पदार्थ को भी विषाद की अनुभूति होती है। अपने स्वामी के पास लौट जाने का हर्ष भी श्री राम से बिछुड़ने की उदासी को नहीं छिपा सका।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म से भजन। लीजिए सुनिए नीलकमल फिल्म का ये भजन। आशा भोसले की आवाज में, संगीत दिया है रवि ने और रचना है साहिल लुधियानवी की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन। लीजिए अब सुनिए गोपी फिल्म का ये भजन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और रचना है राजेंद्र कृष्ण की।

अभी आपने गोपे फिल्म का ये भजन सुना और अब फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: राज्य कर्मचारियों को 58% डीए मिलता था, अब उन्हें 60% डीए का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
1: रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये एफएओ ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: बीते माह 9 से 23 अप्रैल तक मनाए गए पोषण पखवाड़े में गोरखपुर जिला गतिविधियों के आयोजन व फीडिंग के मामले में प्रदेश में अव्वल रहा है। यह जानकारी गोरखपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 से ही जिले को विभिन्न श्रेणियों में लगातार तीसरी बार प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलने के कारण अब देश के युवा खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं।
3: मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल नीति विकसित की। हमने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में और नेशनल चैंपियनशिप में जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 534 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके मेडल के आधार पर पुलिस में डिप्टी एसपी का पद भी, राजस्व विभाग में भी और अन्य विभागों में भी हमने उनको समाहित किया है, उनको सीधे नियुक्ति पत्र दिया है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी GBC 5.0 के संबंध में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि GBC 5.0 के अंतर्गत हर जिले में निवेश होना चाहिए। उन्होंने जिलों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ावा देना जरूरी है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भूमि की मांग तेजी से बढ़ी है, इसके सापेक्ष भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि FDI को आमंत्रित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएं। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: जनगणना 2027 के तहत 7 मई से चल रही स्वगणना प्रक्रिया में कल शाम तक करीब 46,93,783 लोगों ने हिस्सा लिया।

0: राज्य भर में आज से जनगणना कर्मी घर घर जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: स्वगणना करने वाले अग्रणी जनपदों में शाहजहांपुर पहले स्थान पर है, जहां लगातार लोगों ने स्वगणना की। दूसरे नंबर पर आजमगढ़ जबकि तीसरे स्थान पर बरेली रहा। राजधानी लखनऊ में लगभग 98,000 लोगों ने स्वगणना की। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि अगले चरण में जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। जिन लोगों ने स्वगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल में दर्ज करा दी है, उन्हें 11 अंकों वाले कोड को प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। ये प्रक्रिया 22 जून तक चलेगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रिथुल कुमार कल एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का निरीक्षण किया तथा प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत दोनों केंद्रों पर पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में कल पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचत की सलाह दी है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। बांदा जिला कल भी लगातार देश का सबसे गर्म जिला बना रहा। राज्य के कई अन्य जिलों में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य की राजधानी लखनऊ में भी कल पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। प्रदेश में रात में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण लू जारी रहने की चेतावनी दी है। इस बीच जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के लिए आवेदन तिथि 23 मई तक बढ़ा दी है। पहले 20 मई तक ही आवेदन किए जा सकते थे। जिन छात्रों को भरे हुए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि सुधार करना है, उनके लिए NTA 25 से 27 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर करेक्शन विंडो खोलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता DA में की 2% की बढ़ोतरी। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। राज्य सरकार ने 4 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा अब खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं देश के युवा। और जनगणना 2027 के तहत आज से शुरू होगी मकानों की गणना। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए उस्ताद आमिर खां का ख्याल गायन राग है बैरागी भैरव।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद आमिर खां का ख्याल गायन राग था बैरागी भैरव। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन।

नहीं हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट लाइन शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजीत टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा है।

0: था क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच वह सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है

0: इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज दो और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नियारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया।

0: कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज दो और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नियारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लो ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द है 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा

0: people are backward and how many need welfare. And finally, the Statesman on its front page says, ahead of North Upper, planes simmer, but some respite around May 29th. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on the June 1st, postponed. Railway urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ बातचीत करेंगे। नई दिल्ली में बिग कैट अलायंस की यकम जून को होने वाली पहली बैन अलाक्वामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। रेलवे के महकमे ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो चौकस रहें और रेलवे अहाते में किसी भी तरह की मुश्तबा सरगर्मी या मुश्तबा अफराद के बारे में जानकारी बिला ताखीर हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर आबरूरेजी और कत्ल केस में इल्जाम पर पर्दा डालने के मामले की तहकीकात के लिए सीबीआई की खसूसी टीम कायम किए जाने का हुक्म दिया है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का सरगना हमजा बुरहान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में नामालूम मुसल्ला अफराद के हाथों मारा गया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत जितनी भी तवानाई खरीदना चाहता है अमरीका उसे फरोख्त करने के लिए तैयार है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ बातचीत करेंगे। कुब्रुस के सदर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर ममलिकत अजय तमता ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। कुब्रुस के सदर के हमरा वजीर खारजा ट्रांसपोर्ट मवासलात और कामकाज के महकमे के वजीर सीनियर ओहदेदारान और कारोबारियों पर मुश्तमिल एक आला सतही वफ्द भी है। ये उनका भारत का पहला दौरा है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर बातचीत करेंगे। इनमें तजारत सरमायाकारी टेक्नोलॉजी तालीम सकाफत मोबिलिटी दिफा और सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिनटेक इख्तरा और तहकीक जैसे शोबे शामिल हैं। वो कसी रुखी इश्तराक समेत इलाकाई और आलमी अहमियत के हामिल मामलात पर भी नज़रियात का तबादला करेंगे। बातचीत के बाद मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। जनाब मोदी कुब्रुस के सदर के एजाज़ में जोहरानी की मेज़बानी करेंगे। शाम में कुब्रुस के सदर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे। कुब्रुस के सदर का दौरा गुज़श्ता बरस जून में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कुब्रुस के दौरे के एक साल के अंदर अंदर हो रहा है। भारत और कुब्रुस की करीबी और तवील मुद्दती शराकत दारी है। आइंदा बरस फरवरी में दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 65 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
2: बिग कैट अलायंस की पहली बैन अलाक्वामी सरबराह कॉन्फ्रेंस जो यकम जून को नई दिल्ली में होने वाली थी मुलतवी कर दी गई है। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में बिग कैट के दायरे में आने वाले जानवरों की 7 अकसाम को महफूज रखने पर तवज्जो मरकूज की जाती है, जिनमें शेर बबर शेर तेंदुआ बर्फानी तेंदुआ चीता जैगुअर और प्यूमा नीज उनका इको निज़ाम शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: बिग कैट अलायंस की बैन अलाक्वामी सरबराह कॉन्फ्रेंस चौथी भारत अफ्रीका फोरम सरबराह मीटिंग के साथ साथ होने वाली थी। कई अफ्रीकी मुल्कों में बिग कैट से जानवरों की मुख्तलिफ अकसाम पाई जाती हैं और ये मुल्क इन्हें महफूज रखने माहौलियाती

0: पायदार निजाम और हयातियाती तनवों के तहफ्फुज़ की सम्त आलमी कोशिशों में अहम साझेदार भी हैं। चूंकि चौथी भारत अफ्रीका फोरम सरबराह मीटिंग अब बाद में किसी तारीख को कराई जाएगी, इसलिए फैसला किया गया है कि अफ्रीकी मुल्कों समेत सभी मुतालिका मुल्कों की वसीतर और सरगर्म शमूलियत को यकीनी बनाने की खातिर बिग कैट अलायंस की पहली सरबराह कॉन्फ्रेंस भी बाद में तलब की जाए। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली से मुतालिक वजारत के मुताबिक इसमें शिरकत करने वाले मुल्कों और मुतालिका इदारों के साथ सलाह मशवरे के बाद सरबराह कॉन्फ्रेंस की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली से सामर्थ सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: रेलवे बुनियादी ढांचे और ट्रेन आमद रफ्त को निशाना बनाए जाने के हालिया वाकयात के तनाजुर में रेलवे के महकमे ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो सफर करते वक्त चौकस रहें और रेलवे अहाते में किसी भी तरह की मुश्तबा सरगर्मी या मुश्तबा अफराद के बारे में जानकारी बिला ताखीर हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें। कल नई दिल्ली में रेल भवन में रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव की सदारत में आला सतह की सिक्योरिटी जायजा मीटिंग के बाद यह अपील की गई है। इस मीटिंग में रेलवे के वुजराए ममलिकत वी सोमन्ना और रवनीत सिंह बिट्टू के साथ साथ रेलवे बोर्ड के सीनियर अहदेदारों और मुख्तलिफ फील्ड अफसरों ने भी शिरकत की। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
0: रेलवे की वजारत के मुताबिक कई हालिया वाकयात की अब तक की छानबीन से समाज दुश्मन अनासिर के मुलव्वस होने का इशारा मिलता है। रेलवे हिफाजती फोर्स इन वाकयात की सरगर्मी के साथ जांच कर रही है। मीटिंग में इस बात से मुतला किया गया कि कई वाकयात में रेलवे के हुक्काम की जानिब से बरवक्त और पेशबंदी की कार्रवाई से बड़े वाकयात की रोकथाम में मदद मिल सकी है। रेलवे ने कहा है कि वो मुसाफिरों की सलामती, रेलगाड़ियों, स्टेशनों और वसीतर रेल नेटवर्क की सिक्योरिटी को मुस्तहकम बनाने की खातिर मस्नूई जहानत, ड्रोन्स और सीसीटीवी निजाम जैसे जदीद तर्ज के तकनीकी वसीलों के इस्तेमाल में इजाफा कर रही है। इस पहल पर मिशन मोड में काम किया जा रहा है। दिल्ली से कमोदी पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर आबरूरेजी और कत्ल केस में इल्जामात पर पर्दा डालने के मामले की तहकीकात के लिए सीबीआई की खसूसी टीम कायम किए जाने का हुक्म दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आबरूरेजी और कत्ल केस की तहकीकात के लिए एक खसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है। तीन अरकान पर मुश्तमिल एसआईटी की क्यादत मशरकी जोन के लिए सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर करेंगे। अदालत ने 3 से 25 जून तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जस्टिस शांपा सरकार और तीर्थंकर घोष पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने 9 अगस्त 2024 को मकतूला के रात के खाने से लेकर उसकी आखिरी रसूम तक के हालात वाकयात की छानबीन करने का हुक्म दिया है। एजेंसी को सभी मुतालिका पहलुओं की तहकीकात करने की आज़ादी भी दी गई है। अदालत का यह फैसला मकतूला के कुनबे की जानिब से बार बार इन तशवीश के बाद सामने आया है कि शवाहिद से मुबैन तौर पर छेड़छाड़ की जा सकती है और हकायक को छुपाया जा सकता है। बेंच ने इस बात पर जोर दिया है कि एसआईटी मजमूई तहकीकात को यकीनी बनाने की खातिर हर तफसील की जांच करेगी। 2024 में पेश आए इस वहशियाना वाकये ने पूरे मुल्क को सदमे में डाल दिया था, जिसके बाद संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन डॉक्टरों और सिविल सोसाइटी की जानिब से बड़े पैमाने पर मुजाहिरों ने इंसाफ की मांग को जिंदा रखा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग में हमजा बुरहान मारा गया है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो 2019 के पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का एक सरगना था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा अहलकारों की मौत हो गई थी। हमजा बुरहान अलबद्र दहशतगर्द ग्रुप का एक कमांडर था। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की कई सरगर्मियों में उसके मुलव्वस होने के बिना पर अप्रैल 2022 में भारत ने उसे दहशतगर्द करार दिया था। पुलवामा हमले के बाद से वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में एक टीचर के भेस में रह रहा था। मकामी पुलिस के मुताबिक गोजरा मुजफ्फराबाद में एक प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल बुरहान को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो कल सुबह अपने कॉलेज से बाहर निकल रहा था। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। बाद में वो पाकिस्तान चला गया और अलबद्र दहशतगर्द ग्रुप में शामिल हो गया। पंजाब।

0: पुलिस ने पठानकोट के एक बाशिंदे को पठानकोट जम्मू कौमी शाहराह 44 पर इंटरनेट से मुंसलिक सीसीटीवी कैमरा नस्ब करके पाकिस्तान में मुकीम अपने आकाओं के लिए जासूसी करने के लिए गिरफ्तार किया है। पठानकोट के एसएसपी दिलजिंदर सिंह ढिल्लों ने आकाशवाणी न्यूज़ को बताया कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम बलजीत सिंह ने मुबैना तौर पर फौज और नीम फौजी दस्तों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए कौमी शाहराह 44 पर एक पुल के नज़दीक सीसीटीवी कैमरा नस्ब किया था। इसकी लाइव फीड पाकिस्तान में मुकीम आईएसआई के कारिंदों से शेयर की जा रही थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में नए तामीर किए गए वैष्णवी भवन को अकीदतमंदों को वक्फ किया। इसका मकसद पवित्र गुफा में वाक़ मंदिर में यात्रियों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाना और उनके क़याम की सहूलियात में इजाफा करना है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मनोज सिन्हा ने कहा कि नए भवन के तामीर होने से वहां हर साल आने वाले यात्रियों की बढ़ती हुई तादाद के मद्देनज़र उन्हें जदीद तर्ज का आरामदेह बुनियादी ढांचा फराहम किया जा सकेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका भारत को जितनी वो चाहे तवानाई फरोख्त करने के लिए तैयार है। उन्होंने आबनाए हुरमुज के बंद होने के सबब भारत पर तवानाई की आला कीमतों के असर के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। स्वीडन और भारत के अपने दौरे पर रवाना होते हुए मियामी में नामानिगारों से बातचीत के दौरान वजीर मौसूफ ने यह इजहार ख्याल किया। उन्होंने भारत को एक अजीम शराकतदार भी करार दिया और कहा कि उनका दौरा इसीलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि इस मौके पर उन्हें क्वाड ममालिक के वज़रा से मुलाकात का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में दर्जा हरारत तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है और पूरी रियासत शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। लगातार पांचवें दिन रियासत का बांदा जिला मुल्क में सबसे गर्म मकाम रहा। वहां दिन का दर्जा हरारत 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: रियासत में पारा हर गुजरने वाले दिन के साथ ही नई बुलंदी पर पहुंच रहा है। बुंदेलखंड खिता सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहां बेशतर मकामात पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। बांदा में ये 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो नॉर्मल से 4 डिग्री ज्यादा है और इससे शहर में रोजमर्रा की जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। प्रयागराज में भी टेम्परेचर 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है जो मामूल से 5 डिग्री ज्यादा है। लोगों को रात के वक्त भी गर्मी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रात में भी पारा 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी तेज गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी आज सख्त गर्मी का इम्कान है। इस दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज रात में भी मौसम गर्म रहेगा। IMD ने पंजाब और मगरबी राजस्थान में आज कहीं कहीं धूल भरी आंधी का भी इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में पानी की बचत को मुस्तहकम करने की खातिर एक अहम इकदाम का ऐलान किया है जिसके तहत मानसून के आगाज से पहले 75 सरकारी स्कूलों में बारिश के पानी को जखीरा करने के निजाम को बहाल किया जाएगा और उसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि इम्कान है कि इससे बारिश के पानी को जखीरा करने की सलाहियत तकरीबन 50 करोड़ लीटर हो जाएगी। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 230 रन का जीत का बड़ा निशाना दिया था और चेन्नई की टीम महज 13 ओवर्स और 4 गेंदों में 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। गुजरात टाइटन्स के लिए मोहम्मद सिराज, राशिद खान और कगिसो रिबाडा ने 3-3 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
2: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी के तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, गैर मुल्की दौरे के बाद वजीर आजम की सदारत में काबीना की अहम मीटिंग, बहरान के दौरान आवाम को बिला तातुल सहूलतें फराहम करने का आजम, तमाम वजरा को अपने महकमों में गैर जरूरी अखराजात कम करने की हिदायत। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल की अहम खबर है, मुल्क में SIR के तीसरे मरहले का आगाज, 16 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 3 इलाकों में खसूसी नजरसानी मुहिम चलेगी। वज़ीर दिफा ने जनूबी कोरिया में बनी हिंदुस्तानी जंगी यादगार का इफ्तिताह किया। रोजनामा प्रताप ने इस खबर को अपने सफ़े अव्वल पर नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है। इसी सफ़े

0: पर दिल्ली की वज़ीर-आला रेखा गुप्ता का यह बयान भी मौजूद है कि दिल्ली में नए राशन कार्ड बनने शुरू, 7.72 लाख लोगों को मिलेगा फायदा।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कुप्रस के सदर निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ बातचीत करेंगे। नई दिल्ली में बिग कैट अलायंस की 1 जून को होने वाली पहली बैन-अल-अक़वामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। रेलवे के महकमे ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो चौकस रहें और रेलवे अहाते में किसी भी तरह की मुश्तबा सरगर्मी या मुश्तबा अफराद के बारे में जानकारी बिला ताखीर हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आजीकर आबरूरेजी और कत्ल केस में इल्जामात पर पर्दा डालने के मामले की तहकीकात के लिए सीबीआई की खसूसी टीम कायम किए जाने का ऐलान किया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत जितनी भी चाहे तवानाई खरीद सकता है, अमरीका उसे फरोख्त करने के लिए तैयार है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
5: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
4: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
5: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
6: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को सोनम का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है 22 मई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। यह दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर जीवों, पौधों और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और मानव गतिविधियों से विलुप्त हो रहे प्रजातियों को बचाना है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों, पौधों, पशु, सूक्ष्म जीव की विविधता या प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करने और मानव जीवन को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 की थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। पर्यावरण और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता के महत्व को देखते हुए इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया।

प्रकृति और मानव जीवन के बीच एक स्थायी संबंध है। हम अपने भोजन और स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ प्राकृतिक प्रणालियों पर निर्भर हैं। जैव विविधता हमें अनेक प्रकार के उत्पाद जैसे भोजन, चारा, ईंधन, औषधि आदि प्राप्त होती है। जैव विविधता से में शामिल कई तरह के घटक पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। प्रदूषण नियंत्रण करने के साथ ही साथ यह जल, मृदा और वायु संरक्षण में भी शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड, हरित गैसों से होने वाले नुकसान को जैव विविधता के माध्यम से कम किया जा सकता है। श्रोताओं, आज हमें कितने पशु पक्षी, कितने कीड़े मकोड़े और कितने पौधे नहीं दिखते, कारण है हम लगातार प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। आपदा के समय जैव विविधता एक अवरोधक का काम करती है। जैव विविधता के संरक्षण से पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में वृद्धि होती है, जहां हर एक प्रजाति, फिर चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, सभी का योगदान जरूरी है। पौधों की प्रजातियों की एक बड़ी संख्या के होने का अर्थ है फसलों की अधिक विविधता, जिससे कई प्रजातियों का भरण पोषण होता है।

अनजाने में ही हम प्रतिदिन सैकड़ों ऐसे उत्पादों का उपयोग करते हैं जिनकी उत्पत्ति जंगली जानवरों और पौधों से हुई है। वास्तव में हमारा कल्याण वन्य जीवों के कल्याण से गहराई से जुड़ा हुआ है। जंगली प्रजातियों के जीवन को बचाकर हम अपने जीवन को भी बचा सकते हैं। सच्चाई यह है कि पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित या मृत वस्तु पर जैसा नियंत्रण आज हमारे पास है, वैसा पूर्ण नियंत्रण आज तक किसी भी प्रजाति के पास नहीं है। यह हम पर, चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है। अब हमारे हाथों में न केवल हमारा अपना भविष्य है, बल्कि उन सभी जीवित प्राणियों का भविष्य भी है जिनके साथ हम इस पृथ्वी पर रहते हैं।

प्रकृति की विविधता ही हमारे जीवन की असली संपदा है। इसे सहेजना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। एक अच्छे घर का क्या फायदा अगर उसे रखने के लिए एक अच्छा और हरा भरा ग्रह ही ना हो। पेड़ पौधे, जीव जंतु और इंसान, ये सभी प्रकृति के धागे हैं। यदि एक भी धागा टूटा तो जीवन का ताना बाना बिखर जाएगा। जी हाँ श्रोताओं, इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अब कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज यहीं पर समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और कल आपसे फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए आक्रमण फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आक्रमण का ये गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और रचना थी आनंद बख्शी की।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
0: लीजिए अब सुनिए आपके साथ फिल्म का ये गीत अनुराधा।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बदायूं और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों हरदोई में आयोजित कार्यक्रम में मेरठ से प्रयागराज तक बनाए गए गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण राष्ट्र को समर्पित किया। वहीं बदायूं जिले के खटपुरी बिनावर इंटरचेंज के समीप आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री बी एल वर्मा व जनप्रतिनिधियों ने किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बदायूं के विकास में गंगा एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होगा। हरदोई में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण बदायूं में दिखाया गया, जिसे जनप्रतिनिधियों व आमजन ने देखा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ जिले से प्रारंभ होकर प्रयागराज तक कुल 12 जिलों से गुजरने वाला 594 किलोमीटर लंबा है। बदायूं में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने कहा कि आजादी के बाद से जितने विकास कार्य 60 सालों में नहीं हुए, उससे ज्यादा विकास कार्य डबल इंजन की सरकार में हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में विभिन्न एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर, अन्य विकास कार्य हुए हैं, जिसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा था। वर्तमान में 2,70,00,000 दीदियाँ लखपति है। अब प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की 6 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है, जिस पर कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे बन जाने से लखनऊ व दिल्ली की दूरी कम हुई है। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे बन जाने पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच की दूरी कम हुई है। इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा, किसानों को लाभ होगा व आमजन को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जो कहती है वो पूरा करके दिखाती है। बदायूं में इस एक्सप्रेस वे के समीप 2 औद्योगिक पार्क गलियारे भी बनाए जा रहे हैं। इससे रोजगार सृजन होगा और युवाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने आकाशवाणी को बताया,
3: ये गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर लंबा, जिसमें 12 जनपद सीधे से जोड़ रहे हैं। और बदायूं की विशेषता ये 21 इंटरचेंज है, उनमें से हमको 3 इंटरचेंज मिले।
2: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जयवीर सिंह व केंद्रीय राज्य मंत्री बी एल वर्मा व अन्य जनप्रतिनिधियों ने बीते दिनों बदायूं जिले के कछला गंगा घाट पर आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन विभाग की परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकार ने बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर अवस्थापना व विकास कार्य तथा बेहतर कनेक्टिविटी देने का कार्य किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग देश की सांस्कृतिक व पौराणिक धरोहरों को विकसित व संरक्षित करने का कार्य कर रहा है। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वयं गणना अवधि दिवस पर जिलाधिकारी अवनीश राय द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष और भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने अपने आवास से स्वयं गणना की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर जनपद वासियों को जनगणना अभियान में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि हम सभी भारत की जनगणना 2027 में बढ़ चढ़कर भाग लें तथा राष्ट्र निर्माण एवं समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश में जनगणना का प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 22 मई से 20 जून 2026 तक होगी। जनगणना के शुरू होने से 15 दिन पूर्व यानी कि 7 मई से 21 मई तक स्वयं गणना करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। लोग स्वयं अपने मोबाइल, कंप्यूटर अथवा लैपटॉप से घर बैठे जनगणना की पूरी जानकारी भर सकेंगे। स्वयं गणना देश में पहली बार हो रही है, जिससे प्रक्रिया अधिक आसान, तेज एवं पारदर्शी रहेगी। स्वयं गणना करने वाले लोग ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार से जुड़ी समस्त जानकारी खुद भर सकेंगे। सुरक्षित करने पर 11 अंकों की एक स्वयं गणना पहचान संख्या SI ID जारी होगी, जिसे सुरक्षित नोट कर रखें। स्वयं गणना के बाद 22 मई से 20 जून 2026 तक प्रांगण घर घर जाकर जनगणना करेंगे। जिन्होंने पहले ही स्वयं गणना कर ली है उन्हें अपने 11 अंकों की SI ID बतानी होगी। बदायूं जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ साथ आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल, संतुलित आहार और संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। योजना के अंतर्गत अप्रैल 2017 से दिसंबर 2025 तक बदायूं में कुल 13,799 लाभार्थियों को योजना से आच्छादित किया गया। इस योजना के अंतर्गत

0: पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को पहली किस्त गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में पंजीकरण के बाद, दूसरी किस्त प्रसव पूर्व जांच टीकाकरण के उपरांत और तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद आवश्यक टीकाकरण पूर्ण होने पर प्रदान की जाती है। इससे न केवल महिला को आर्थिक संबल मिलता है बल्कि वे नियमित स्वास्थ्य एवं सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से भी जुड़ती है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेशों के क्रम में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में परिषदीय उच्च प्राथमिक सविलीन विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान एवं बड़े हुए मानदेय वितरण का सजीव प्रसारण बदायूं के अटल बिहारी सभागार में किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, प्रदेश के राज्य मंत्री अरुण कुमार और जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा बड़े मानदेय का चेक और प्रतीक चिन्ह देकर अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किया गया।
1: बदायूं जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीपाल सिंह का।
2: उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार बीते दिनों बुलंदशहर जनपद के विकास भवन सभागार में अनुदेशक सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण के शुभारंभ हेतु एक भव्य जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान लोक भवन सभागार लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया। शासन द्वारा अनुदेशकों के मानदेय को 9,000 रूपए से बढ़ाकर 17,000 रूपया प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है। जनपद स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया ने कहा कि प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अंतुल तेवतिया ने अनुदेशकों को बधाई देते हुए कहा कि मानदेय में यह वृद्धि केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह अनुदेशकों के अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत का सच्चा सम्मान है। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में व्यापक और सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। बुलंदशहर में जिला पंचायत सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता सांसद भोला सिंह ने की। बैठक के दौरान जनपद में संचालित केंद्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद भोला सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बुलंदशहर में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बाढ़ स्टेयरिंग ग्रुप की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा बैठक में उपस्थित जनपद के समस्त अधिकारियों को अपनी अपनी बाढ़ कार्य योजना को अतिशीघ्र तैयार कर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बुलंदशहर को उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिशासी अभियंता सिंचाई नोडल अधिकारी बाढ़ को समस्त परियोजनाओं को से समय पूर्ण किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए। साथ ही उप जिलाधिकारी शाना, नोडल अधिकारी डिबाई व अनुप शहर को समस्त नाविक गोताखोरों के साथ तहसील स्तर पर बैठक आयोजित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे संभावित बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों में कोई कमी ना रह सके। बीते दिनों बुलंदशहर में भाजपा जिला कार्यालय पर महिला जन आक्रोश अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वन पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में जहां महिला जन आक्रोश अभियान के माध्यम से नारी शक्ति के सम्मान, अधिकार एवं जागरूकता के विषयों पर विचार विमर्श किया गया, वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि नारी शक्ति से ही राष्ट्र का सम्मान है। बुलंदशहर जिले में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशों के क्रम में गौशालाओं के नोडल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दूसरे दिन 41 गौआश्रय स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गौवंशों को गर्मी से बचाव हेतु जूट के बोरे टांगने की गई व्यवस्थाओं एवं स्वस्थ पीने के पानी, हरा चारा, भूसा, सीसीटीवी क्रियाशील आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। डीएम ने बताया कि गौ आश्रय स्थलों में लगभग 14,302 कुंतल भूसा दान एवं क्रय से संग्रह किया गया है। उन्होंने कहा, निरीक्षण में पाई गई कमियों का तत्काल निराकरण कराया जाएगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रत्येक सप्ताह किया जाएगा। आजकल गर्मी का सितम जारी है, ऐसे में जनजीवन भी हीट वेव की वजह से प्रभावित हो रहा है। वेटनरी विभाग के प्रोविजनल ऑफिसर पवित्रजीत सिंह ने बताया कि गर्मी के सीजन में पशुपालकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि हीट वेव से पशुओं को बचाने के लिए पशुपालक क्या करें।
3: आप जहाँ पर पशु को बांध रहे हैं वहाँ पर आधा घंटे के लिए आप वहाँ रुकें। अगर आप वहाँ पर कंफर्टेबल हैं तो समझ लीजिए कि आपका पशु भी वहाँ पर कंफर्टेबल। अगर आप वहाँ गर्मी महसूस कर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं और वो जगह को छोड़ के जाना चाह रहे हैं तुरंत

0: छोटे वहाँ से चाह रहे हैं, समझिए कि आपका पशु भी वही चाह रहा है। सवेरे शाम नहलाएं, पर्याप्त मात्रा में ठंडा साफ ताज़ा पानी देने के लिए हरा चारा दें, और हरे चारे को देते वक्त ये ध्यान रखें कि वो सूखे हुए खेत से ना हो, पर्याप्त सिंचाई किया हुआ खेत ही हो जहाँ से वो चारा लाया गया।
1: बीते दिनों बुलंदशहर जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने जिलाधिकारी कुमार हर्ष, CDO सुश्री निशा ग्रेवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जनपद में संचालित सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं, विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाई गई समस्याओं के निस्तारण हेतु भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश गान।

सामईन, आज के दौर में जहां सियासत में कुर्सी के लिए खींचतान मची है, वहीं दुनिया के एक कोने में एक ऐसा शहर भी है जहां के आवाम ने किसी इंसान को नहीं बल्कि एक कुत्ते को अपना रहनुमा मुंतखब किया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा है इडविल, जहां पिछले 14 वर्षों से गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड का कुत्ता ही शहर का मेयर बनता आ रहा है। इस अजब रवायत की शुरुआत 2012 में हुई, जब पहली बार मेयर मैक्स फर्स्ट ने इंतखाबात में फतह हासिल की। मजेदार बात यह है कि ये मेयर सिर्फ नाम का नहीं है, कुत्ता बाकायदा अपनी वर्दी पहनकर शहर का जायजा लेता है और सयाहों का खैर मकदम भी करता है। समय चीन के वांग तियान किंग के लिए एक मामूली सरदर्द और मिर्गी के दौरे उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुलासा लेकर आएंगे, ऐसा उन्होंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। दरअसल साल 2011 में जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टरों ने उनके दिमाग का सीटी स्कैन किया और रिपोर्ट देखते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि वांग के दिमाग के दाहिने हिस्से में एक गोली धंसी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हैरान होकर जब डॉक्टरों ने वांग से उनके माजी के बारे में पूछा तो पता चला कि ये वाकया साल 1988 का था, जब वो सड़क पर टहल रहे थे। तभी उनके सिर पर कुछ तेजी से आकर लगा था। उस वक्त वांग को लगा कि किसी ने शरारत में गुलेल से पत्थर मारा है, क्योंकि घाव मामूली था और खून भी ज्यादा नहीं निकला, इसलिए वांग ने आम मरहम पट्टी की और उस बात को भूल गए। लेकिन जिसे वांग पत्थर समझ रहे थे वो असल में गोली थी जो उनके सर को चीरती हुई अंदर जा चुकी थी। ये वाकया मेडिकल साइंस के लिए एक पहेली बन गया कि 23 साल तक ये गोली जानलेवा क्यों साबित नहीं हुई। इसके पीछे कुछ अजीब और गरीब वजूहात सामने आए। दरअसल गोली की रफ्तार इतनी कम थी कि वो दिमाग के बेहद नाजुक हिस्सों को चीरने के बजाय एक कोने में थम गई। किस्मत से गोली दिमाग के उस हिस्से में जाकर रुकी जहां उसने किसी नर्व सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाया। दो दहाइयों तक धात रहने के बाद भी कोई खतरनाक इन्फेक्शन नहीं फैला, लेकिन गोली इस कदर अंदर धंसी हुई थी कि एक छोटी सी चूक और वांग को हमेशा के लिए अपाहिज बना सकती थी। रिपोर्ट के मुताबिक घंटों चली सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने गोली को बाहर निकाल लिया। आज वांग न सिर्फ सेहतमंद हैं बल्कि इस बात के लिए भी मेडिकल हिस्ट्री में दर्ज हो चुके हैं कि कोई इंसान कैसे अपनी मौत को 23 साल तक सर में दबाए रह सकता है। चीन के झेंजियांग से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यहां के एक 40 साल शख्स का दिल 2 दिन तक यानी तकरीबन 40 घंटे नहीं धड़का, फिर भी वो जिंदा रहा। ये सब कुछ मुमकिन हुआ है जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसकी बदौलत आज वो पूरी तरह सेहतमंद हैं। झेजियांग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से मुतालका एक हॉस्पिटल के डॉक्टर लू जियो ने यह दावा किया है। उन्होंने बताया कि मरीज को दिल का दौरा पड़ा था, उसे बचाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए लेकिन दिल ने रिएक्ट नहीं किया। जब उम्मीदें खत्म होने लगीं तब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन ECMO मशीन का सहारा लिया। ECMO मशीन बदन के बाहर एक मसनूई दिल और फेफड़े की तरह काम करती है। यह खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है और उसमें ऑक्सीजन भरकर वापस बदन में पंप करती है। डॉक्टर लू के मुताबिक जहां आम CPR से बचने की उम्मीद सिर्फ 1% होती है, वहीं ECMO इसे बढ़ाकर 50% तक कर देता है। समाइन, आप जानते हैं कि कुदरत के खेल निराले होते हैं। समाइन, दुनिया में एक छोटा सा कीड़ा है एफिड। इसकी खासियत इतनी अजब है कि इसे जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। दरअसल ये कीड़ा पैदा होते ही हमला होता है और इसे बच्चे पैदा करने के लिए किसी नर की ज़रूरत नहीं पड़ती। दरअसल एफिड में एक बेहद दिलचस्प बायोलॉजिकल अमल पाया जाता है जिसे साइंसदा टेलीस्कोपिंग जनरेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि एक ही बदन में कई पीढ़ियां एक साथ मौजूद रहती हैं। जब एक मादा एफिड पैदा होती है तब उसके अंदर पहले से ही उसके बच्चे बढ़ रहे होते हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, उन बच्चों के भीतर भी अगली पीढ़ी के अंडों का बनना शुरू हो चुका होता है, यानी एक तरह से 3 पीढ़ियां एक ही वक्त में एक ही जिस्म में रह रही होती हैं। इसे समझना ऐसा है जैसे एक के अंदर दूसरी और दूसरे के अंदर तीसरी जिंदगी तैयार हो रही हो। एफिड शक्ल में बहुत छोटे होते हैं, आमतौर पर सिर्फ 1 से 2 मिलीमीटर लंबे। इनका बदन नर्म होता है और ये खास तौर पर पेड़ों का रस चूसकर जिंदा रहते हैं। यही वजह है कि ये फसलों और बागीचों के लिए काफ़ी नुकसानदेह माने जाते हैं। गर्म

वास्तव में इनकी तादाद ज्यादा हो जाती है। सामाइन, बिहार के पूर्वी चंपारण से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ राम बन देवी माई के स्थान पर वाके एक तालाब में माहीगीरों के जाल में एक ऐसी मछली फंसी है जिसने माहरीन और देही बाशिंदों दोनों को हैरत में डाल दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस मछली की दो नहीं बल्कि चार आंखें हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माहीगीर हर रोज के मानिंद तालाब में जाल डालकर मछलियां निकाल रहे थे, तभी करीब 4 किलो वजन की एक बड़ी मछली जाल में फंसी। जब उसे बाहर निकाला गया तो इसकी देही बनावट देखकर माहीगीर दंग रह गए। माहीगीरों के मुताबिक ये बी ग्रेड जात की मछली है, लेकिन इसके सर पर चार आंखों जैसे निशान का होना इसे आम मछलियों से बिल्कुल अलग बनाता है। सामाइन, अगर आपको लगता है कि आप बहुत काहिल हैं तो स्लॉथ जानवर से मिलकर आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। दरअसल स्लॉथ दिन के 22 घंटे सिर्फ सोने में गुजारता है, वहीं जागने के बाद भी इनकी फुर्ती ऐसी है कि देखकर आंखें मलते रह जाएंगे। ज़मीन पर तो ये चल भी नहीं पाते, बस पंजों के दम पर खुद को घसीटते रहते हैं, लेकिन पानी में ये 3 गुना ज्यादा तेज तैर सकते हैं। हम इंसान जहाँ खाना कुछ ही घंटों में हजम कर लेते हैं, वहीं इस जानवर को एक पत्ता हजम करने में भी पूरे 30 दिन लग जाते हैं। यही वजह है कि ये अपनी एनर्जी बचाने के लिए हिलना डुलना भी पसंद नहीं करते। ये जानवर अपनी 90% जिंदगी पेड़ों पर उल्टा लटक कर गुजारते हैं। ये इतना काहिल होते हैं कि टॉयलेट जाने के लिए भी हफ्ते में सिर्फ एक बार ही पेड़ से उतरते हैं, लेकिन यही काहली उनके लिए कभी कभी जानलेवा साबित होती है। ये नीचे उतरते ही शिकारियों की नज़र में आ जाते हैं और तकरीबन 50% स्लॉथ की मौत इसी दौरान होती है। सामाइन, भारत में कई ऐसे पौधे हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उनके असरात उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। ऐसा ही एक पौधा है लैंटाना, जिसे अक्सर भारत की बद्दुआ कहा जाता है। इसकी रंग बिरंगी छोटी छोटी फूलों की गुच्छेदार बनावट लोगों को अपनी जानिब रागिब करती है, लेकिन इसके पीछे छुपे नुकसान काफ़ी खतरनाक होते हैं। लैंटाना एक इनवेसिव स्पेशीज का पौधा है जो बहुत तेज़ी से फैलने की कुव्वत रखता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सख्त से सख्त हालात में भी जिंदा रह सकता है। चाहे सूखा इलाका हो या खारा पानी, ये आसानी से वहाँ उग जाता है। इस पौधे का एक खतरनाक पहलू इसकी जहरीली तासीर भी है। इसके पत्ते अगर मवेशी या जानवर खा लें तो उनकी सेहत पर खतरनाक असर पड़ सकता है। साइंसदान के मुताबिक लैंटाना के इस्तेमाल से जानवरों के लीवर को नुकसान पहुंचता है और कई मामलों में उनके अज़ो काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा ये जिल्द को सूरज की रोशनी के तई ज़्यादा हसास बना देते हैं, जिससे जल्दी परेशानियाँ भी बढ़ सकती हैं। लैंटाना के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसके कुछ हिस्सों का इस्तेमाल कदीमी दवाओं में किया जाता है। सामाइन, कुदरत अपने अंदर लातादाद राज छिपाए बैठी है और वक्त वक्त पर इनमें से कुछ राज सामने आकर हमें चौंका देते हैं। हाल ही में मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स के घने जंगलों से एक ऐसी ही दिलचस्प और अहम तलाश सामने आई है। साइंसदान ने यहाँ एक नायाब जमीन के अंदर रहने वाले सांप की पहचान की है, जिसे अब एक नई जात पर मुस्तनद कर दिया गया है। आपको बता दें कि मेघालय का गारो हिल्स इलाका पहले से ही अपनी आला बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ के जंगल कई अनोखे और कम मालूम जानवरों का घर हैं। इसी इलाके के ओरा गीतोक इलाके में मुहक्किकीन की एक टीम को एक खास किस्म का सांप मिला। स्टडी के बाद इस नई जात को कैलामारिया गारो एनेसिस नाम दिया गया है, जिसे आम जबान में गारो हिल्स रीड स्नेक भी कहा जा रहा है। इस तलाश को बैनुल अक्वामी साइंसदान रिसाले में भी शाया किया गया है, जिससे इसे आलमी सतह पर भी पहचान मिली है। समयन, बदलाव के इस दौर में आजकल मौत के बाद आखिरी रसूमात के कदीमी तरीके भी बदल रहे हैं। दरअसल अमेरिका के डेनवर की 43 साल एरिन मेरेली ने अपनी बहन को विदा करने का ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। उन्होंने बहन की हड्डियों से एक खूबसूरत विंड चाइम बनवाया और उसे अपने घर की बालकनी में सजा दिया। जाहिर है आपके जहन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि एक खातून ने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एरिन की बहन काफ़ी फनकाराना मिजाज की थी। मरने से कबल उन्होंने एरिन से अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी मौत के बाद मेरी हड्डियों को एक नीली विंड चाइम में बदल देना,
एरिन ने अपनी बहन की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये अजीबोगरीब

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम, लीजिए सुनिए समृद्धि श्रीवास्तव के स्वर में भजन।

अभी आप समृद्धि श्रीवास्तव के स्वर में गीत सुन रहे थे। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइट से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडुलाइट कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडुलाइट मुंबई भी जा चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडुलाइट की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर की निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IAFS चतुर्थ के साथ किया जा रहा था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में RG कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल BSF की महिला पर्वतारोहण टीम को एवरेस्ट पर्वत पर विजय प्राप्त करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति BSF की अजय शक्ति का प्रमाण है। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजा राममोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से राजा राममोहन राय ने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और असमानताओं के विरुद्ध जागरूक किया। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम

0: 7 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज।
2: अपने सभी श्रोता साथियों को नमस्कार। आप ट्यून्ड हैं 100.3 एफएम पर और कार्यक्रम है वॉइस ऑफ प्रयागराज। मैं हूं आपकी दोस्त कंचन पांडे। आज का विषय कुछ ऐसा है दोस्तों, जो गुदगुदाता है, हंसाता है, साथ ही सोचने पर मजबूर भी करता है। आज के डिजिटल युग में हम इस विषय से अछूते नहीं हैं, बल्कि हमारे रूटीन में बखूबी दखल है इसका। कुछ समझे? तो कीप गेसिंग एंड स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय दिस ट्रैक।

वेलकम बैक दोस्तों, कुछ ऐसा ही सुलझा हुआ उलझा हुआ है आज का हमारा टॉपिक। क्या आप समझे मेरा इशारा? मैं बात कर रही हूँ मीम्स की। जी हाँ, सबसे पहले जान लें ये मीम होते क्या हैं, आए कहाँ से, आखिर क्या है ये मीम कल्चर। बेहद दिलचस्प इतिहास है मीम संस्कृति का, साथ ही बहुत पुराना भी। ये कोई नया टर्म नहीं है जो अभी अभी हमारे बीच आया, बल्कि 1976 में पहली बार जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी पुस्तक द सेल्फिश जीन में इसका विवरण किया। यहाँ वास्तव में माइमेम शब्द का प्रयोग किया गया था, जो बाद में छोटा होकर मीम बन गया। इस शब्द का प्रयोग उन विचारों का वर्णन करने के लिए किया गया था जो जीवों की तरह फैलते हैं, रूपांतरित होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति

0: सुलझा हुआ उलझा हुआ है आज का हमारा टॉपिक। क्या आप समझे मेरा इशारा? मैं बात कर रही हूँ मीम्स की। जी हाँ, सबसे पहले जान लें ये मीम होते क्या हैं, आए कहाँ से, आखिर क्या है ये मीम कल्चर। बेहद दिलचस्प इतिहास है मीम संस्कृति का, साथ ही बहुत पुराना भी। ये कोई नया टर्म नहीं है जो अभी अभी हमारे बीच आया, बल्कि 1976 में पहली बार जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी पुस्तक द सेल्फिश जीन में इसका विवरण किया। यहाँ वास्तव में माइमेम शब्द का प्रयोग किया गया था, जो बाद में छोटा होकर मीम बन गया। इस शब्द का प्रयोग उन विचारों का वर्णन करने के लिए किया गया था जो जीवों की तरह फैलते हैं, रूपांतरित होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तेजी से पहुँचते हैं। इंटरनेट के शुरुआती दिनों में मीम्स आकार लेना शुरू ही कर रहे थे। उन शुरुआती दौर में लोग ईमेल और मैसेज बोर्ड के जरिए मीम्स साझा करते थे, जिससे जानकारी शेयर करने और दूसरों से जुड़ने का ये एक मज़ेदार तरीका बन गया। इसी ने इस चीज़ की नींव रखी जिसे आज हम मीम संस्कृति या मीम कल्चर कहते हैं। आप जानते हैं, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज डिक्शनरी ने भी इसे परिभाषित किया है कुछ इस तरह कि मीम एक छवि है, वीडियो या कैप्शन या पाठ का अंश के जरिए आमतौर पर हास्यपूर्ण प्रकृति का होता है, जिसे इंटरनेट उपयोगकर्ता थोड़ी भिन्नताओं के साथ तेजी से कॉपी करते हैं और प्रसारित करते हैं। चंद मीम्स ऐसे हैं जो हमारे बीच बहुत समय से बेहद प्रचलित रहे, जिनमें 1990 में गॉडविंस लॉ, 1996 में डांसिंग बेबी और 99 का हैमस्टर डांस, ये क्लासिक मीम्स हमारी ऑनलाइन दुनिया का हिस्सा रहे हैं। अब बात यह है कि मीम्स का बढ़ता चलन सिर्फ हंसाता है या सामाजिक टिप्पणी भी करता है, तो चलिए सुनते हैं हमारे एक श्रोता दुर्गेश मिश्रा जी के खास विचार।
1: आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मीम्स की उपयोगिता, जैसे जैसे डिजिटल युग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मीम्स की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। किसी बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटे में कर देना मीम्स की बहुत बड़ी खासियत होती है। किसी को अगर ऐसे सामने से कटाक्ष किया जाए तो आदमी बुरा मान जाएगा, लेकिन अगर उसको मीम्स से अगर उसको उसके ऊपर कटाक्ष किया जाए, व्यंग किया जाए, तो वो आदमी हंसता भी है और उसको उस चीज को उस तरीके से लेता भी नहीं है, बुरा केस लेता भी नहीं है, बुरा भी नहीं मानता है। यही तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज है मीम्स की। ये

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप ट्यून हैं 100.3 पर, कार्यक्रम है वॉइस ऑफ प्रयागराज। तो हम सभी आज डिजिटल युग में जी रहे हैं, हर हाथ में मोबाइल है। ऐसे में एक नया कल्चर विकसित हो रहा है, मीम कल्चर, जो युवाओं की एक नई भाषा बन चुका है। सोशल मीडिया पर छोटे छोटे चित्र, वीडियो या मज़ेदार पंक्तियां तेज़ी से फैलती हैं और लोगों को हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती हैं। मीम लोगों के मनोरंजन का आसान माध्यम है। पढ़ाई या काम के तनाव के बीच मज़ेदार मीम व्यक्ति का मूड हल्का कर देता है। कई मीम रोज़मर्रा की घटनाओं, स्कूल जीवन, परिवार या दोस्तों की आदतों पर आधारित होते हैं, जिनसे हम तुरंत जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि मीम आज इतने लोकप्रिय हैं। ये तो हुए हल्के फुल्के मीम। इसके अलावा कई गंभीर विषय पर भी मीम बनते रहते हैं, जैसे राजनीतिक मुद्दे, महंगाई, पर्यावरण, शिक्षा व्यवस्था या सामाजिक विषय। इन पर की गई टिप्पणी जो मीम के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, वो कहीं ना कहीं सामाजिक सोच और सोच की दिशा तय करती है। इसलिए कई बार ये एक संवेदनशील विषय भी हो जाता है। वहीं कई बार एक छोटा सा मीम एक लंबे भाषण से अधिक प्रभावशाली होता है और सोचने के लिए मजबूर करता है। तो ऐसे में अपने एक युवा साथी का मीम को लेकर, मीम कल्चर पर क्या विचार है, ये जानना बेहद जरूरी है।
1: आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेंड की जो आज की युवाओं की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है, द मीम कल्चर। आज सोशल मीडिया के दौर में मीम्स सिर्फ मजाक नहीं रहे, बल्कि ये युवाओं की नई भाषा बन चुका है। एक छोटी सी तस्वीर, मजेदार वर्स या वीडियो कभी हंसा देती है तो कभी समाज की सच्चाई दिखा देती है। आज का युवा अपनी फीलिंग्स, स्ट्रेस, दोस्ती, पढ़ाई और यहाँ तक कि डेली लाइफ की परेशानियों को भी मीम्स के जरिए एक्सप्रेस करता है। शायद यही वजह है कि मीम्स इतनी तेजी से लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन श्रोताओं, क्या आपको पता है इस मीम कंचा का एक दूसरा पहलू भी है। जहां एक अच्छा मीम लोगों को हंसी और पॉजिटिविटी देता है, वहीं कुछ मीम्स किसी की फीलिंग्स को हर्ट भी कर सकता है। इसीलिए जरूरी है कि ह्यूमर हो लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं। युवाओं के लिए मीम कल्चर क्रिएटिविटी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। आज कई यंग क्रिएटर सिर्फ अपने फनी और रिलेटेबल कंटेंट की वजह से लाखों लोगों तक

0: पहुंच रहे हैं। तो आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मीम्स हंसी का जरिया तो जरूर बन चुका है, लेकिन हमारी सोच और संवेदनशीलता भी उस हंसी के अंदर होनी चाहिए, ताकि हम बिना किसी का मन दुखाए अपनी बात रख सके। हंसिए, मुस्कुराइए, मीम्स बनाइए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। धन्यवाद।
1: बिल्कुल, एक सुलझा हुआ विचार हमारे युवा श्रोता आर्यन का। ये संवेदनशीलता का परिचय अगर न दिया जाए मीम संस्कृति को लागू करते वक्त, तो ये एक नकारात्मक पक्ष उजागर करता है। कभी कभी लोग मजाक के नाम पर किसी व्यक्ति, समुदाय या संवेदनशील विषय पर टिप्पणी करने लगते हैं, जो समाज में असहजता पैदा कर देती है। कई बार झूठी जानकारी फैलाने वाले मीम समाज में भ्रम पैदा कर सकते हैं। इसीलिए मीम बनाते और साझा करते वक्त जिम्मेदारी और समझदारी बेहद आवश्यक है।

0: समझे हैं।
1: जी हाँ, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मीम कल्चर की। हास्य और मनोरंजन मीम्स का एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है, जिसमें लोग हंसते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, चाहे वो तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो या संवादों के माध्यम से। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत तेज़ी से संचरित भी होता है। लोगों तक इसकी पहुँच बहुत तेज़ होती है। जटिल विचारों को सरल और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है मीम्स के ज़रिए। सोशल मीडिया पर ये तेज़ी से फैलता है, वायरल होता है। लोग इन्हें शेयर, रीपोस्ट और रिमिक्स भी कर सकते हैं, और इससे जो भी विषय है वो बार बार बार देखे जाने से लोगों के दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाता है। कई बार मीम्स, हमने जैसे बात की कि सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक या वर्तमान घटनाओं पर व्यंग और टिप्पणी भी करता है, तो ये लोगों को सोचने पर भी मजबूर करता है। एक मीम याद आता है द डिस्ट्रैक्शन फ्रेंड के नाम से, जिसमें एक क्रिकेटर प्रशंसक सरीम अख्तर जी थे, जो अपने कमर पर हाथ रखकर निराशा में सिर को झुकाए हुए थे। ये मीम इतना प्रचलित हुआ और इसने ये संदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और आप एक ऐसे व्यक्ति या चीज़ से बहुत उम्मीदें हो अगर आपको, और वो निराशा प्रदान करे, तो ऐसे मीम को खूब प्रचारित किया गया। ऐसे ही एक और मीम था जिसने लोगों का ध्यान बहुत अपनी ओर खींचा था, वो था द बॉयफ्रेंड डिस्ट्रैक्शन मीम। हालांकि इसका नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन इसने भी एक बहुत अच्छा संदेश दिया था, जिसमें एक लड़का अपनी प्रेमिका के साथ जा रहा है और पीछे मुड़कर दूसरी तरफ देख रहा है। इसमें ये संदेश दिया गया कि जब आप किसी ज़रूरी काम में लगे हुए हों तो अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं। तो इस तरह मीम ने हमें हंसाया भी, हमारे सोच को दिशा भी प्रदान की, लेकिन कई बार सामाजिक टिप्पणियाँ करके उस विषय को गंभीर भी बना दिया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि मीम संस्कृति केवल हास्य नहीं, बल्कि सामाजिक टिप्पणी का भी शक्तिशाली माध्यम है। सही उपयोग मनोरंजन के साथ जागरूकता फैलाती है। यूं भी इस विषय पर एक प्रसिद्ध दार्शनिक कहावत याद आती है कि तुम्हारी स्वतंत्रता वहीं खत्म होती है जहां मेरी नाक शुरू होती है। ये बताती है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी सीमित है, और दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता के दायरे में दखल देने का हक किसी को नहीं। ये बात मीम्स के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। मीम्स को एंजॉय करना अलग बात है, मगर शब्दों और चित्रों की सीमा रेखा तय करते हुए। तो उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपने एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त अपनी दोस्त कंचन पांडे को। नमस्कार।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा,
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव,
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे,
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुम्बाई,
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी अजीत जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी, सुना तो है,
2: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
2: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
1: क्यों?
2: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओ, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
2: जी।
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
2: जी।
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
2: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
2: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
2: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
2: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
2: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के

0: लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
0: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छानकर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है।
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
0: जी
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
0: जी
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
0: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
0: जी
1: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
0: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओं, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
0: जी
1: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना। कहने दो उन्हें, सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, उठो, आ जाओ, आओ। हाँ

0: देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो क्या तुम्हें नहीं लगता थी मक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
1: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
0: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
1: हाँ।
0: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उंडेल दें।
1: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
2: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
3: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
1: सुनिए देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
0: हाँ ये तो है।
1: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
0: सही कहा।
1: और हाँ पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
0: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
1: ठीक है,
0: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
1: बिल्कुल ठीक है।
2: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
3: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
2: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
3: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
1: अजी सुनिए।
0: हाँ।
1: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
0: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
1: हाँ।
0: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
1: अरे अरे इसको भी डालो।
0: हाँ,
1: ये देखो
0: देखो देखो कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
1: प्यारा लग रहा है मेरा छोटा सा बच्चा।
2: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं, तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
3: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
0: देखा थिमक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे ये।
1: हाँ।
0: और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
1: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
0: हाँ।
1: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
0: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
4: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
5: हमारा शहर हो
6: बढ़िया।
2: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का, होलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
3: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
6: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
2: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
7: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
2: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
8: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
2: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है। फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 11 बजने वाले हैं, हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार।
1: आप सभी से अनुरोध,
0: सीमा सुरक्षा बल गान की प्रस्तुति अभी आपने सुनी और विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डीएन ध्रुव के साथ आकाशवाणी की ओर से कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और माननीय मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपना स्थान ग्रहण कर चुके, उनको पुष्प भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार पुष्प भेंट कर रहे हैं श्री अमित शाह जी को।
2: Well, the program has begun with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah. They have all taken the seats on the dais. And now we have the welcome address by the DG of BSF, Shri Praveen Kumar. He walks to the podium to address the gathering.
0: आपको बताना चाहेंगे आज यहाँ सीमा सुरक्षा बल का 23वां अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान जैसे गरिमामय और प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन आज विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में किया गया। कुछ एक पलों में विधिवत स्वागत।

और फिलहाल आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आज उन वीर सीमा प्रहरियों के शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने पराक्रम से देश का गौरव विश्व पटल पर ऊंचा किया है। अनेक सीमा प्रहरियों ने वीरता के अमित कीर्तिमान स्थापित किए हैं और

0: The 23rd BSF Investiture Ceremony and the Rustamji Memorial Lecture is taking place today at the Vigyan Bhavan. And with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah, the program has just begun and he was presented with a bouquet. And now, the DG of the BSF, Shri Praveen Kumar, is at the dais addressing the gathering with a welcome address.
1: और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं. उनका साहस, समर्पण और बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है. हम आज अपने बल के संस्थापक श्री के एफ रुस्तम जी की गौरवशाली विरासत को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि और सफल नेतृत्व ने इस महान बल की मजबूत नींव रखी. पिछले छह दशकों में सीमा सुरक्षा बल ने विश्व के श्रेष्ठतम सीमा सुरक्षा बलों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है. सीमा प्रबंधन, आतंकवादी रोधी अभियानों तथा आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीएसएफ ने अद्वितीय पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे जवानों ने वीरता एवं

0: कर्तव्य निष्ठा की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए दो वीर चक्र एवं अनेक वीरता पदक अर्जित किए हैं। हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं, सुदृढ़ एवं व्यापक सीमा प्रबंधन, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तत्परता और जवानों का कल्याण। गत वर्ष सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की तथा माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बल के तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन तकनीक, थर्मल इमेजर तथा एकीकृत कमांड सिस्टम जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावी रूप से अपनाया गया है। गत वर्ष BSF ने सीमा पार से भेजे गए 300 से अधिक ड्रोनों को निष्क्रिय कर मार गिराया है, जो उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति हमारी सतर्कता एवं सजगता का प्रमाण है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, आवास एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जवानों और उनके परिवारों के जीवन स्तर एवं मनोबल को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल ने खेलों में के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 8 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक तथा राष्ट्रीय खेलों में 149 पदक अर्जित किए हैं। यह अत्यंत गर्व का विषय है कि कल ही मात्र 24 घंटा पहले BSF की प्रथम सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा एवं BSF का ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त किया है। साथ ही BSF की पुरुष पर्वतारोहण टीम माउंट लोत्से अभियान पर अग्रसर है, जो बल की अदम्य साहस एवं उत्कृष्टता की भावना को प्रतिबिंबित करता है। यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपनी हीरक जयंती मना रहा है। सेवा, बलिदान और शौर्य के 60 गौरवशाली वर्ष। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, मैराथनों एवं जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में BSF ने कश्मीर, जम्मू, अमृतसर एवं देहरादून में सफल मैराथनों का आयोजन किया, जो जनता के साथ बल के गहरे जुड़ाव एवं राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाता है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य को साकार करने हेतु BSF पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भी आश्वस्त करते हैं कि सीमा की समस्त सीमा प्रहरी परिवार सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध एवं समर्पित है। अंत में मैं एक बार पुनः माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सीमा सुरक्षा बल को निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद।
1: महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी ने विधिवत स्वागत किया सभी अतिथिगणों का। और अब BSF डॉक्यूमेंट्री पर एक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा।
2: सुरक्षा बल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। यूं तो सीमा सुरक्षा बल की गौरवशाली यात्रा उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन और अद्वितीय आंतरिक सुरक्षा क्षमता के साथ साथ आधुनिकतम तकनीकी दक्षताओं को एक छोटे से अंतराल में बयां कर पाना बेहद कठिन है, परंतु हमने इसके सारांश को एक छोटे से वृत्तचित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे नाम दिया है सीमा और आंतरिक सुरक्षा के सजग प्रहरी सीमा सुरक्षा बल। तो प्रस्तुत है यह वृत्तचित्र।
3: वर्ष 1965 में स्थापना के साथ ही BSF ने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व संभाला। स्थापना के मात्र 6 वर्षों के बाद संस्थापक महानिदेशक श्री KF रुस्तम जी के नेतृत्व में BSF ने 1971 के युद्ध में पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं पराक्रम का परिचय दिया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में BSF की अहम भूमिका रही है। बाद के वर्षों में सीमा सुरक्षा के साथ साथ BSF ने पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियानों और पूर्वोत्तर भारत के प्रतिविद्रोहिता अभियानों में अप्रतिम योगदान दिया। कारगिल युद्ध के समय भी BSF के वीरों ने अग्रिम मोर्चों पर डटे रहकर अपनी बहादुरी सिद्ध की।

भारत सरकार के 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने में भी बीएसएफ की सक्रिय भागीदारी रही है। इन सभी अभियानों में अद्वितीय योगदान के लिए बीएसएफ ने अनेक वीरता पदक अर्जित किए। आज पश्चिमी सीमा पर हिमालय की बर्फीले व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, तपते रेगिस्तान तथा गुजरात के विशाल रण जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए सीमा प्रहरियों के समक्ष

0: बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है।
1: अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर प्रहरियों की गाथाएं राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में सदैव अमर रहेंगी। गृह मंत्रालय सदैव बीएसएफ के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत रहा है तथा बल के आधुनिकीकरण, परिचालन क्षमता और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।
0: और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूँ, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती।
1: आधुनिकीकरण की दिशा में बीएसएफ अग्रसर है, जिसे स्मार्ट फेंस की व्यवस्था बखूबी रेखांकित करती है। यह फ्लडलाइट्स, ड्रोन आधारित निगरानी, रडार, फिडार, सीसीटीवी कैमरों और अन्य उपकरणों के समेकित उपयोग की व्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्रोन फॉरेंसिक्स के उपयोग में भी बीएसएफ ने नए प्रतिमान रचे हैं। सीमा प्रबंधन में तकनीकी नवाचारों का समावेश करने के लिए विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से करार किए गए और किए जा रहे हैं। बीएसएफ की अश्रु गैस इकाई ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस संस्था के उत्पाद आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में भी बीएसएफ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। बीएसएफ में खेलों के प्रति नीतियों में आमूल परिवर्तन किए गए हैं। खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण, खानपान, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उन्नत प्रशिक्षण उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बीएसएफ के खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस गेम्स, पुलिस ड्यूटी मीट तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और वुशु जैसे खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश एवं बल का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। बीएसएफ के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित स्वदेशी नस्ल के श्वानों ने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। प्रहरियों का कल्याण गृह मंत्रालय एवं बल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन एवं अन्य देयकों के त्वरित निस्तारण को भी बीएसएफ प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बल की हीरक जयंती के अवसर पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 60 वर्षों की सेवा, बलिदान एवं सशक्तिकरण की गाथाओं को पिरोए हुए अनेक कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण में बीएसएफ के योगदानों को जन जन तक पहुँचाना है। हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बीएसएफ के महिला पर्वतारोही दल ने वंदे मातरम अभियान को सफल काम करते हुए 21 मई 2026 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई है।
2: कौशल, शेरिंग, रेबेका और मुनमुन, सबसे पहले तो समस्त बीएसएफ परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
1: विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रगीत गाकर बीएसएफ टीम ने देश और बल के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। आज इस अवसर पर प्रत्येक सीमा प्रहरी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और माननीय गृह मंत्री जी के सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वोत्तम सुरक्षा बल बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुनः संकल्प लेता है। जय हिंद।
3: सुरक्षा बल ने अपने 6 दशकों में गौरवपूर्ण सफर में

0: केवल सीमाओं की रक्षा की है बल्कि देश की विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों में भी अद्वितीय योगदान दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने स्वयं को विशिष्ट संगठन के रूप में स्थापित करते हुए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में होने का सम्मान भी अर्जित किया है। और अब सीमा प्रहरियों का अलंकरण समारोह मुख्य अतिथि श्री अमित शाह के कर कमलों से।
1: And now the awards are going to be given to all the people for the gallantry and for the wonderful work they have done for the country and what they have achieved. And they'll be receiving the awards from the Home Minister, Shri Amit Shah. And Shri Amit Shah has come to the front of the dais to give away the awards to everyone.
2: BSF ki 35 battalion ki ek tukdi area domination ke liye aage badh rahi thi. तभी नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी की चपेट में आकर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अब इस बहादुर प्रहरी ने ना सिर्फ आखिरी सांस तक नक्सलियों से लोहा लिया बल्कि अपने साथियों को सुरक्षित बचाने में भी कामयाब रहे। अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की बहादुर धर्म पत्नी श्रीमती राजवती।

आरक्षक रंजीत यादव 163 बटालियन मरणोपरांत। 6 जून 2023 मणिपुर के मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शांति बहाली के लिए तैनात 163 बटालियन की टुकड़ी पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे टुकड़ी में शामिल आरक्षक रंजीत यादव बुरी तरह जख्मी हो गए, परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी रंजीत यादव आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उपद्रवियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। असीम शौर्य, पराक्रम, मारक क्षमता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर प्रहरी रंजीत यादव को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक रंजीत यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या यादव।

आरक्षक नरेंद्र कुमार मरणोपरांत एवं श्री अशोक कुमार उप कमांडेंट 122 बटालियन 28 मई सन 2023 मणिपुर का मौर्य इलाका। राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के मकसद से तैनात बीएसएफ की 122 बटालियन की एक टुकड़ी का नेतृत्व बहादुर अधिकारी श्री अशोक कुमार कर रहे थे। अचानक उग्र भीड़ ने आम नागरिकों पर हमला कर दिया। अमूल्य मानव जीवन की हिफाजत के लिए सीमा प्रहरियों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों का डटकर मुकाबला किया। परंतु इस दौरान सीमा प्रहरियों की टीम में शामिल बहादुर आरक्षक नरेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन आखिरी दम तक डटे रहे और कर्तव्य की बलिदिवेरी पर अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत नेतृत्व क्षमता और पराक्रम के लिए बहादुर अधिकारी अशोक कुमार तथा शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार को वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पहले पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती सुनीता देवी।

देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास असंख्य वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। उसी गौरवशाली इतिहास में गत वर्ष एक और नया अध्याय लिखा गया, जिसे हम सभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट 7वीं बटालियन, 9 और 10 मई 2025 की रात जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी सीमा चौकी खरकोला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच बहादुर अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने नेतृत्व संभाले रखा और अपनी जान पर खेलकर अपने घायल साथियों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शौर्य, पराक्रम, नेतृत्व एवं बहादुरी की अद्भुत मिसाल कायम करने वाले इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट।

श्री रविंद्र राठौड़ उप कमांडेंट, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर से लगी पाकिस्तानी सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाक रेंजर को अपनी जान पर खेलकर गिरफ्त में लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न हुए सामरिक व पेचीदा कूटनीतिक परिदृश्य को बदल देने वाले बहादुर अधिकारी श्री रविंद्र राठौड़ उप कमांडेंट को उनके अदम्य साहस, शौर्य तथा सूझबूझ के लिए वीरता पदक से अलंकृत किया गया। श्री रविंद्र राठौड़ उप कमांडेंट।

श्री आलोक नेगी सहायक कमांडेंट 53वीं बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर दुश्मन द्वारा की गई तीव्र एवं लगातार गोलाबारी के बीच 53वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री आलोक नेगी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में अग्रिम चौकियों पर तैनात रहते हुए अपने जवानों का मनोबल बनाए रखा और अपनी प्रभावी कार्रवाई से शत्रु की गतिविधियों को निष्फल किया। साहसिक नेतृत्व, वीरता, पराक्रम और असीम शौर्य के लिए इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री आलोक नेगी, सहायक कमांडेंट।

मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा 175 बटालियन 20 अप्रैल सन 2023 भारत बांग्लादेश सीमा पर रात के लगभग 9:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा ने टैंगोन नदी के पुल के समीप कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देख जैसे ही ललकारा कि भारी संख्या में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहादुर सीमा प्रहरी नरबू शेरपा ने वीरता के साथ मुकाबला करते हुए एक तस्कर को धर दबोचा। शौर्य पराक्रम एवं वीरता की पराकाष्ठा रचते हुए मातृभूमि की रक्षा सुनिश्चित करने वाले हेड कांस्टेबल नरबू शेरपा को राष्ट्र द्वारा वीरता पदक से अलंकृत किया गया। मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा।

और अब सराहनीय सेवा पदक उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जिनकी लंबी बेदाग और सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप राष्ट्र द्वारा सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम अलंकरण हेतु गर्व से आगे आ रहे हैं श्री मनिंदर प्रताप सिंह पवार महानिरीक्षक।

और अब विशेष संक्रिया यानी स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक श्री अंकित गोयल आईपीएस उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर 12 नवंबर सन 2021 महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में एसपी के रूप में तैनाती के दौरान श्री अंकित गोयल ने विश्वस्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें नक्सलियों और कमांडोज के बीच 13 से 16 नवंबर 2021 तक चले मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए तथा भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वीरता शौर्य एवं रण कौशल में माहिर इस बहादुर अधिकारी को स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अंकित गोयल उप महानिरीक्षक।

0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वह हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह
1: एंड नाउ श्री अमित शाह द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द ईयर। ही वॉक्स टू द पोडियम।
2: आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी, श्री तपन डेका जी निर्देशक आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार जी सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय, श्री महेश कुमार अग्रवाल विशेष महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल, और आज इस सभागार में उपस्थित 43 वो बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिनको अलग अलग प्रकार के पदक आज प्राप्त हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के सभी पूर्व डीजी जिन्होंने अपने अपने समय में सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है, और भारत सरकार के सभी उपस्थित अधिकारीगण, अलग अलग सीएपीएफ के डीजी और प्यारे जवानों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अधिक निष्ठा, कर्तव्य परायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है इसका प्रतीक है। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति में स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद

सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण KF रुस्तम जी के नेतृत्व में BSF की स्थापना हुई, और जब से BSF की स्थापना हुई है, सैन्य सैन्य BSF ने न केवल गृह मंत्रालय, पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा करकर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया, और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को बनाने का भी काम किया। कोई भी संस्था में संस्थापक शुरुआत किस रास्ते पर करता है, इसका बड़ा महत्व होता है। और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रीमान रुस्तम जी ने जो नींव डालने का काम किया है, वो नींव पर आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक भव्य इमारत बनाने का काम BSF ने किया है, जो देश के लिए अति गौरव की बात है। आज यहां पर वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गृह मंत्री पदक भी हमारे जवानों ने जवानों को दिया गया है। ये कोई सीमा सुरक्षा बल के लिए नई बात नहीं है। मैं आगे बताऊंगा, ढेर सारे पदक आपने आपके शौर्य और पराक्रम से अर्जित किए हैं और बल की शान हमेशा बढ़ाई है। मगर सबसे पहले मैं अभी अभी BSF की महिला टीम द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को और सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमने दृश्य देखा, एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहां दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। मैं उन महिला जवानों को, उनके अनुभव को यहां बैठकर महसूस करता था कि कितना रोमांच हुआ होगा जब आसमान को छूने वाली चोटी पर वंदे मातरम का वो गान करते होंगे, और वो भी वंदे मातरम के 150वीं जयंती के वर्ष में एक गान गाने का सौभाग्य इनको मिला है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्र, अटल जी के समय पर एक बॉर्डर एक बल ये सिद्धांत तय किया गया, और उसके बाद BSF को देश की सबसे दो कठिन सीमाओं का काम दिया गया। पाकिस्तान से सटी हुई 1289 किलोमीटर की सीमा और बांग्लादेश से सटी हुई 4100 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों सीमाएं वल्नरेबल भी है और हमारे लिए चिंता का कारण भी है, परंतु उस वक्त भी सोच समझकर ही देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने निर्णय किया होगा कि जो सबसे कठिन काम है वो BSF को दे दीजिए, BSF कभी दो कदम पीछे नहीं हटेगी। और मुझे कहते हुए आनंद है कि अब तक ये बॉर्डर, दो बॉर्डर को आपके संभालने

के बाद जितनी भी चुनौती आई इसमें पराजय का मुंह दुश्मन को ही देखना पड़ा है, कभी आपने भारत का सर नीचे नहीं होने दिया है। और आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की नई चुनौतियां सीमा सुरक्षा में हमारे सामने खड़ी हुई, अवैध घुसपैठ, नारकोटिक्स की तस्करी, गौ तस्करी, फेक करेंसी का चलन, संगठित अपराध, ड्रोन से हथियारों की और नशे की तस्करी, कई प्रकार की चुनौतियां बीएसएफ के सामने हैं। मगर बीएसएफ ने लगातार इसके लिए किसी न किसी प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करने का सुनियोजित प्रयास किया है। और मैं आगे पर 60वें साल में भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी बताऊंगा, मगर आपने आपके पास जो सीमित संसाधन थे वो सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इस सभी चुनौतियों के साथ दो दो हाथ कर देश की सुरक्षा करने का काम किया है, जिससे हमें सुनिश्चितता है। आपकी भूमिका अब आने वाले दिनों में और ज्यादा अधिक इंटीग्रेटेड भी करनी पड़ेगी और व्यापक भी करनी पड़ेगी। अब हम केवल पारंपरिक तरीके से सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने राज्य पुलिस, सशस्त्र बल, अन्य सशस्त्र बल, एनसीबी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और राज्य के प्रशासन इस सब के साथ मिलकर सुरक्षा की ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। और एक हमने सीमा सुरक्षा को एक आइसोलेटेड काम के रूप में देखने की जगह एक टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सारी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने आगे के खतरों को भी देखना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के उस पार से कृत्रिम तरीके से जनसंख्यिकी में जो बदलाव किया जा रहा है घुसपैठ के द्वारा, उसको रोकने के लिए सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। अर्थतंत्र पर नार्कोटिक्स और फेक करेंसी के हमले से जिस प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए भी हमने सतर्क रहना पड़ेगा। साइबर चुनौतियां, हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन के खतरे, ये सभी के लिए एक नई रणनीति लेकर आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सीमा सुरक्षा बल ये करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, आज सीमा सुरक्षा बल के काम का व्याप देखते हैं तो सियाचिन और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां, कुपवाड़ा, केरन, उरी जैसे दुर्गम क्षेत्र, राजस्थान का रण, कच्छ का छोटा रण, सरक्रिक के दलदली नाले, सुंदरवन के घने जंगल और झरने, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की कठिन पूर्वी सीमाएं और ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए कठिन संवेदनशील नदी क्षेत्र भी है। और ये सभी के बीच में सीमा सुरक्षा बल डटा हुआ है। और इसी के कारण 1965 में महज 25 बटालियनों से अल्प संसाधनों के साथ शुरू हुआ सीमा सुरक्षा बल आज 2,70,000 की नफरी के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बना है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इस 8 साल की जर्नी में एक महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र,

मेरा शौर्य चक्र, 47 सेना मेडल और 1262 वीरता के लिए पुलिस पदक सीमा सुरक्षा बल ने अपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के कारण अर्जित किए हैं, वो हम सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मित्रों, 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए तीनों हमले, हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगांव हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करकर, एक बार एयर स्ट्राइक करकर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इनके मर्म स्थान पर प्रहार करकर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया जब आतंकी हमलों के बाद वार्ताएं हुआ करती थी, नक्सलवादी बेखौफ होकर जन नरसंहार करते थे और सरकारें वार्ता करती थी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक प्रकार से घोषणा है और मैं मानता हूं उसमें सीमा सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने वाले हमारे जवानों को हमने यहां पर अलंकरण से नवाजा है, मगर मित्रों, आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा और मैं मानता हूं ये लॉन्च होने के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल भी होगा और मजबूत भी होगा, क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा

सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकुत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून थून कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा। और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते देखते देखते समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर दिखाया है कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज 1, वाइब्रेंट विलेज 2 आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है, कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड दोनों देशों की सीमाओं के सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह से मैंने किया कहा कि 60वां वर्ष एक स्मार्ट बॉर्डर बनाने का वर्ष है, उसी तरह से

0: आठवां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। दो महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी, जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी हम आने वाले एक साल के अंदर लेकर आएंगे। हमने एक बहुत बड़ा अभियान कुछ समय के बाद नारकोटिक्स के खिलाफ भी देश में चलाने जा रहे हैं। इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले हैं और हमने इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है। तकनीक की सुरक्षा आने से जवानों की जिम्मेदारी कम नहीं होती, तकनीकी सुरक्षा का सपोर्ट आने से जवानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए, स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्थापित करते हुए, स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए हम सब एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है और हमारी जनसांख्यिकी के में कृत्रिम परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उसमें आपका पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग मिलेगा और हम एक नई सुरक्षा ग्रिड का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर बनाने में सफल होंगे। फिर से एक बार श्रीमान रुस्तम जी को मन पूर्वक नमन भी करना चाहता हूं और उनके काम की सराहना भी करना चाहता हूं और जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबको श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।
1: भविष्य में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और मजबूत सुरक्षा ग्रिड के लिए अभियान चलेगा और अभियान में सहयोग की भी आवश्यकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपने विचारों के साथ।
2: इस दिवस की याद को हमेशा संजोए रखेगा।
1: और अब सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री प्रवीण कुमार द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह।
2: धन्यवाद श्रीमान। और
3: श्री महेश अग्रवाल विशेष महानिदेशक डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री प्रवीण कुमार।
1: विशेष महानिदेशक द्वारा धन्यवाद।
4: माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री तपन डेका डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार सचिव सीमा प्रबंधन, श्री प्रवीण कुमार महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक और गरिमामयी बना दिया है। आपके सानिध्य और समय के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, आपने अत्यंत व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है बल्कि यह दर्शाया है कि सीमा प्रहरियों के

0: व्यक्ति आपका स्नेह, सम्मान और विश्वास अटूट है, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरणादायी शब्दों ने हम सभी का उत्साह बढ़ाया है तथा हमें नई ऊर्जा प्रदान की है। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का संकल्प करते हैं। सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा। मैं मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद। जय हिंद।
1: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय द राष्ट्रगीत।
2: सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन में शामिल होने का, जिसे प्रस्तुत करेंगे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आए युवा कलाकार।

0: the end of the 23rd investiture ceremony of the Border Security Force. And well, the last two items, the national song and the national anthem. And with that, we see the Home Minister making exit from the plenary hall. And it was a wonderful occasion. People, I'm sure, are really going to cherish this all their life, all the members of the Border Security Force who have been here. And it's been a wonderful experience, a wonderful message on the Rustam Ji Memorial Speech lecture by the Home Minister, Shri Amit Shah.
1: आज का ये अलंकरण समारोह साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रतीक है। हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को हमेशा सर्वोपरि रखा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में न केवल हमारे वीर जवानों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया बल्कि हमें राष्ट्र सेवा के मूल्यों और अधिक गहराई से समझने की प्रेरणा भी प्रदान की। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वी के तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्रा, कमल सिंह, हेमराज मीणा और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूं। नमस्कार।
2: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 23वें अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे प्रीति मोहन और डी एंट्रियो। ये आकाशवाणी है।

अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा जैव विविधता, प्रकृति की असली पूंजी। इसके अलावा ग्रामीण भाई सुनेंगे लोकगीत, कलाकार होंगे बरमदीन यादव और साथी। सात बजकर 31 मिनट पर संस्कृत कार्यक्रम होगा, जिसमें आज डॉक्टर ललित कुमार की वार्ता सुनवाई जाएगी। विषय होगा संस्कृत व्याकरणस्य प्रयोजना नाम उपादेयता। सात बजकर 45 मिनट पर सुगम संगीत कार्यक्रम होगा, जिसमें गीत और भजन आप सुन सकेंगे। कलाकार होंगे माहेश्वर दयाल। रात 8 बजे चित्रपट संगीत और 8:30 बजे अंग्रेजी कार्यक्रम में आज सुनिएगा के राशि कुमार की वार्ता, आकाशवाणी 90 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। रात 9:30 बजे गजलों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम कहकशां होगा और रात 10 बजे आप सुनेंगे कलीम उर्फी का लिखा नाटक दाढ़ी वाला हाथी। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित सी आर व्यास का राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन।

अभी आप सुन रहे थे पंडित सी आर व्यास का राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे पंडित पी वालवाकर और तबले पर थे पंडित नाना मुले। अब आज का शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश।

0: इस समय श्रोता सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपना नाम बता दीजिए।
1: आदरणीय मधु दीदी को सादर से प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: आगरा उत्तर प्रदेश ताज नगरी से राजू लवानिया बोल रहा हूँ दीदी
0: जी। आगरा से राजू लवानिया जी हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में। तो राजू जी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज उनका नाम है नरसिंह भगत
0: जी
1: और गाने के बोल हैं दर्शन दो श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी।

0: ये वाला गाना सुना था दीदी।
1: जी जी, तो चलिए आज के इस हेलो फरमाइश की शुरुआत हम करते हैं इस भक्ति रचना के साथ, जिसकी फरमाइश आगरा से आई है, राजू लवानिया जी ने की है।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते
0: नमस्कार
1: जी, मैं प्रतापगढ़ जिले से बोल रहा हूँ
0: जी। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मुझे गाजर फिल्म का है जो सलमान खान की है
0: जी। जी
1: उसमें है एक गाना फरियाद को करें।
0: जी हाँ, गर्व फिल्म का ये गीत है और सलमान खान की फिल्म है, तो आइए आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए सुनवा।

0: आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। अपना नाम बता दीजिए।
1: हेलो नमस्ते, आदाब मैम।
0: नमस्कार जी, नमस्कार।
1: मोहम्मद अयूब चकिया घरारा संसद प्रयागराज से, नियमित श्रोता आपका।
0: जी अयूब जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: धर्मेंद्र और श्रीदेवी फिल्म थी, श्रीदेवी नहीं थी, इसमें हेमा मालिनी थी साथ
0: जी, जी जी जी।
1: और अजिया सुल्तान फिल्म का नाम।
0: वाह वाह
1: जी, जिसमें लता जी अपने बहुत कोमल तो मधुर आवाज में गाना गाई है, आए दिल नादान।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत
1: बहुत
0: है
1: प्यारा, और ये मन को शांति देने वाला था। और हाँ, ज्यादा सुनने में मजा आता
0: है। बहुत ही कहते हैं ना, जैसे सूदिंग गाना है ये, जिसको सुन के एकदम आंख बंद करके सुनिए तो लगता है सुनते ही जाए। उस टाइप का गाना, बिल्कुल बहुत बढ़िया गाने का चुनाव है। आपने सही कहा है, तो हम आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

हेलो फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। अपना नाम बता दीजिए। जी नीतीश जी, कौन सा गीत सुनेंगे? जी जी, तो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मत राशि के आदरणीय दीदी को शारदा से प्रेम प्यार नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। देखिए मथुरा से फोन आते ही ना बैकग्राउंड में बांसुरी की आवाज आने लगी।

0: लगती है, लगता है कान्हा की बांसुरी बज रही हो। तो वही वहीं से फोन किया है शारदा प्रसाद प्रजापति जी ने आकाशवाणी प्रयागराज के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान
0: जी,
1: मुकेश दत्ता जी का गाया हुआ गीत है
0: जी जी
1: इन रस्मों को इन कस्मों को मैं ना भूलूंगा।
0: वाह वाह, क्या खूबसूरत गीत चुना है आपने, बहुत ही अच्छा गीत है। और ये बताएं किसी का नाम लेना चाहते हैं आप?
1: जी हमारे मछली भैया है श्री केशव प्रसाद प्रजापति गांव दोदापुर से,
0: जी
1: और भतीजे है नीलम कौशल श्री जी और सिद्धार्थ, इन सभी के साथ साथ में लोकेन वर्मा और अविनाश जी जी, इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत प्रेरणा देते हुए
0: जी जी
1: आपके अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी प्रयागराज से।
0: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिला।

0: लेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
2: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
3: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding talks with President of Cyprus Nikos Christodoulides in New Delhi to further strengthen bilateral cooperation. We now go over live to the Prime Minister's address.
3: और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
4: Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting of the Council

0: सात सुरों के इस हसीन सफर में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं निकहत
1: और मैं संगीता।
0: स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, साथ जीवन की सबसे खूबसूरत बात है। जब कोई साथ होता है तो जिंदगी आसान लगती है, खामोशियां भी बातें करने लगती हैं और दिल मुस्कुरा उठता है। कभी कोई अपना एक सच्चा सा दोस्त, कभी एक अच्छी सी किताब, तो कभी कोई मनपसंद काम। ये छोटे छोटे से साथ ही तो हैं जो जीवन को अर्थ देते हैं, उसे जीने लायक बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक साथ ऐसा भी है जो बिना कुछ कहे दिल की हर भावना को छू लेता है, जो उदासी में सुकून और खुशियों में रंग भर देता है। वो साथ है संगीत का। संगीत जो कभी आपका हमसफर बन जाता है, कभी आपकी आवाज और कभी आपकी कहानी बन जाता है। तो फिलहाल एक खूबसूरत सा सुरीला सा समय हम आपके लिए संजो रहे हैं संगीत के साथ, आपकी ही पसंद पर, जहां आपके दिल की धड़कनों से जुड़ेंगे आपकी पसंदीदा गीत, जहां आपकी एक कॉल इस महफिल को बना देगी और भी खास और भी खूबसूरत।
1: तो इस खूबसूरत महफिल में आज हमने परदेश और अभिमान फिल्मों के गीतों को शामिल किया है। तो अपनी पसंद की फिल्मों के गीत सुनने के लिए हमें कॉल करें। हमारा फ़ोन नंबर है 0532242 3649 पर।
0: और हमें संकेत मिल रहा है कि हमारे पहले कॉलर कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी जी, नाम बताइए अपना।
2: जी, सविता बोल रही हूँ, लखनऊ से।
1: लखनऊ से सविता जी, तो बताइए कैसी हैं आप?
2: बहुत बढ़िया, जबरदस्त।
1: हाँ, जबरदस्त। तो भाई, आपकी आवाज से ही पता चल रहा है कि आप जबरदस्त हैं। और बताइए कि लखनऊ का मौसम कैसा है?
2: हेलो, गर्मी है,
0: गर्मी बहुत तेज है। तो जी, सविता हाँ, जी गर्मी से इस बचाव के लिए क्या उपाय करती हैं आप?
2: ज्यादातर तो कोशिश होती है कि घर पे रहे, वैसे घर पे रह नहीं पाते हम लोग, जरूरत होती है तो बाहर निकलते हैं। बाकी पना है, नींबू पानी है, प्याज रखते हैं हम लोग साथ में।
0: जी जी जी, तो करती क्या है आप सविता? सविता जी क्या करती हैं?
2: जी,
0: आप क्या करती हैं?
2: मैं जॉब में हूँ।
0: क्या करती हैं?
2: हाँ जी, विधानसभा सचिवालय में एज ए डिप्टी सेक्रेटरी।
0: कितने सालों से आपका अनुभव है, कितने सालों से आप काम कर रही हैं यहाँ?
2: 22 साल हो गए मुझे।
0: 22 साल हो गए, एक लंबा अनुभव है आपको। तो रेडियो से जुड़ाव कब से है आपका?
2: हाँ जी मैम,
0: रेडियो से जुड़ाव कब से है आपका?
2: बचपन से, जब हम लोग छोटे थे तभी से।
0: मतलब लंबे समय से
2: जाना, कुछ सुनना शुरू किया तब से जो है आकाशवाणी रेडियो से जुड़ाव रहा है।
0: बहुत अच्छी बात है। और सविता जी, आप इस कार्यक्रम की पहली कॉलर हैं, तो बताइए आपकी पसंद के किस गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की जाए?
2: देश फिल्म का गाना है जरा तस्वीर से, ओ मेरी महबूबा।
0: ओ मेरी महबूबा, बहुत खूबसूरत गीत है। तो आपकी रेडियो सेट पर लखनऊ में हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
2: थैंक यू मैम।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी। नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: तो बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। हेलो हेलो हेलो,
1: हेलो मैम,
0: नमस्ते। हाँ
1: पोस्ट हटिया, तहसील हटिया, थाना हटिया, गांव मगराम, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं। मैं
0: जी प्रेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं प्रेमचंद जी?
1: बिल्कुल अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं, और जब हमारी हमारे श्रोताओं से बात होती है तो और भी अच्छे हो जाते हैं। क्या करते हैं प्रेमचंद जी?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और पशु हैं, गाय भैंस हैं, उनका दूध निकाल कर बेचता हूँ।
0: तो मतलब
1: जी
0: खेती और पशुपालन दोनों साथ साथ करते हैं।
2: हाँ, तो भाई
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम।
2: ये बताइए कि जो पशुपालन आप करते हैं, तो आप गाय पालते हैं, तो दूध भी बेचते होंगे आप?
1: जी गाय भैंस दोनों हैं, लेकिन इस समय भैंस लग रही है, आज दूध बेचते हैं मैम।
2: जी, और कृषि किस चीज़ की करते हैं, किस चीज़ का आप खेती करते हैं?
1: जैसे धान वगैरह, गेहूं हो गया, आलू हो गया, और पशुओं के लिए चरी बोते हैं।
2: जी,
0: रेडियो सुनते हैं प्रेमचंद जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: हेलो फरमाइश, हेलो अनुरोध, पनघट प्रोग्राम, और गृह लक्ष्मी, हेलो गृह लक्ष्मी कार्यक्रम, यूथ एक्सप्रेस एक कार्यक्रम होता है, वो मेरा फेवरेट कार्यक्रम है, शुक्रवार को दिन में 11:30 बजे प्रसारण होता है उसका।
0: जी, तो इन सब प्रोग्राम में से कौन से कार्यक्रम है जो आपको ज्यादा पसंद है?
1: फिल्म संगीत,
0: फिल्म संगीत सुनना पसंद करते हैं? तो
1: बिल्कुल,
0: सिर्फ
1: जिसमें नए गाने ज्यादातर सुनाए जाते हैं।
0: अच्छा, तो सिर्फ गाना सुनते ही हैं या गाते गुनगुनाते भी हैं?
1: नहीं मैम, गाते भी हैं।
0: गाते भी हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: अच्छा,
2: तो
0: तो कुछ सुनाइएगा, 2 लाइन।
1: तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारे होठों की सुर्खियों से, ओ तुम्हारे होठों की सुर्खियों से वफा की शबनम झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत।

0: झलक रही।
1: क्या
2: वाह
1: बात
2: वाह,
1: है,
2: क्या
1: क्या बात
2: बात
1: है,
2: है,
1: बहुत
2: बहुत
1: खूबसूरत गाना गाया आपने।
0: अच्छा, अब ये
2: मेरा जो है गाने का शौक है, मैं यूट्यूब और इंस्टा पर चैनल भी बनाया हूँ, मैं
1: अच्छा
2: जानता रहता हूँ।
1: जी
2: और
1: जी तो
2: जी
1: अब
2: प्रेम
1: ये
2: आप
1: प्रेमचंद प्रेमचंद जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए।
2: अभिमान फिल्म का कोई भी गाना सुनवा दीजिए मैम, क्योंकि गाना हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी गाना आप प्ले करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: ठीक है, तो
3: लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: हम अपनी श्रोताओं को बता दें कि इस समय जारी है आकाशवाणी प्रयागराज से सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी। बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: लगता है निकट हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है
0: जी।
1: तो भाई आप हमें कॉल करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर नोट करें 0532242 3649 पर, और दूसरा नंबर है हमारा 0532297 0462 पर।
0: और हमारे वो श्रोता जो किसी कारणवश फ़ोन के माध्यम से नहीं जुड़ पा रहे हैं इस कार्यक्रम से, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी पसंद का गीत हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो संगीता जी, हम अपने लिसनर्स के फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार तो कर ही रहे हैं, इस बीच कुछ जो श्रोता हैं उनके मैसेज भी हमारे पास आ रहे हैं, तो हम उनका नाम भी बताएंगे, लेकिन पहले हम अपने श्रोता की कॉल रिसीव करते हैं। हेलो
2: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम जी।
0: गुड आफ्टरनून, नाम बता दीजिए।
2: नाम मेरा वीरेंद्र कुमार है।
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
2: ग्राम चकाई मधीपुर जनपद कौशाम्बी
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं ब्रजेंद्र जी?
2: हम अच्छे हैं।
0: अच्छे हैं, और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
2: जी इन दिनों हम गीत संगीत सुनते रहते हैं और हम नेत्रहीन हैं।
1: अच्छा, क्या करते अच्छा। हैं आप?
2: हम ऐसे
0: देखिए, हाँ
2: हम सुनते रहते हैं
0: जी। जी बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना आपको पसंद है, क्या अच्छा लगता है करना आपको?
2: हमको संगीत

0: सीखना संगीत बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा लगता है सुनना, तो सिर्फ
0: सुनना
1: सुनते
0: अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, गाते अच्छा, भी हैं।
1: गाते
2: तो
1: भी
2: हैं, गाते हैं तो थोड़ा हमें सुना भी दीजिए।
0: जी
1: जी सुनना चाहेंगे आपसे हम दो लाइन किसी भी गीत की?
0: सुना दें?
1: जी जी बिल्कुल स्वागत है
0: जी।
1: जी सुनाइए।
0: जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत सुंदर गीत गाया आपने।
2: अब ये बताइए कि आपने कॉल किया है तो आप किस फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं? आज हम दो फिल्मों के गीत सुनवा रहे हैं, परदेश और अभिमान। आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: कोई भी गीत।
1: अभिमान फिल्म का कोई भी गीत।
2: तो लीजिए सुनवा रहे हैं आपको आपके पसंद का ये गीत,

0: संगीता जी, हमारे लिसनर्स लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारे अगले श्रोता भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते, अपना परिचय दीजिए।
1: आकाश नानी का जुनून दिल में रहता है हमारे हर पल, आकाश नानी का जुनून दिल में रहता है हमारे हर पल, गंगा के पास में घर है मेरा, जहाँ बहता है शीतल जल, नाम है मेरा राजेंद्र, गाँव है सोच को।

0: क्या बात है,
1: वाह वाह क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से आपने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज की राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया।
0: निखा जी हमारे रेगुलर श्रोता हैं ये, और जब भी ये अपने कॉल करते हैं हमें तो एक खूबसूरत सी कविता के साथ करते हैं, तो दिल खुश हो जाता है भाई। तो बताइए
1: कैसे हैं राजेंद्र जी?
2: बस मैं दुआ, आप लोग आप कहते हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं। और बताइए आपका कामकाज कैसा चल रहा है, खेती किसानी का?
2: बस मैम सब ठीक ठाक चल रहा, थोड़ा गर्मी इस वक्त ज्यादा पड़ने लगी है।
1: हाँ तो ये बताइए,
2: तो
1: जब आप
2: का बचाव करते हुए आजकल घर में ही रहते हैं,
1: तो क्या बचाव करती हैं इस गर्मी के मौसम में, खुद को क्या उपाय करते हैं बचाने के लिए?
2: जैसे नींबू पानी पीना, नारियल पानी पीना, धूप से बचना,
1: बिल्कुल
2: घर करना छाता लेके, ऐसे ऐसे प्रक्रिया करते हैं हम लोग।
1: बहुत अच्छी बात है कि धूप से बचने के लिए आप इतने अच्छे उपाय करते हैं। बताइए राजेंद्र जी, आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
2: फिल्म परदेश का कोई सा भी गीत।
1: फिल्म परदेश का कोई भी गीत, चलिए।
2: फिल्म और कुछ दोस्त के नाम लेना चाहते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: हमारे प्रभाकर तिवारी रसूलपुर गुलराहक रहने वाले हैं, और प्रमोद हैं, अजीत हैं, दीपक हैं, ऐसे से बहुत से दोस्त हैं।
1: तो अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ सुनिए आपकी पसंद का फिल्म परदेश का ये गीत।

0: लिखा इसी गाने की फरमाइश हमें व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा आई है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से। ये जिन्होंने फरमाइश की है उनके नाम इस तरह हैं दुर्गेश, राधेश्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, दिव्यांश और सूरज। तो भाई
1: अगले पढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। हेलो
2: हेलो
1: हेलो नमस्ते
2: नमस्ते,
1: अपना परिचय दीजिए।
2: जी मैं प्रयागराज कालिंदीपुरम का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजकुमार है।
0: राजकुमार जी क्या करते हैं आप?
2: जी मैं रेलवे में था, ट्रेन मैनेजर।
0: ट्रेन मैनेजर, अच्छा ट्रेन मैनेजर थे आप, तो बताइए भाई आपकी ट्रेन किधर किधर को जाती थी?
2: मेरी ट्रेन तो इलाहाबाद से लेकर के दिल्ली तक जाती थी।
0: अच्छा,
2: और दिल्ली से मुगल सराय तक जाते थे।
0: जी तो आपने मतलब कई शहरों में आपने विजिट किया है, तो कौन सा शहर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया?
2: सबसे अच्छा शहर हमें जो है तो दिल्ली लगा।
0: जी
1: जी तो बताइए आज इस कार्यक्रम में आप तक कौन सा गीत पहुँचाया जाए?
2: जी आज इस कार्यक्रम में मुझे चाहिए प्रदेश फिल्म का गाना।
1: कौन सा?
2: आई लव माई इंडिया।
1: जी अच्छा, बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश आपने की है। और संगीता जी हमारे कुछ लिसनर्स ने हमारे पास मैसेज भी किया है, इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है, तो उनका नाम हम बता देते हैं।
0: उनका नाम है आरोह अखंड और सिल्वी चौधरी, मंजुला और आनंद ने, यशी ने और तुषी ने। तो इस गाने की फरमाइश आप सब लोगों ने की है, तो लीजिए सुनिए अपने रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये गाना।

0: निखत जी, देखिए इसी गाने की फरमाइश की थी, हमारे पास जो मैसेज आया था शालिनी, सोमी, विशाल और अविनाश ने।
1: हाँ, तो संगीता जी हमारे अगले कॉलर भी इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, तो उनसे बात करते हैं। हेलो
2: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते, अपना आपका नाम जानना चाहेंगे।
2: जी, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ मैं, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है प्रेम जी आपका, कैसे हैं?
2: जी मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
1: शुक्रिया, बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
2: जी अभी तो खेत में कुछ भी काम नहीं है हमारे, खेती किसानी का काम करता हूँ ना मैं, तो गेहूं लहसुन की फसल लगाई थी, तो उसको तो हम 2 महीने पहले मतलब काट के घर ले आए हैं।
1: हाँ,
2: और तो अभी बस खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया गया है, जब बरसात होगी तो फिर से सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी।
1: अच्छा, इसके अलावा और क्या कोई सब्जियां भी आप उगाते हैं अपने खेत में?
2: हाँ जी, सब्जियाँ थोड़ी बहुत लगाते हैं जो मतलब घर के लिए इस्तेमाल होते हैं, बेचने के लिए नहीं लगाते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो जी हाँ, काफी कुछ और किसान भी है ना, तो जिनके पास में थोड़ा बहुत पानी होता है ना, वो लोग बेचने के लिए भी मतलब लगाते हैं, ककड़ी हुआ, ये मेथी, भिंडी, पालक, गिलकी, तुरई, ऐसे करके जो सब्जियां मिलती है ना गर्मी में,
1: जी जी,
2: ये कुछ लोग भी लगाते हैं। मैंने लगा रखी है लेकिन अपने घर के लिए ही, बेचने के लिए नहीं लगाई है।
1: जी, तो कितने समय से आप खेती कर रहे हैं?
2: जी खेती तो मैं मतलब बचपन से, जब हमारे बुजुर्ग पिताजी थे उसके बाद में उनके जो पुश्तैनी खेती थी ना हमारी, तो बस उसी में हम मतलब काम के साथ में करते रहते थे और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी।
1: जी,
2: और अभी फिलहाल तो मैं अपने खुद खेत करते हैं, मतलब किसानों के साथ में, मतलब मजदूरों के साथ में खेती का काम करते
1: जी,
2: हैं।
1: तो रेडियो पर आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आकाशवाणी प्रयागराज से प्रसारित कार्यक्रमों में?
2: जी आकाशवाणी प्रयागराज से तो फिलहाल तो मैं जैसे अभी ये फोन इन प्रोग्राम चल रहा है ना लाइव, तो
1: जी जी
2: ये सुनता हूँ हर शुक्रवार को। इसके अलावा जो 12:30 बजे आता है ना हेलो फरमाइश, मधु जी पेश करते हैं।
1: जी जी
2: जी, वो कार्यक्रम भी सुनता हूँ और कभी कभी उसमें भी पार्टिसिपेट करता हूँ।
1: जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आपको बताएं कि आकाशवाणी प्रयागराज से सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, तो और भी कार्यक्रम आप सुना करें। बताइए आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
2: जी आप परदेश फिल्म का कोई सा भी गीत सुनवा दीजिएगा।
1: ठीक है, तो आप आकाशवाणी कार्यक्रमों के, आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रमों से ऐसे ही जुड़े रहिए, और फिलहाल सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
2: जी थैंक यू सो मच।

0: हेलो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं और देखिए अभी भी हमारे पास एक कॉल आ रही है, तो जानते हैं वो कॉलर कौन है। हेलो।
1: हेलो दीदी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
1: राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी बताइए क्या करते हैं आप।
1: खेती किसानी करते हैं दीदी।
0: खेती किसानी करते हैं, तो क्या आप इस समय कुछ बोया है अपने खेत में?
1: जी हाँ दीदी, मूंग बोए हैं और वहाँ के खेत खाली पड़े हैं, हकाई जुताई हो रही है खेतों में दीदी।
0: अच्छा, तो जुताई हो रही है, तो इसके बाद आप क्या बोएंगे?
1: सोयाबीन मक्का की फसल बोएंगे दीदी, बरसात जब चालू होगी जब।
2: जी ये बताइए, रेडियो पर कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: दीदी मुझे तो आज पहली बार आपका ये कार्यक्रम मैंने सुना, आपने जो दो फिल्में लाए हैं यही अभी इसी कार्यक्रम पहली बार सुना दीदी मैंने।
2: जी तो बताइए, आज इस कार्यक्रम में हमने दो फिल्मों के गीतों को शामिल किया है, फिल्म परदेस और अभिमान। तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे इन दो फिल्मों में से?
1: किस अभिमान में से सुनना है, अगर किशोर कुमार जी की आवाज में अगर हो कोई सा गीत तो सुना दीजिए, तो कोई सा भी गीत सुना दीजिए इसमें।
2: अच्छा अच्छा अभिमान फिल्म आपने देखी है,
1: अमिताभ बच्चन जी की है ना?
2: जी
0: जी जी
1: जी, जी तो आप इसमें से कोई सा गीत सुना देना दीदी।
2: ठीक है, मैं ये पूछ रही थी कि अभिमान फिल्म आपने देखा है?
1: जी नहीं देखी दीदी।
2: चलिए तो देखिएगा जरूर, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। फिलहाल आप तक हम पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। बहुत शुक्रिया।

0: including the state capital Shimla, as well as Chamba, Kangra, Kullu, Hamirpur and Lahaul Spiti, leading to a slight drop in temperatures across the state. According to the Meteorological Center Shimla, this change in weather is due to the activation of a western disturbance. The center has issued an orange alert for heavy rain accompanied by thunderstorms and strong winds at multiple locations in seven districts, Kullu, Shimla, Chamba, Una, Hamirpur, Mandi and Bilaspur over the next 48 hours. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
1: In Malaysia Masters, Indian shuttler Ashmita Chaliha's campaign came to an end after she lost to former European Games champion Lene Kjærfeldt of Denmark in the women's singles quarterfinals today. The Chaliha's exit India's challenge also concluded at the BWF Super 500 tournament. Chaliha, 71st in the badminton rankings, won the opening game but eventually went down against the 23rd ranked opponent 23-21, 18-21, 11-21. In 61 minutes. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad today. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans, Chennai Super Kings were all out for 140 in 13.4 overs. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in afternoon trade today. The Sensex climbed 535 points to 75,718, while the Nifty rose 154 points to 23,808 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi. Says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on 18th of next month. Supreme Court to hear plea next week against CBSE's three-language compulsory study for Class 9 students from July 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
3: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा

0: सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
4: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मिटी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल।

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय पहली जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़

0: करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
1: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लोकगीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
3: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
4: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
3: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
4: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
5: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत। लोकगीत कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मानसिंह और साथियों के स्वर में ये चैती।

इसी के साथ लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं। ये सभा समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। सायंकालीन सभा का आरंभ हम कर रहे हैं नन्हे मुन्नों के कार्यक्रम नन्ही दुनिया के साथ।

0: बच्चों जय हिंद।
1: तो क्या हाल है बच्चों आप सभी के? बताइए ना। तो अब तो भाई आप सभी के गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो खूब मस्ती खूब धमाल, पढ़ाई में से भी छुट्टी।
0: लेकिन दीदी छुट्टी नहीं करना है बच्चों को, पढ़ाई से छुट्टी भले ही कर दें। और दीदी जानती हैं बहुत से बच्चे पढ़ाई से बोर हो जाते हैं ना, तो गर्मी की लंबी छुट्टियों का वो इंतजार करते हैं कि उन्हें कुछ दिन पढ़ाई से ब्रेक मिले और इन छुट्टियों में वो खूब खेलें, क्योंकि स्कूल जब खुले होते हैं तो उन्हें खेलने का समय कम ही मिल पाता है ना दीदी?
1: जरूर खेलिए, लेकिन बच्चों पढ़ाई तो खेल खेल में भी छिपी होती है।
0: वो कैसे दीदी?
1: वो ऐसे दीदी कि कई बार हमें लगता है कि पढ़ाई बहुत कठिन है, किताब खोलते ही नींद आ जाती है,
0: हाँ।
1: है ना, और खेलने का मन जरूर करने लगता है लेकिन बच्चों का। तो बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पढ़ाई भी खेल जैसी मजेदार बन जाए तो कितना मजा आएगा?
0: सोचिए बच्चों, सोचिए सोचिए, अगर गणित सवालों की जगह एक मजेदार पहेली बन जाए, अगर हिंदी कहानी और अभिनय के साथ पढ़ाई जाए, अगर विज्ञान छोटे छोटे प्रयोगों से समझाया जाए, तो पढ़ाई कितनी आसान और मजेदार हो जाएगी।
1: बच्चों खेल केवल मनोरंजन नहीं होते, वो हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं। क्रिकेट हमें टीम वर्क सिखाता है, कैरम हमें ध्यान लगाना सिखाता है, शतरंज सोचने और समझदारी के फैसले लेना सिखाता है, और जब आप दोस्तों के साथ शब्दों का खेल खेलते हैं तो आपकी भाषा अच्छी होती है,
0: बिल्कुल,
1: और जब आप चित्र बनाते हैं तो आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, जब आप पहेलियां बुझाते हैं तो आपका दिमाग और तेज होता है,
0: बिल्कुल। और बच्चों जब आप कविताएं याद करो तो गाकर याद करो, टेबल्स तालियों के साथ खेलो, या फिर नक्शे और चित्रों से पढ़ना कितना मजेदार होता है। बच्चों याद रखिए, सीखना केवल किताबों तक सीमित नहीं, हम हर दिन हर खेल और हर अनुभव से कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं।
1: याद रखो बच्चों, जब पढ़ाई मजेदार बन जाती है ना, तब पढ़ाई से डर नहीं लगता,
0: बिल्कुल,
1: इसलिए पढ़ाई से डरिए मत, उसे अपना दोस्त बनाइए, खेलते खेलते सीखिए, इस तरह से सीख सकते हैं आप पढ़ना लिखना, और ये बहुत ही आसान हो जाता है बच्चों।
0: तो बच्चों आज से एक नया नियम बनाइए, हर दिन थोड़ा खेल, हर दिन थोड़ा ज्ञान, यानी खेल भी खेलिए, पढ़ाई भी कीजिए और हर दिन कुछ नया सीखिए, आगे भी बढ़िए, है ना दीदी?
1: बिल्कुल दीदी। और दीदी देखिए भाई, आगे तो बढ़ना ही हमारे बच्चे, क्योंकि अभी छोटे हैं तो वो पढ़ाई करके खेल करके आगे ही बढ़ेंगे दीदी। और दीदी देखिए, जब अभी हम
0: गर्मी
1: से आ रहे थे ना, तो कितनी गर्मी हो रही थी, और गर्मी का ये मौसम है उससे तो भाई हम सब बेहाल हो रहे हैं।
0: और मेरा तो मन करता है दीदी कि ऐसी जगह पर चले जाऊं जहां पर पेड़ ही पेड़ हो, हरियाली ही हरियाली हो, जहां सूरज चाचू

0: अपनी तपेश हम तक पहुंचा ही ना पाए, और हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, वो भी ऐसी ही जगह जाना चाहेंगे। सही कहा ना बच्चों मैंने?
1: तो चलिए दीदी, आज हम बच्चों को एक ऐसे अद्भुत जंगल की सैर पर ले चलते हैं जिसे धरती का सबसे बड़ा वर्षा वन कहा जाता है।
0: अच्छा, तो दीदी जल्दी से बताइए।
1: बच्चों कल्पना कीजिए, चारों तरफ घने पेड़ हों, ऊंची ऊंची बेल हों, बारिश की बूंदें उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे, और पेड़ों पर उछलते कूदते बंदर को देख ऐसा लगता है मानो कोई जादुई दुनिया में हो। अमेज़न वर्षा वन बिल्कुल ऐसा ही है। ये दक्षिण अमेरिका के कई देशों में फैला हुआ है, लेकिन इसका सबसे बड़ा भाग बच्चों ब्राज़ील में है। बच्चों ये जंगल इतना बड़ा है कि अगर आप इसे ऊपर से देखो तो आपको केवल हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी।
0: अच्छा।
1: बच्चों यहाँ इतनी बारिश होती है कि जंगल हमेशा हरा भरा रहता है, इसी कारण इसे वर्षा वन कहा जाता है। यहाँ की हवा बहुत ही ताजी और शुद्ध होती है। कहा जाता है कि ये जंगल धरती को स्वच्छ हवा देने में बहुत ही मदद करता है। बच्चों बच्चों जरा सोचिए, इस जंगल में कौन कौन रहते होंगे? यहाँ रहते हैं रंग बिरंगे तोते, उड़ते हैं पेड़ों पर आलसी स्लॉथ, लटकते रहते हैं तेज दौड़ने वाले जगुआर, जंगल में घूमते रहते हैं, और छोटी छोटी चमकीली मेंढक प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, और बहुत बड़े बड़े सांप भी रहते हैं बच्चों यहाँ पर। इतना ही नहीं बच्चों, अमेज़न नदी भी इसी जंगल से होकर बहती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। इस नदी में हजारों प्रकार की मछलियाँ भी होती हैं बच्चों। लेकिन बच्चों एक चिंता की बात भी है।
0: क्या?
1: वो ये कि लोग पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है, और इस वजह से जानवरों का घर कम होता जा रहा है। बच्चों अगर जंगल कम हो जाएंगे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता है, इसलिए हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए। तो बच्चों आज हम सब मिलकर एक वादा करें खुद से कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, पेड़ लगाएंगे और धरती को हरा भरा बनाएंगे। याद रखिए, जंगल हमारी धरती की मुस्कान है, और अगर जंगल खुश रहेंगे तो हमारी धरती खुश रहेगी।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जंगल केवल पेड़ नहीं होते हैं दीदी, ये जानवरों का घर, बारिश का साथी और हमारी धरती की शान होते हैं।
0: बिल्कुल। और दीदी देखिए, इतनी सारी बच्चों से हमने बातें की हैं, लेकिन अगर उन्हें एक गीत ना सुनाए तो फिर बच्चे नाराज हो जाएंगे, है ना?
1: तो चलिए सुनते हैं।
0: तो चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत हम उन्हें सुनवाते हैं और उनके साथ हम भी सुनते हैं।

नन्ही मुन्नी सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम नन्ही दुनिया। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है, इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहेंगे?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
3: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है, तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें

0: शहर थे, तो फिर कहा चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं। तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
1: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
0: डर।
1: हाँ, मन में डर जो होता है,
0: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
1: क्या बात है।
0: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं तो अगर कहीं बजाने, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाते रहे। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।

0: थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
1: वाह,
2: इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
0: डर।
2: हाँ, मन में डर जो होता है,
0: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
2: क्या बात है।
0: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाते रहे, तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।
2: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
0: बिल्कुल सहज रूप।
2: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
0: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था, 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह, तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th का ही 11th का ही,
2: जी जी,
0: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वाज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे, तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है, तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल वो भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
2: अच्छा।
0: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो, तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
2: जी।
0: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटिक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा, 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा, तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने, और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई, और पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
2: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
2: अच्छा।
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
2: जी।
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी।
2: हाँ।
0: तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा, हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से यानी जिस तरह कंठ से
2: जी
0: आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा
2: जी।
0: तो उस तरह, और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे।
2: वाह,
0: वाह। इस तरह शुरू हो गया।
2: और पंडित ओमकार नाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
2: जी जी।
0: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला, मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
2: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वायलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है
2: जी।
0: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया।
2: हाँ जी।

0: मैंने गुरु जी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी। पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है,
1: जी जी,
0: उसकी बू जो है, उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
1: जी, जी।
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा। एक आपका चूंकि संगीतकारों का, कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टी एन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सवाल ऐसा है,
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
1: अच्छा।
0: मेरे पेरेंट्स के, तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन और वो, तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रिस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं।
1: जी, जी।
0: तो इसीलिए उनका, वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वायलिन में, इंस्ट्रूमेंट में, जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: क्या बात। अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
1: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
0: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह, वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
1: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं अम्मा जी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर हुई।
0: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
1: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी,
0: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की। तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता था।
1: बिल्कुल सही कहा
0: लोगों को
1: जी।
0: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे। हाँ। तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
1: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके
0: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी। अब

0: कॉमन रैक्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को, दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गमक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
1: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
0: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है, फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की। जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है, तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया।
1: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दिए इस संबंध में।
1: जी बिल्कुल।
0: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
1: हाँ जी।
0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्यक्रम, टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे, तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को, तो वो पूछा इतने में कर लोगी, तो मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतरा। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था, मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर, तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, तो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे, और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी ये कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहां वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे, जब आए तो हाँ चल बजा, तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर, तो उसके बाद मैंने 45 मिनट राग देश बजाया, तो उन्होंने क्या किया उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे, तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुना है उनका एकलव्य का, तो लोग कहाँ कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया, तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं, तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी, पर मैं यही सोचती हूँ हमें ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है।

0: तो हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें
1: क्या
0: मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहां तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। युवा श्रोता सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ी सुकून भरी बातों का, थोड़ी मुस्कुराहटों का और थोड़ी दिल तक पहुंचने वाली बातचीत का। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी दोस्त साक्षी पांडे।
1: और मैं हूं अंजलि श्रीवास्तव। तो चाय या कॉफ़ी रेडी है ना? बालकनी का व्यू इंजॉय हो रहा है क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको एक ऐसी जर्नी पर ले जाने वाले हैं जो शायद आपने रोज़ देखी है लेकिन कभी महसूस नहीं की।
0: अंजलि,
1: हाँ,
0: कल ना मैंने घर जाते वक्त एक अजीब चीज़ देखी। वो ये है कि अब शामें पहले जैसी नहीं रही। पहले छत पर जाते ही गौरैया दिख जाती थी, पेड़ों पर इतनी आवाज़ें होती थी कि लगता था जैसे कोई मिनी कॉन्सर्ट चल रहा हो। अब कभी कभी पूरा आसमान बिल्कुल चुप सा लगता है।
1: सो ट्रू यार। और सिर्फ पक्षी ही नहीं, मुझे तो लगता है कि जब बचपन में ना बारिश शुरू होते ही कितनी ढेर सारी तरह की तितलियाँ दिखती थी हमको, और रात में जुगनू। अब बच्चे जुगनू शायद कार्टून्स में ज़्यादा देखते हैं और असल ज़िंदगी में कम।
0: और कमाल की बात यह है कि हम इतने बिजी हो गए हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों के गायब होने का एहसास भी धीरे धीरे कम हो गया है।
1: हम फोन्स को चार्ज करना नहीं भूलते लेकिन नेचर को रिचार्ज होने का मौका देना ही भूल जाते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर एक दिन सडनली दुनिया के सारे रंग फीके पड़ जाएं, फूल तो हों लेकिन खुशबू कम हो जाएं,
0: फल तो हो लेकिन स्वाद पहले जैसा ना लगे, बारिश तो हो लेकिन मिट्टी की वो सूंधी महक गायब हो जाए।

0: कुछ मिसिंग सा लगेगा ना।
1: और सबसे स्केरी बात यह है कि ये बदलाव अचानक नहीं आते, ये धीरे धीरे आते हैं, इतने धीरे कि हमें आदत पड़ जाती है इनकी। पहले एक पेड़ कटता है, फिर एक पक्षी कम दिखता है, फिर एक नदी थोड़ी और गंदी हो जाती है, और एक दिन हम रियलाइज़ करते हैं कि हमने कितना कुछ खो दिया है।
0: लेकिन आज की शाम सिर्फ चिंता की नहीं है, आज की शाम समझने की है, उस कनेक्शन को महसूस करने की है जो इंसान और प्रकृति के बीच हमेशा से हो रहा है।
1: क्योंकि आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं वो सिर्फ साइंस का चैप्टर नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें हर पेड़, हर नदी, हर जानवर और हर इंसान का अपना रोल है।
0: आज युवाणी में हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की।
1: साक्षी, जैव विविधता सुनते ही कई लोगों को लगता होगा कि शायद ये कोई बहुत ही टेक्निकल और साइंटिफिक टर्म होगा, लेकिन अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना तो इसका मतलब है हमारे आसपास मौजूद हर तरीके का जीवन।
0: छोटे छोटे कीड़ों से लेकर विशाल जंगलों तक, समुद्र की मछलियों से लेकर हमारी बालकनी में उगने वाली तुलसी के पौधे तक, सब मिलकर बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी। और शायद इसलिए नेचर इतना बैलेंस्ड लगता है क्योंकि यहाँ हर किसी का एक काम होता है।
1: एग्जैक्टली, मधुमक्खियाँ सिर्फ शहद नहीं बनाती, वो पॉलिनेशन भी करती हैं। पेड़ सिर्फ छाया नहीं देते, वो हवा भी साफ करते हैं। नदियाँ सिर्फ पानी नहीं लाती, पूरी सभ्यताओं को जीवन देती हैं। मतलब नेचर की दुनिया एक जॉइंट फ्रेमवर्क की तरह है दोस्तों, जहाँ कोई भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है।
0: इसके इतिहास की बात करें तो 1992 में केन्या के नैरोबी शहर में दुनिया के कई देशों ने मिलकर एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट तैयार किया था, जिसे कहा गया कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका मकसद था प्रकृति और जीव जंतुओं की सुरक्षा करना और लोगों को ये समझाना कि बायोडाइवर्सिटी सिर्फ जंगलों को समझना या सिर्फ जंगलों का इशू नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर का सवाल है।
1: और उसी की याद में हर साल 22 मई को ये दिवस मनाया जाता है। और आज इसकी इम्पोर्टेंस पहले से कई ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन जैसी चीज़ें अब सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं रहीं, हम इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस करने लगे हैं।
0: कई रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन के खतरे में हैं, और इसके पीछे रीजंस हैं जंगलों की कटाई, प्लास्टिक पोल्यूशन, रिवर्स का दूषित होना, ज़रूरत से ज़्यादा संसाधनों का इस्तेमाल और क्लाइमेट चेंज।
1: और सबसे बड़ी बात, नेचर हमें वार्निंग साइंस लगातार दे रही है, कभी असामान्य गर्मी, कभी अचानक फ्लड्स और कभी पानी की कमी। ये सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा है, ये नेचर का तरीका है हमें जगाने का।
0: लेकिन अच्छी बात ये है दोस्तों कि बदलाव अभी भी पॉसिबल है और उसमें यूथ का रोल बहुत बड़ा है। आज की जनरेशन ट्रेंड्स क्रिएट करती है, तो इमेजिन करो अगर इको फ्रेंडली लिविंग ट्रेंड्स बन जाए तो।
1: हाँ, अगर लोग कॉफ़ी फोटोज़ के साथ रीयूजबल कप्स भी फ्रॉन्ट करें, अगर बर्थडेज पर गिफ्ट्स की जगह पौधे दिए जाएं, और अगर रील्स सिर्फ डांस तक ही नहीं प्लांटेशन ड्राइव्स का भी वायरल हो जाए, तो इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है।
0: सो टेक दैट लिटिल स्टेप फ्रेंड्स, सिंगल यूज प्लास्टिक कम करिए, पानी वेस्ट मत करिए।
1: बर्ड्स और जानवरों के लिए पानी रखिए, हर बर्थडे पर अपने एक पेड़ लगाइए, और इस धरती को आने वाली जनरेशन्स के लिए थोड़ा और खूबसूरत बनाइए। तो ये था हमारा चर्चा का विषय। इसी के साथ दोस्तों, प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे, और अब हम आपके लिए लाए हैं ECC में आयोजित आशुभाषण प्रतियोगिता पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। आइए सुनते हैं।
0: प्रस्तुत है यूथ आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत दिनांक 21 मई 2026 को ECC कॉलेज में आयोजित आशुभाषण प्रतियोगिता पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।
1: यूथ आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत इविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज में आशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर AS मोजेज ने अपने संबोधन में आकाशवाणी के 9 दशकों से देश की आवाज़ को बने रहने पर प्रसन्नता व्यक्त की और इस तरह के आयोजनों की प्रशंसा की।
0: मंच पर श्री भूपेंद्र कुमार मिश्र, श्री अभय कांत तिवारी, कार्यक्रम अधिशासी आकाशवाणी प्रयागराज के अलावा ECC के हिंदी विभाग के डॉक्टर सुदीप तिर्की, ECC प्रभारी प्राचीन इतिहास विभाग के डॉक्टर जॉन कुमार, उर्दू विभाग की डॉक्टर कहकशा इरफान, अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन संस्कृत विभाग की डॉक्टर अंशु सिंह ने किया।
1: इस कार्यक्रम में अक्षिता मिश्रा, अंकित गुप्ता, मंगलेश यादव, शिवेश द्विवेदी, श्रद्धा शुक्ला, संजना प्रजापति, अदिति पांडे, श्रेया मिश्रा, ओम शुक्ल, आशीष कुमार पाल, शिवम दुबे,

0: आर्या राजपूत, हर्ष मिश्रा, पवन सोनी के अलावा अनेक छात्र एवं छात्राओं ने प्रतिभाग किया और प्रतियोगिता में स्नातक तृतीय वर्ष की छात्रा आर्या राजपूत ने प्रथम, प्रथम वर्ष के छात्र हर्ष मिश्रा ने द्वितीय एवं द्वितीय वर्ष के छात्र आशीष कुमार पाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
1: प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ए एस मोजेज ने कहा,
2: मंच पर आसीन आकाशवाणी से आए हुए हमारे सभी प्रिय भ्राताश्री लोग, कॉलेज के शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थियों, आज के शुभ दिन में हम आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। विशेषकर हम अपने आकाशवाणी से आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हैं कि आपने हमारे कॉलेज को चुना ताकि यहाँ पर इस तरीके का प्रोग्राम जो है किया जाए। हम आपके हृदय से आभारी, हमारे कॉलेज के जितने भी शिक्षकगण हैं हम आपके भी आभारी हैं कि आप समय समय पर कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रमों को कराते हैं, जिससे पढ़ाई के साथ साथ दूसरे फील्ड में भी उनकी रुचि आती है और उनका जीवन जो है और सफलता की ओर अग्रसर होता चला जाता है। हम आपके आभारी हैं। कोई भी कार्यक्रम बिना विद्यार्थियों के नहीं हो सकता और इस गर्मी के मौसम में भी आप यहाँ पर आए हैं ताकि इस आशु भाषण प्रतियोगिता को करा सकें। आप सबका हम स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी में और दूर तक पहुँच सकें। रेडियो का जो प्रसारण है आकाशवाणी के द्वारा बहुत पुराना है। हम लोग जब पढ़ते थे तब टेलीविज़न नहीं हुआ करता था, तब तो हम लोग रेडियो ही सुना करते थे और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम उसमें आया करते थे। एक सबसे अच्छा प्रोग्राम हमको लगता था बीना का गीतमाला, पता नहीं आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं। बहुत अच्छा ये हुआ करता था जिसमें अच्छे अच्छे पुराने गाने सुनने को मिला करते थे। हम भी रेडियो स्टेशन गोरखपुर से संबंध रखते थे, अब तो नहीं है बहुत दिनों से, और वहाँ पर हम कुछ दिनों तक अनाउंसर के पद पर भी काम कर चुके हैं। हम लोग वहाँ पर सुबह 6 बजे से वो शुरू होता था और हमारा काम ये होता था कि सबसे पहले पहुँचे और वहाँ पर अंदर जा कर के उसको हम लोग शुरू कराते थे। जैसे आपको याद होगा हम वहाँ पर जो अनाउंसमेंट करते थे वो कुछ इस तरीके से होता था, मीडियम वेव 303.03 यानी 909 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं, अब आज की हमारी पहली सभा शुरू होती है। ये इस तरीके से हम लोग शुरू कराते थे और उसके बाद कार्यक्रमों का एक लिस्ट हुआ करता था। रात जब 10 बजता था तो उस समय रेडियो स्टेशन ऑफ करने का टाइम हो जाता था, तब फिर से ही अनाउंसमेंट होता था मीडियम वेव 303.03 यानी 909 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने वाले हैं, अब हमारी सभा यही समाप्त होती है। शुभ रात्रि। तो रेडियो एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप लेटे रहिए और आराम से चीज़ों को सुनते रहिए और आपका मन जो है वो उसमें लगा रहेगा। तरह तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। तो हम आप सबको फिर से बधाई देते हैं और हम चाहते हैं कि रेडियो से जो हमारे सभी विद्यार्थी जुड़े रहें और हमारे बीच में हमारे अतिथिगण आए हुए हैं, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी आप इस कॉलेज को अपनी यादों में मिठाए रखें। धन्यवाद।
0: प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, प्रस्तुत हैं उसके कुछ अंश।
3: नमस्कार, मैं आर्या राजपूत आज इस आशु भाषण प्रतियोगिता में उपस्थित हूँ और मेरा विषय है नई पीढ़ी एवं भारतीय संस्कृति के मूल्य। भारत वह भूमि है जिसके उत्तर में हिमालय प्रहरी बनकर खड़ा है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखाड़ती है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी अपनी संस्कृति और सभ्यता का संदेश देती है और पश्चिम में अरब सागर अपनी लहरों से समृद्धि का संदेश देता है। भारत केवल देश नहीं है बल्कि यह विविधताओं में बसी एक जीवंत सभ्यता है। और भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से में पाए गए शैलचित्र और नर्मदा नदी घाटी के खुदाई से प्राप्त अवशेष हमें यह बताते हैं कि हमारा प्यारा भारत देश आदि मानवों की प्राचीनतम कर्मभूमि रही है। और सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष भी हमें यह बताते हैं कि उत्तर भारत के एक बड़े भाग में विश्व स्तरीय सभ्यता का विकास हो चुका था। वहीं भारतीय संस्कृति के मूल्य की बात करें तो भारतीय संस्कृति के मूल्य में निरंतरता, प्राचीनता, अनेकता में एकता एवं वसुधैव कुटुंबकम जैसी भावना समाहित है। साथ ही आज भी

0: में महाभारत एवं उपनिषद के ज्ञान भारतीयों के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म और आधारण का भी साथ बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे युवाओं की क्या भूमिका है? हमारे युवाओं के लिए यह आवश्यक है कि वह भारतीय संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखें, वह सोशल मीडिया का सही मायने में उपयोग करके भारतीय संस्कृति की भाषा को संरचना देते हुए, साथ ही परिवार के पारंपरिक मूल्यों को प्रोत्साहित करते हुए भारतीय संस्कृति की निरंतरता को बनाए रख सकता है। हमारे युवाओं के लिए यह आवश्यक है कि वह धर्म, जाति, लिंग से ऊपर उठकर अपने देश को विश्व स्तर पर पहुंचाए और भारत में अनेकता की एकता की विशेषता को दिखाए। और अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भारत की मिट्टी में केवल इतिहास नहीं बसता है, यहाँ हर नदी पर आस्था बहती है, हर पर्वत पर स्वाभिमान खड़ा है और हर दिल में वसुधैव कुटुंबकम की भावना धड़कती है। धन्यवाद।
1: नमस्कार, मैं हर्ष मिश्रा। आओ चलकर एक शुरुआत करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं। अभिव्यक्ति और देश की लड़ाइयाँ तो हमने बहुत लड़ ली, आइए कुछ देश के हित में आकाशवाणी के योगदान की बात करते हैं। नमस्कार, आज अपनी प्राण स्थली प्रयागराज से अपितु अल्प दूरी पर स्थित धान का कटोरा कहे जाने वाला छिंद्र मैं कुराव से यहाँ के कार्यक्रम की स्थली कर रहा हूँ। आज 140 करोड़ की आबादी है और 23 से अधिक भाषाओं में बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन देश की लड़ाइयाँ हो या अंग्रेजों के खिलाफ हुंकार हो, आज आकाशवाणी उसी के साथ खड़ी रही। आकाशवाणी सिर्फ एक वाणी नहीं है, एक चैनल नहीं है, अपितु उस घर से, उस व्यक्ति से नाता है जिस समय टेलीविजन भारत में नहीं था। आकाशवाणी सिर्फ एक बात नहीं, एक अभिव्यक्ति है। जो कहते हैं कि नए युग में बदल नहीं रहा है, आकाशवाणी जितना बदला उतना शायद कभी कोई नहीं किया होगा। उन्होंने ऐसी तकनीक बना दी कि जहां नेटवर्क ना पहुंचे तहाँ आकाशवाणी पहुंचता है। आप चाहे हरित क्रांति की बात हो, एम एस स्वामीनाथन ने कह दिया कि आधुनिक कृषि उपकरणों में मुद्रशील बीजों के द्वारा कृषि में आशातीत की वृद्धि हो, लेकिन इसे पहुंचाने का कार्य अगर किसी ने किया तो आकाशवाणी ने किया। मगर अब तक है बाकी नामो निशा तुम्हारा, कुछ बात यूं है कि हस्ती मिट्टी नहीं तुम्हारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। और अंत में विद्यालय की लिखी हुई मेरी स्वयं की कविता है, उसको प्रस्तुत करते हुए, जमुना जैसी पुण्य धराये, जमुना जैसी पुण्य धराये, आरुड़े जैसी रत्नों की खान, हे यू इंगे हर्ष तेरा, हे आकाशवाणी ये हर्ष तेरा, करता रहे सदा गुड़गा। नमस्कार।
2: पूरे कार्यक्रम का समन्वय आकाशवाणी प्रयागराज की कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती नेहा गुप्ता के निर्देशन में संपन्न हुआ।
3: कार्यक्रम के संयोजक एवं ECC के संस्कृत विभाग के डॉक्टर अरुणेय मिश्र ने कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन किया। इसी के साथ ये रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है।
2: दोस्तों, रिपोर्ट के उस पार हम बात कर रहे थे बायोडायवर्सिटी पर। जब हमने अभी बात करी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी की, तो उसका एक अहम हिस्सा है नागोया प्रोटोकॉल। 2010 में जापान के नागोया शहर में बायोडायवर्सिटी से जुड़ी एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी और इसी मीटिंग में ये प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था।
3: नागोया प्रोटोकॉल का मेन पर्पस है, अगर किसी देश या कम्युनिटी के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जैसे प्लांट्स, सीड्स, मेडिसिनल हर्ब्स या ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा कमाता है, तो उसका बेनिफिट फेयर तरीके से शेयर होना चाहिए। इसे कहते हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, यानी ABS, और यही है नागोया प्रोटोकॉल का हार्ट। दोस्तों, ये ऑफिशियली लागू हुआ था 2014 में और इसका उद्देश्य था बायोडायवर्सिटी की प्रोटेक्शन, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ और बेनिफिट्स का फेयर शेयरिंग।
2: और इंडिया भी इसका हिस्सा है क्योंकि हमारा देश बायोडायवर्सिटी के मामले में बहुत रिच है। हमारे यहाँ हिमालय से लेकर वेस्टर्न घाट्स तक इतनी रेयर स्पीशीज और मेडिसिनल प्लांट्स हैं कि पूरी दुनिया रिसर्च के लिए इंटरेस्टेड रहती है।
3: लेकिन दोस्तों, अवेयरनेस ही सबसे बड़ी शुरुआत है। जब हम लोकल कम्युनिटीज़, ट्राइबल नॉलेज और नेचर की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, तभी असली कंजर्वेशन शुरू होता है। क्योंकि बायोडायवर्सिटी सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है, ये कल्चर्स, ट्रेडिशंस और सेंचुरीज ओल्ड विजडम का हिस्सा भी है।
2: दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि इस साल 2026 की थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, यानी स्थानीय स्तर पर काम, वैश्विक असर। मतलब हम अगर अपने आसपास छोटे छोटे कदम उठाएं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।
3: सो फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट नेचर एंड कीप इट सेफ। तो आपको जैसा कि पता है कि हम प्रोग्राम के लगभग अपने एंड में एक Q&A सेशन भी लाते हैं, तो कल का हमारा जो क्वेश्चन था वो था,
2: भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? और इसका उत्तर है बैरन आइलैंड।
3: और आज का हमारा प्रश्न है, भीमबेटका मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? आप अपना जवाब दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी

yuvvaniald@gmail.com पर और हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर। दोस्तों आप सोचोगे कि आज हमने आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी है, मगर साक्षी हम अपने दोस्तों को बता दें कि चिंता मत करिए, क्योंकि टाटा बाय बाय करने से पहले हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। रिव्यू देना ना भूलें हमारी ईमेल आईडी
1: yuvvaniald@gmail.com पर
0: और हमारा फ़ोन नंबर 8004926250 पर। मिलेंगे आपसे फिर अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे यानी अंजलि श्रीवास्तव
1: और साक्षी पांडे को दीजिए इजाज़त।
0: नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला

0: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रम। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे बरमदीन यादव और साथियों से लोकगीत और डॉक्टर पीसी दुबे से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत, जैव विविधता प्रकृति की असली पूंजी। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर ललित कुमार की वार्ता होगी, संस्कृत व्याकरणस्य प्रयोजना नाम उपादेयता। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में महेश्वर दयाल से गीत और भजन सुनिएगा। 8:30 बजे अंग्रेजी कार्यक्रम के अंतर्गत के राशि कुमार की वार्ता होगी, आकाशवाणी 19 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। एक बार फिर से बता दें, 8:30 पर अंग्रेजी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे के राशि कुमार की वार्ता, आकाशवाणी 90 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। 9:30 पर कहकशा, 10:00 बजे कलीम उर्फी का लिखा नाटक सुनिएगा, दाढ़ी वाला हाथी। 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित उमा शंकर का सितार वादन। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल रात 10:00 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत शत्रुघ्न प्रसाद से की गई बातचीत सुनिएगा, तकनीकी सिंचाई से जल की बचत। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर आर के यादव की वार्ता होगी, दूषित जल से होने वाली बीमारियां। सुबह 7:00 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर और दिन में 12:15 पर भास्कर दास का बांसुरी वादन। 8:45 पर नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति सुंदरम तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:50 पर शीलाधर से गजल सुनिएगा और शाम 7:45 पर रमा सेन से गीत। 10:05 पर लोक माधुरी कार्यक्रम में कलाकार होंगे रश्मि टंडन और दुखी राम। 12:30 पर हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की। कल दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण बहनें सुनेंगी लोकगीत नीलम शर्मा से। 2:30 पर लोकगीत सुनिएगा मुकेश बेगाना, शशि बाला जैन और मुंशी लाल सोनकर और साथियों से। कल शाम 5:00 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे सूरज कुशवाहा। कल शाम 5:00 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे सूरज कुशवाहा और शाम 5:15 बजे सुनेंगे युवा श्रोता अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे मानिक चंद्र पटेल और साथियों से लोकगीत। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवीण शेखर की वार्ता होगी, डिजिटल दौर में रंगमंच के समक्ष चुनौतियां। 8:30 बजे सबरस। ये थी कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्यनेन सह चर्चितवान्। सः उक्तवान् यत् अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु निवेशप्रवाहः द्विगुणीकर्तुं भारत साइप्रस देशयोः लक्ष्यमस्ति। निर्वाचनायोगेन अग्रिमे मासे अष्टादशदिनाङ्के दशराज्याणां चतुर्विंशतिराज्यसभासनानां द्वितीये वर्षे आयोक्ष्यमाणस्य निर्वाचनस्य घोषणामकरोत्। सर्वोच्चन्यायालयेन जुलाई मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् नवमी कक्षायाः छात्राणां कृते CBSE इत्यस्य त्रिभाषीयाध्ययनस्य अनिवार्यतायाः विरुद्धं याचिकां विचारं समारब्धम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः उक्तवान् यत् सम्पूर्णे सीमाक्षेत्रेषु अभेद्यतरं कर्तुं सर्वकारः स्मार्ट सीमा परियोजनायाः आरम्भं करिष्यति। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलम् अद्य सायंकाले हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलम सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत साइप्रस देशयोः मध्ये अद्य नवदिल्ल्यां आतंकवादावरोधस्य विषये नवान्वेषण तंत्रज्ञानयोः उच्चशिक्षायाम् अनुसंधाने सांस्कृतिक सहयोगे च संयुक्त कार्यसमूहस्य स्थापने इत्यादीनां विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अनेकेषां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानम् अभवत्। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्यनेन सह विविधेषु क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिक सहकारं सुदृढीकर्तुं चर्चां कृतवान्। बहुपाक्षिक मञ्चेषु सहकारं सह क्षेत्रीय वैश्विक महत्वस्य विषयेषु अपि तौ विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना भारत साइप्रस देशयोः मैत्री न केवलं दृढः अपि तु भविष्याभिमुखी अपि अस्ति इति उक्तम्। सः अवदत् यत् गत दशके साइप्रस देशात् भारते निवेशः प्रायः द्विगुणितः अभवत्। तेनोदीरितं यत् भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समन्वये अनेकाः नूतनाः सम्भावनाः उद्भूताः सन्ति। उभयोः देशयोः मध्ये विश्वासः च वर्धितः अस्ति। अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु पुनः निवेशप्रवाहं द्विगुणीकर्तुं भारत साइप्रस देशयोः लक्ष्यम् अस्ति इति श्रीमोदी अवदत्।
1: भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं।
0: प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् उपवेशनावधौ तौ वैश्विक विषयेषु अपि चर्चितवन्तौ।
1: भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषः अवदत् यत् उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये द्वैपाक्षिक सम्बन्धाः यूरोपीय संघ भारत सम्बन्धाश्च गतवर्षे अत्यन्तं प्रगतिम् अकुर्वन्। प्रातःकाले विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले डॉ जयशंकरः अवदत् यत् सः द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् सुदृढं कर्तुं भारत यूरोपीय सहयोगाय च सकारात्मक भावानां मार्गदर्शनस्य च प्रशंसाम् अकरोत्। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायामस्ति। निर्वाचनायोगेन अद्य दश राज्येषु चतुर्विंशति राज्यसभा आसनानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा कृता। पूर्वः प्रधानमन्त्री HD देवगौड़ा, केन्द्रीय मन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीत सिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। येषां कार्यकालः अग्रिमे मासे समाप्तः भविष्यति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये 4 आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये 3 आसनानि सन्ति। झारखण्डे 2 आसने स्तः।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पंचो
1: राम राम।
0: कहा भैया, बोला कहा हाल चाल बाटे?
1: बढ़िया भैया। और अपन बतावा, खेती किसानी सब बढ़िया चलत बाटे?
0: ठीक बाटे भैया। देखा खेती किसानी भी ठीक बाटे। मुला भैया देखा, बहुत खास दिन बाटे।
1: बिल्कुल भैया, देखा आज अटे 22 मई, जौन की आज पूरे विश्व में जैव विविधता दिवस के रूप में मनावा जात है। तो भैया देखा, ये तो बहुत विशेष बात बटे कि हम लोग जौने धरती पे रही थी, जौने वातावरण में ही हमारे आसपास इतनी विविधता बटे, हर तरह के जीव जंतु पेड़ पौधा हैं, तो ए लिए आज के दिन एका मनावा जाते कि हम लोग अपने विविधता के बारे में समझी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और ओका संरक्षित रखी, ओका बढ़ावा दे। तो ओकरे लिए
0: एका भैया जो है पहली बार जो है वर्ष 2000 में जो है 22 मई के दिन मनावा करा, तब से हर साल मनावा जाता भैया।
1: बिल्कुल भैया,
0: एका भैया मनावे के मुख्य उद्देश्य बाटे जो अपन मानव गतिविधियों के कारण जो है तेजी से विलुप्त हो रही प्रजातियां बाटे, उनका लोगों के प्रति जागरूक करे बाटे, और जो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जीव जंतु बाटे हैं।
1: बिल्कुल भैया, देखा कोनो भी दिवस मनावे के तो यह उद्देश्य होते कि हम ओकरे बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले।
0: बिल्कुल।
1: और अगर उनमें कोनो तरह के समस्या आवती है तो ओकरे समाधान के प्रति जो ना है विचार करी और उन पे कार्य करी। तो जैव विविधता आज जो ना है पूरे दुनिया में जो ना है ए पे प्रयास होता है कि हम ये विविधता बनी रहा है, इसलिए कि संतुलन बना रही, तभी जो ना है जीवन जो ना हम लोग के सुरक्षित रही, संरक्षित रही।
0: जैसे भैया जो पेड़ पौधे विलुप्त हो जात बाटे ना, उनका बचावा जाए, जो जीव जंतु विलुप्त हो जात बाटे भैया है, उनका संरक्षित किया जाए, उनका बचावा जाए।
1: बिल्कुल भैया,
0: ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उनका देख सके भैया।
1: बिल्कुल भैया, देखा आज जो ना है अपने पंचायती में भी जो ना है ऐसे जो ना है एक विशेष बातचीत भी जो ना है अपने पंच भैया हरिन के सुनवावा जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जे कह विषय बटे जैव विविधता प्रकृति की असली पूंजी, जे पे देखा डॉक्टर पीसी दुबे से जो ना है अभिनव प्रग पांडे भैया बातचीत करे हैं, यह अपने आज पंच भैया हरिन सुनी, तो ताकि उनका ये जैव विविधता के बारे में का महत्ता बटे एका और अच्छे से समझ पाए। और एक साथ भैया देखा आज जो ना है अपने पंचायती में लोकगीत भी रही।
0: हाँ भैया,
1: बरमदीन यादव और साथी के तो हम कहीं देखा जो है जो पंचायती की परंपरा है कि जब ढोल नगाड़ा बजा थे तो के जो है मन जो है
0: बिल्कुल
1: झूमा थे, लेकिन देखा मौसम गर्मी के है ऐसे जो है ऊर्जा कम हो जाते हैं। और काम धाम खेती किसानी के बाद से तो जब तनी गीत संगीत आवा थे तो अपने अंदर से जो है बिल्कुल ऊर्जा बना थे कि जो है काम में मन लगा थे। तो अब पहले पंच भैया रन भी इंतजार करते ही कि आज देखा पंचायती में कौन लोग गीत सुनावा जाए। तो भैया देखा बरमदीन यादव साथी के गावा विकास गीत है हमहू किसानी पिया, आवाज हमहू तू सुना जाए और पंच भैया भी हरन सुनाए
0: सुनवा दे भैया।

0: हाँ भैया, देखा
1: लोकगीत
0: बरम दीन
1: रहा
0: यादव और साथी के कितना बढ़िया विकास गीत
1: हाँ भैया,
0: रहा।
1: पसीनवा बहु है
0: हाँ एकदम झुमाए दिन भैया, पसीना ते समय देखा चुअत है भैया,
1: बिल्कुल।
0: ना कोनो काम धाम करा तो बैठे बैठे इतना जो है
1: हाँ
0: पसीना चुअत बा, तो खेती किसानी में तो वैसे जो
1: हाँ
0: है ना
1: भैया
0: भैया। देखा आजकल खेती किसानी में इतना नया नया तकनीक आई गया बटे कि वैज्ञानिक भैया लोग इतना रिसर्च कर के इतना खोजबीन करके हर दिन कुछ ना कुछ जो है खेती किसानी में जुड़त आए,
1: हाँ
0: ताकि जो है हमारे किसान भैया अरेन कम मेहनत में ज़्यादा
1: हाँ
0: पैदावार करें,
1: हाँ
0: कम
1: हाँ
0: लागत में
1: ज़्यादा
0: ज़्यादा
1: मुनाफा हुआ है।
0: मुनाफा हो, और कम खेती बाड़ी की ज़मीन अब देखा कम होती है तो उहू में क्षेत्रफल कम होता है,
1: हाँ
0: जनसंख्या
1: मतलब
0: बढ़ती है,
1: कम खेती
0: तो
1: में
0: वही
1: ज़्यादा
0: हिसाब
1: पैदावार
0: से
1: हो गया
0: भी
1: मतलब।
0: बहुत
1: हाँ
0: सारा विचार करके जो है किसान भैया लोग तमाम तकनीक लियावत रहती। उही
1: बिल्कुल
0: में से भैया एक तकनीक यह है नैनो यूरिया के
1: हाँ भैया, कि भैया
0: जौन,
1: ये लिक्विड यूरिया बांटे भैया है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: भैया।
1: अब भैया ये एक बोतल 500 लीटर की बोतल जो है एक का जो है 100 लीटर पानी में घोल के फसल में छिड़काव कर दिया भैया जो है, ये आपके एक बोरी यूरिया के बराबर बांटे भैया।
0: बिल्कुल भैया, देखा एक सबसे बड़ी बात का है फायदे वाली बात की, एक लागत जो ना है
1: बहुत
0: कमी है, एक बोरी यूरिया की जगह जो ना है अगर एक बोतल नैनो यूरिया यूज कर लिया तो उसमें काम हो जाते,
1: और ज़्यादा
0: और
1: से ज़्यादा भैया का दाम भी कम बांटे,
0: दाम भी कम
1: दो सौ
0: है
1: पच्चीस से 240 के बीच बांटे
0: भैया,
1: भैया।
0: देखा वो तो बाजार के जो भी भाव हो। दूसरी चीज़ का है भैया ना, एक प्रयोग करे से जो ना प्रदूषण भी कम होते,
1: बिल्कुल
0: जो
1: हवा।
0: यूरिया बह के नदी नाला में चला जाते तो ओसे का होते कि जो ना माटी के संरचना भी गड़बड़ होते, पानी
1: बिल्कुल
0: भी जो प्रदूषित होते, जो जीव जंतु हैं वो प्रभावित होते।
1: खैर भैया, ये पानी द्वारा मिला के डाला जाता है, ये धरती में सोख लेते भैया ये, और
0: बिल्कुल भैया,
1: सीधा
0: और
1: जड़ तक पहुंच जाते हैं,
0: सबसे बड़ी बात है कि ढोवा लादे के जो भी जो समस्या है वो खत्म हो जाती
1: खत्म।
0: है भैया। नहीं देखा आप कहाँ कहाँ से खाद लाद के लिया होता है, चर चर बोरी, दस दस बोरी।

0: है ना?
1: माटी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहती थी।
0: बिल्कुल भैया। और एक जो नहा जब वैज्ञानिक भैया लोग बनाए ने पे जो नहा प्रयोग करें प्रयोगशाला में, तो यह पाए कि इसमें प्रयोग करे से का उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है
1: हाँ
0: और माटी के जो नहा संरचना भी जो नहा सुधरी रहा थे, इसी
1: बिल्कुल
0: जो नहा माटी में कोनो भी केमिकल प्रभाव
1: नहीं
0: ना ही पड़ा थे।
1: नहीं
0: तो ए लिए भैया देखा अपने किसान भैया रिन से कहा कि
1: ज्यादा से
0: तकनीक के
1: ज्यादा जो
0: जो
1: है
0: हाँ
1: नैनो यूरिया के प्रयोग करें।
0: बिल्कुल भैया जो तकनीक अपने किसान भैया रिन के लिए उपलब्ध होती है बाजार में एकरे बारे में जागरूक रहें और दिन प्रतिदिन खेती किसानी में वैज्ञानिक विधि के जो नहा आवत है
1: हाँ
0: ओके और जितना अच्छे से अनुभव लेके ओके
1: बिल्कुल
0: अपने खेती किसानी में जोड़ाई। तो
1: बिल्कुल
0: देखा भैया भाई आज हम लोग बात करते रहे कि आज
1: जैव
0: जैव विविधता
1: विविधता।
0: दिवस है, तो वही पे एक बातचीत सुनवावे के भी अपने पंच भैया रन से कहे रहे कि भैया देखा आज जो विषय है जैव विविधता प्रकृति की असली पूंजी, ये पे देखा डॉक्टर पीसी
1: दुबे
0: दुबे
1: से
0: से भैया अभिनव प्रग पांडे भैया का बातचीत करे हैं, आप अपने पंच भैया रन को सुनवाई दी जाए तो फिर आगे बातचीत की जाए।
1: सुनवा दे भैया।
2: श्रोताओं नमस्कार, पंचों राम राम। एक बहुत मशहूर शायर हुए इब्ने इंशा, उनका एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाऊं, मगर जंगल तेरे, बस्ती तेरी, नदियां तेरी, सहरा तेरा। कितनी अच्छी सोच है कि सारी चीजें तुम्हारी हैं, प्रकृति की हैं। लेकिन अगर हम आज अपनी बात करें, पृथ्वी के सबसे समझदार जानवर की बात करें, मानव की बात करें, इंसान की बात करें, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या अभी भी हम प्रकृति पर उसकी चीजों का उतना ही अधिकार मानते हैं क्या? क्या वास्तव में जो प्रकृति से हमको मिला है या जितना हमको उससे लेना चाहिए हम उतना ही ले रहे हैं क्या? क्या हम दोहन करते करते प्रकृति का उस बिंदु तक नहीं पहुंच गए हैं कि जिसके बाद हमें विचार करना चाहिए कि शायद अब रुक जाना चाहिए? क्यों रुक जाना चाहिए? लगभग एक महीने पहले मैंने विश्व गौरैया दिवस पर एक साक्षात्कार किया था कि गौरैया अब हमको नहीं दिखती। केवल गौरैया नहीं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं। जी हाँ, कीड़े। आप सोच रहे होंगे कि कीड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। साहब, कीड़ों का बहुत बड़ा महत्व है। बचपन में हमको ऐसे कुछ कीड़े दिखा करते थे जो आज बहुत मुश्किल से दिखते हैं, जैसे गुबरैले हो गए, जुगनू हो गए। शायद हमारी आगे की पीढ़ियां इन्हें ना देख पाएं। इन सारी चीज़ों की हम बात क्यों कर रहे हैं? इन सारी चीज़ों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब समय आ गया है कि हमको प्रकृति को वो देना पड़ेगा जो हमने उससे लिया है। नहीं तो शायद इसकी कीमत हमें किस रूप में भुगतनी पड़ेगी ये हम नहीं कह सकते। ये जो शेर मैंने सुनाया, इसका असली अर्थ वही जान सकता है जो प्रकृति के बीच में रहा हो, जिसने प्रकृति को जिया हो, जो पेड़ पौधों को समझ सकता हो, जानवरों को देख करके उस प्रकृति की रचना का आनंद ले सकता हो, और जिसने मीठे झरनों से पानी कभी तोड़ करके पिया हो। आज 22 मई है, आज विश्व जैव विविधता दिवस है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या है जैव विविधता, हमारे लिए क्यों जरूरी है? संयुक्त राष्ट्र विश्व जैव विविधता दिवस मनाता है। इस बार की जो इसकी थीम है, जो इसका एक मूल बिंदु है, वो है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। यानी कि हम अपने स्तर पर, अपनी जगह पर क्या कार्य करें जिसका वैश्विक भूमंडलीकृत प्रभाव हो। और इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए इतनी भूमिका के बाद मैं बताऊं कि जो व्यक्ति इस वक्त हमारे बीच में है वो सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति हैं इस पर बात करने के लिए, क्योंकि इनका बहुत बहुत ही लंबा विशद अनुभव रहा है जंगलों के बीच में। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर पीसी दुबे जी हैं, जो कि भारतीय वन सेवा के 1986 के बैच के अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश कैडर के। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमारे जीवन में इतनी बड़ी जगह क्यों रखती हैं। डॉक्टर पीसी दुबे, आपका आकाशवाणी प्रयागराज में बहुत बहुत स्वागत
1: जी,
2: है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जैव विविधता क्या है, हमारे लिए क्यों इतनी ज़रूरी है, हमें इसके बारे में क्यों इतना चिंतित होना चाहिए, क्या हमको फ़र्क क्यों पड़ना चाहिए कि कोई कीड़ा हमारे बीच में गायब हो गया, कोई पक्षी हमारे बीच में से गायब हो गया, कुछ पौधे नहीं दिखते, नदियाँ पतली हो गई, कि हमें क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए?
1: जैव विविधता शब्द यदि हम भारतीय दर्शन में जाके देखें तो हमको लगता है हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि जैव विविधता का अर्थ क्या है और क्यों उपयोगी है, क्यों इतना सामयिक आज ये विषय है। तो हम बृहदारण्यक उपनिषद में देखें, गरुड़ पुराण में देखें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः,
2: जी
1: सर्वे भवन्तु, सर्वे में कभी कहीं ये नहीं बोला गया है मनुष्य केवल सुखी हो या कोई एक प्राणी सुखी हो,

0: सबके सुखी होने की कामना की गई है। उसमें वृक्ष भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, नदी नाले भी हैं, उनको जीवंत माना गया है, गंगा को माँ माना गया है, पृथ्वी को माँ माना गया है, पूरे जगत को सबके सुखी होने की कामना की गई है। दूसरा, यदि आप अथर्ववेद में जाकर देखेंगे पृथ्वी सूक्त, हमको लगता है इससे अच्छा जैव विविधता शब्द का विवेचना कहीं नहीं मिलेगा जो पृथ्वी सूक्त में है।
1: बिल्कुल, आपने हमारे उपनिषदों की बात की, वेदों की बात की, और उसमें बहुत एक अच्छा उदाहरण शांति सूक्त का है, जो शांति पाठ होता है कि पृथ्वी शांति, रापः शांति, वनस्पतयः शांति, औषधयः शांति, अंतरिक्ष शांति, शांति रैव शांति। हम सबकी शांति की कामना करते हैं, लेकिन अगर हम आज की विकास की इस दौड़ की बात करें, कई बार हम ये देखते हैं कि हमने अपने विकास के लिए कई बार हम भूल गए कि जो एक पतली सी लाइन थी हमारे और प्रकृति के बीच की, जिसको हमको नहीं लांघना था, हम बहुत सारी जगहों पर उसको लांघ गए, और उसका परिणाम हमको ये देखने को मिल रहा है कि कहीं बहुत सारी जगहों पर तापमान अचानक से घट बढ़ रहा है, जहां कभी बाढ़ नहीं आती थी वहां बाढ़ आ रही है। हम जानवरों की जगहों पर घुस करके घर बना रहे हैं, और फिर वही जानवर जब अपनी जगह लेने आते हैं तो हम कहते हैं कि उन्होंने आक्रमण कर दिया या वो आदमखोर हो गए। आपको क्या लगता है, क्या सबसे समझदार जानवर होने के नाते, सबसे समझदार पृथ्वी का एक जीव होने के नाते, सबसे ज़्यादा अधिकार हमारा है पृथ्वी पर?
0: हमको लगता है कि ईश्वर ने जिसको जो भी समझदारी दी है, मानव एक श्रेष्ठ शरीर उसको दिया गया है, श्रेष्ठ मस्तिष्क उसको दिया गया है, तो जिसको जितनी श्रेष्ठता और सामर्थ्यवान प्रकृति बनाया है उसका दायित्व भी उतना ही ज़्यादा होता है। इस दायित्व बोध से हम हट गए हैं, हम अपने सामर्थ्य का उपयोग अधिक से अधिक दोहन विदोहन में और खुद के सुख संपत्ति के लिए, खुद के सामर्थ्य को बढ़ाने में उपयोग करने लगे, इसलिए हम प्रकृति की सीमाओं को उल्लंघन करने लगे। परंतु ग्रामीण परिवेश में ऐसा अभी देखने को कम मिलता है, शुरुआत जरूर है परंतु कम है। आप जैसे जैसे शहर की तरफ जाएंगे, बड़े शहरों में जाएंगे, तो लोग खुद को संपन्न करने में लगे हुए हैं, और इसी का कारण है कि हमने प्राकृतिक संसाधनों का स्वतः के संपत्ति अर्जन के लिए, स्वतः के सुख के लिए उपयोग करने लगे, और दूसरे को हम इससे वंचित करने लगे। तो ये जो भोग की संस्कृति है, और कुछ छोटे से एक समूह के लोगों ने इसको विकसित किया, और उसको देख करके बाकी लोग भी उत्साहित होते हैं कि हम भी ऐसा क्यों ना करें, सुखमय जीवन व्यतीत करें, और अधिक से अधिक विदोहन करने की प्रवृत्तियां प्रकृति की तरफ बढ़ने लगी। ये इसका एक मूल कारण है, सोच, मानसिकता में बदलाव। मानसिकता में यदि हम बदलाव नहीं कहेंगे, और जो ईश्वर ने हमको इतना समझ दिया है, यदि इस जिम्मेदारी को हम नहीं समझेंगे, तो निश्चित रूप से हम पतन की तरफ जाएंगे, और इसका दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ेगा जो इस पतन के कारण नहीं है। जो लोग गरीब हैं, समाज में पिछड़े हैं, आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उनको ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ेगी, बशर्ते कि समृद्ध लोगों को।
1: जब सुनामी आई बहुत सारी जाने गईं, उस समय हमने प्रकृति का रौद्रतम रूप देखा, लेकिन उसमें भी बाद में ये पता चला कि जो जंगली जनजातियां होती हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात का पूर्वाभास हो गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है। उन्होंने या तो जानवरों के भावों में, स्वभाव में कुछ परिवर्तन या क्रियाकलाप में परिवर्तन देख करके ऐसा सोचा। हमारे और एक जंगली जनजाति, जो आदिवासी जनजाति है, उसके बीच में ऐसा क्या फर्क है कि वो प्रकृति से इस हद तक जुड़े हैं कि उनको ये जो विकास है हमारा, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको अपना जंगल चाहिए, उनको अपनी ज़मीन चाहिए, वो उसी में खुश हैं, और वो इस कदर समझते हैं कि भविष्य तक को जो इतनी बड़ी आपदाएं आने वाली हैं वो उसको देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं।
0: बहुत ही उपयुक्त विषय आपने रखा है, जनजाति समाज और जंगलों का संरक्षण।
1: जी,
0: यदि हम बहुत संक्षिप्त में बोले तो जो शहरी संस्कृति है, उपभोगवादी है
1: जी,
0: उसको आप देखेंगे कि वो संज्ञात्मक है, नाउन है, हर चीज का नाम के रूप में हम उपयोग करते हैं। और जो जनजाति समुदाय है वहां पर ये क्रियात्मक है, कार्य के रूप में है। हम उदाहरण के रूप में आपको बताएंगे
1: जी,
0: जैसे भील जनजाति समुदाय है, गोण है, कोरकू है, सहरियाज है
1: जी,
0: सबके अपने अपने गोत्र होते हैं।
1: अच्छा,
0: भील जनजाति के 35 गोत्र है, और हर गोत्र के अपने एक एक वृक्ष है जिसका वो सम्मान करते हैं।

0: हैं, पूजा अच्छा। करते हैं, संरक्षित करते
1: कुल
0: हैं
1: कुल वृक्ष की तरह से।
0: तो देखिए ये क्रियात्मक रूप में है
1: जी।
0: हमारे लिए एक शब्द है जैव विविधता, संज्ञा के रूप में है
1: जी,
0: परंतु वहां पर क्रिया के रूप में है
1: जी जी जी।
0: ये बहुत बड़ा अंतर है। कुछ वृक्षों को उन्होंने देवताओं का रूप दिया है, हमारे यहाँ भी तुलसी, सब ग्रामीण जन जानते हैं, नीम, पीपल, बरगद, उनको एक क्रिया के रूप में, देवता के रूप में माना गया है, क्योंकि वो पारिस्थितिकी सेवाएं, इतनी सेवाएं देते हैं मानव को, पृथ्वी को, कि यदि वो नहीं रहेगा तो तंत्र बिगड़ जाएगा। यदि वट वृक्ष नहीं होगा, पीपल नहीं होगा, गुलर नहीं होगा, ये तो पक्षियों का सबसे बड़ा आश्रय है, उनका रेस्टोरेंट है, जहाँ आते हैं, रहते हैं, घोंसला बनाते हैं, खाना खाते हैं। आपने वट वृक्ष हटा दिया, आपने गाँव का डॉक्टर नीम है उसको आपने हटा दिया,
1: किसलिए? ये सब हटा करके हम एक कृत्रिम घोंसला बना तो रहे हैं ना उनके लिए धूप में।
0: बिल्कुल, इसीलिए वो पक्षी गायब हो गए, उनका आसरा तो वही है, एक पेड़, वो मकान तो नहीं बना सकते। उनके जेनेटिक्स में, उनके जीन में है कि हमको किस प्रकार का रहवास चाहिए। आप एक ग्रामीण व्यक्ति को यदि यहाँ से ले जाए आप
1: जी,
0: और यूएस में या यूरोप में कहीं उसको अच्छा सा घर दे दे, रहने लगे, वो दो चार दिन तो अच्छा लगेगा, उसके बाद उसको अपनी गांव की धरती, अपना कुआं, पक्षी, अपने आस पड़ोस के लोग सब याद आएंगे उसको, वो जैव विविधता के रूप में उसको याद करेगा। तो ये जो संस्कृति का बदलाव है, इसलिए आप देखिए शहर में बड़े बड़े जो समृद्ध लोग हैं, सब कुछ तो है परंतु इनकी इच्छाएं, डिजायर कभी कम नहीं होती है, इसलिए अधिक से अधिक उपभोग, बड़ी एक किसी के पास खदान हो गई तो और खदान हो जाए, और हो जाए, और ज्यादा गहरे में जा करके हम निकाल ले, ये प्रवृत्ति बढ़ने गई, परंतु कभी इच्छा पूर्ति नहीं होती।
1: बिल्कुल,
0: गांव में देखिए आप।
1: ये बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने कि इच्छा की पूर्ति के लिए संसाधन कभी भी पर्याप्त तो नहीं हो, जैसा गांधी जी ने कहा था कि यहाँ पर पृथ्वी की हर व्यक्ति के जरूरत के लिए प्रकृति के पास सब है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का लालच पूरा करने के लिए प्रकृति भी कम पड़ जाएगी, पूरे संसाधन कम पड़ जाएंगे। आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है वन सेवा में रहते हुए और एमपी कैडर, जहां पर वन क्षेत्र अभी भी अच्छी खासी मात्रा में है, आपने क्या कुछ ऐसा महसूस किया जैव विविधता को लेकर के, खासकर अगर हम वहाँ के आदिवासी समूहों की बात करें? मैं फिर से इस प्रश्न पर आऊँगा, किस प्रकार से वो जुड़े हुए हैं? जैसा कि हमने कई बार पढ़ा है कि वहाँ की एक भील जनजाति होती है उसके आसपास की, वो कुछ विशेष उनके चित्रकारी होती है, कुछ विशेष परंपराएँ होती हैं जो पूरी तरह से आसपास के जंगलों और प्रकृति पर निर्भर होती है, उसी से निर्धारित होती है और उसी से जुड़ी होती है।
0: बहुत ही उपयुक्त विषय है कि कला के माध्यम से जैव विविधता को समझना और कला के माध्यम से प्रकृति को समझना, जंगल को समझना और उसका अभिन्न अंग मानना। जब भी किसी परिवार में शादी विवाह होता है तो घर के बाहर बड़ी सी चित्रकला बनाते हैं, पिठौरा कला बोलते हैं उसको, कहीं मडाना बोलते हैं, अलग अलग नामों से प्रचलित है अलग जनजातियों में। वो एक मान्यता मानते हैं, जब भी मेरे घर में शुभ काम होगा, बच्चों का विवाह होगा, तो हम पिठौरा कला बनवाएंगे। तो पिठौरा कला बनवाने के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं ऐसे बड़वा, वो घर के बाहर आके घर वालों से बनवाते हैं। बनाने के समय पूरी वो प्रकृति की, किस प्रकार से प्रकृति बनी, कौन कौन से उसके अंग हैं और मानव कहाँ पर है, चित्रकला के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और बड़ी सी एक चित्रकला है और आप देखेंगे कि केंद्र में मनुष्य को रखा है, परंतु बहुत छोटे रूप में, चारों तरफ जीव जगत है परंतु केंद्र में स्थान दिया है मनुष्य को, अर्थात आप केंद्र बिंदु हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, परंतु आप बड़े छोटे से भी हैं, आप सबके मालिक नहीं है, इसलिए छोटा केंद्र में दिखाया गया है। ये कला के माध्यम से जैव विविधता को समझना, ऐसे आपको चूंकि विषय आपने उठाया है, जो इंदल त्योहार होता है या देवासा त्योहार होता है जनजातियों में, यह कर्मा नाच होता है, इंदल में 10-12 गांव के लोग, फिर एक मुखिया, पूरे गांव के लोग एक जगह इकट्ठे होंगे और रात भर नृत्य होगा और पूरी अपनी संस्कृति का बयान करेंगे, वृक्षों कौन कौन से वृक्ष हैं, वो वृक्ष क्या करते हैं, कौन कौन से देवता है, किसको कैसे बचाना चाहिए, कौन कौन से यहाँ पक्षी थे, और अंत में एक चींटी का भी वो उपकार की गुणगान करते हैं, उसको ग्रेटिट्यूड प्रदर्शन करते हैं। कैसे करते हैं आप सोचेंगे कि एक चींटी का गुणगान क्यों करते हैं
1: जी।
0: और एक हल्दू के वृक्ष की भी पूजा करते हैं वहां पर।
1: अच्छा,
0: अब क्यों हल्दू की करते हैं, चींटी का क्यों गुणगान करते हैं? तो ये समझ है कि जब कभी अकाल पड़ जाएगा, कभी बीज भी खत्म हो जाएगा कृषि के लिए, तो चींटी के बांबी के अंदर वो रखती है संभाल करके
1: जी,
0: इसलिए उसको कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

0: तो ये एक मौखिक रूप से वाचन करके पूरी परंपराओं की मजबूती को अपने आगे आनी पीढ़ी को वो वापस करते हैं। कितनी सुंदर एक परंपरा है।
1: बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये जो धन्यवाद का भाव है, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम तथाकथित रूप से बौद्धिक हो जाते हैं तो ये धन्यवाद का भाव हमको छोटा लगने लगता है। बहरहाल, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि वो किस तरह से अपनी परंपराओं को सहेजे हुए हैं, समेटे हुए हैं और जुड़े हुए हैं अभी भी उस प्रकृति से। युवाओं पर आते हैं, भारत विश्व का सबसे युवा देश है, भारत के युवा तर्क करते हैं, भारत के युवा आंदोलन भी कर सकते हैं, भारत के युवा वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक देश को बदलने की ताकत रखता है। उस युवा को क्यों फर्क पड़ना चाहिए कि उसके आसपास से जुगनू गायब हो रहे हैं, उसके आसपास से गोरैया गायब हो रही है, उसके आसपास से केंचुए गायब हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें गायब हो रही हैं जो शायद वो गौर भी ना कर रहा हो, उसे क्यों गौर करना चाहिए?
0: हाँ, यदि केवल
1: बहुत
0: एक
1: सारे काम है उसके
0: जी
1: पास।
0: एकदम, चूंकि आपने उसको आर्थिक पक्ष से जोड़ा है कि उपयोगिता के है
1: जी।
0: पहले तो हम दोनों बात को बहुत स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब से चीजें अर्थव्यवस्था से जुड़ी हैं सीधे सीधे, तब से सोच मानव का बदल गया। हमने उसको अपना हिस्सा नहीं माना कि उसको भी जीने का अधिकार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब चूंकि अर्थ की बात जुड़ी ही है युवाओं के साथ, आप तितलियां देखें, आप मधुमक्खी देखें, इनका कितना बड़ा रोल है, उपयोग है आपके फसल उत्पादन में, फल उत्पादन में,
1: परागण के लिए।
0: यदि लगभग 70-80% परागण मधुमक्खियां तितलियां ये सब करते हैं, कीट पतंगे, यदि इनको आप निकाल देंगे, परागण नहीं होगा तो आपके फल नहीं बनेंगे, बीज नहीं बनेंगे, तो एक जो फूड सिक्योरिटी है, खाद्य तंत्र की सुनिश्चितता है, आपको खाद्य भी चीज़ें भी मिलना बंद हो जाएंगी, आपको शहद मिलना बंद हो जाएगा
1: जी।
0: आपकी जो सुंदरताएं दिखती हैं शहरों में तितलियों के माध्यम से भी वो स्थापित है। आप कितनी जैव विविधता, तितलियां सुंदर सुंदर दिखती हैं, छोटे बच्चों को देखिए, हम लोग भी बचपन में तितलियां पकड़ते थे कंपनी गार्डन में
1: जी।
0: और बड़ा सुख मिलता था। अब वो सुख से बच्चे वंचित हो गए हैं, वो वंचित होंगे, जब वो बड़े होंगे तो वो सुख से वो भी वंचित ही रहेंगे प्रकृति के। तो एक आप देखें फूड सिक्योरिटी, अर्थतंत्र देखें, खाद्य तंत्र देखें, पर्यावरण को भी आप देखें, यदि पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा तो आपका पर्यावरण के जो दुष्परिणाम है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड लें, ऑक्सीजन लें, चाहे हवा में नमी को रूप में देखें हम, पशु पक्षियों के इनका आश्रय देखें, तो जैव विविधता का जो एक सुख है, चाहे आंतरिक रूप से है, चाहे बाहर रूप से हो, टेंजिबल या इंटेंजिबल जैसा भी हो, एक युवा, आज का युवा बहुत जागरूक हो रहा है समय के साथ, जो जेन जी की बात आ रही है, बहुत जागरूक है, परंतु उसको एक दिशा, सही दिशा मिलना चाहिए, और वो चाहता है आज का युवा कि हम इस चीजों को बचाए आने वाली पीढ़ी और अपने लिए भी, परंतु रास्ता क्या होना चाहिए? रास्ता होना चाहिए हमारा दर्शन, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद और जनजाति जीवन। युवाओं को चाहिए कि जा करके जनजाति क्षेत्रों में देखें उनका जीवन शैली कितना कैसा है और कैसे जीते हैं और खुश हैं। शहर में सब कुछ है, खुशी नहीं है।
1: सही बात।
0: युवाओं के लिए सरकार को भी और स्वप्रेरणा से भी स्कूल कॉलेज को बच्चों को ले आना चाहिए, ग्रामीण जीवन को दिखाना चाहिए और उनको बोलेंगे खुशी का एहसास देखिए उनके चेहरे पर, और फिर लौट के आएगा तो वो भी खोजेगा अपने आसपास एहसास को। ये जो लोकल एक्शन की बात है, ये वो एक्शन है जो लोग जी रहे हैं अभी, और ये इम्पैक्ट करेगा। केवल बायोडायवर्सिटी को गणती की इतने प्रजातियां हैं, इतने आपके डायस्कोट, इतने कीड़े मकोड़े हैं, इतने वृक्ष प्रजातियां हैं, इनको बचाओ, इतने खतरे में हो गए, इससे हम नहीं बचा पाएंगे। आज 25-30% प्रजातियां खतरे के बागडोर पर हैं, ऐसा IUCN का स्टडी है, साइंटिफिक रिसर्च है
1: जी।
0: और उन सब कारणों से क्या हो रहा है, आपका पर्यावरण का क्लाइमेट चेंज पर भी असर पड़ रहा है, मौसम पे, बरसात पे असर पड़ रहा है, कृषि उत्पादन पे इसका असर पड़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। तो हमको अपने पुराने रास्तों को खोजना पड़ेगा और युवाओं को अवेयर करना पड़ेगा कि आपको बागडोर संभालनी है, केवल नियम कानून तंत्रों से कुछ नहीं होने वाला है।
1: डॉक्टर दुबे, क्या आप ये कह रहे हैं कि गांवों के कच्चे घरों को तोड़ करके, जो गोबर से लिपे होते थे उनको तोड़ करके, शहरों में आकर मड हाउसेस बनाने वाले जो हज़ारों रुपए के किराए के लिए बने होते हैं शहर से दूर, आप ये कह रहे हैं कि वापस उसी गांवों की तरफ जाना चाहिए, उन्हीं कच्ची सड़कों की तरफ जाना चाहिए, गांव का जो एक गांवपना है, एक भदेसपना है, जो एक सौंधापन है, उसको फिर से

0: सहेजने की, फिर से उसको बचाए रखने की ज़रूरत है, अगर कहीं बचा है तो।
1: मेरा कहना है कि रोड तो अच्छी होनी चाहिए,
0: बिल्कुल
1: सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए,
0: बिल्कुल
1: स्कूल मिलने चाहिए, चिकित्सालय अच्छे मिलने चाहिए, ये मौलिक चीजें हैं। यदि पक्के मकान ही इतने अच्छे हैं तो आज टूरिज्म के लिए भारत सरकार भी, स्टेट गवर्नमेंट भी मड हाउसेस क्यों बनवा रहे हैं
0: जी
1: कि विदेश के लोग आए और उसको एंजॉय कर रहे हैं वो तो मड हाउस में।
0: जी जी बिल्कुल
1: ये एक बड़ी सोच का विषय है, चिंतन करना चाहिए सरकार को भी कि उनके मड हाउस में आप कहते हो पक्के में रहो और उनको कहते हो कि आप रूरल हट्स बनाइए, विदेशी आएंगे या शहर के लोग भी आएंगे और शहर के लोग जाते हैं 2-3 दिन रुकते हैं खपड़े के मकान में और
0: बिल्कुल
1: अच्छा पेमेंट करते हैं, तो कुछ प्लेजर तो होगा जो कि शहरी को नहीं मिल रहा है शहर में।
0: बिल्कुल
1: एक हमको सामंजस्य रखना पड़ेगा दोनों के बीचों में, पर गांव के लिए मौलिक चीज है स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य कार्यक्रम, और जो बेस्ट टैलेंट है वो गांव में जाए, बेस्ट डॉक्टर गांव में जाए, बेस्ट शिक्षक गांव में जाए, ये ज़्यादा जरूरी है मेरे विचार से।
0: नहीं, बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने कि जो सड़कें गांवों से शहर तक आती हैं, वही सड़कें वापस शहरों से गांवों तक भी जानी चाहिए।
1: जी
0: हमारा समय लगभग खत्म होने को है। युवाओं की हम बात कर रहे थे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो शुरुआत कहाँ से करें? अगर हम जैव विविधता की बात कर रहे हैं, तो हर जगह का जो एक फ्लोरा फौना या पशु पक्षी या पेड़ पौधे होते हैं, वो अलग अलग होता है। अपनी जगह पर जो एक्टिंग लोकली की बात है, स्थानीय स्तर पर ये लोग जो हमारे युवा हैं, ये क्या करें कि कम से कम अपने आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर वो ये जैव विविधता जो बची है उसको बचाए रख पाएं, और जो लगभग विलुप्त प्राय है उसको फिर से पुनर्जीवित कर सकें।
1: स्थानीय स्तर पर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लोग हैं,
0: जी
1: कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो 70, 80, 90 साल के बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए, जब आप छोटे थे कौन कौन से वृक्ष यहाँ हुआ करते थे और आज क्या बदलाव आ गया, तो
0: बिल्कुल
1: आप जनप्रतिनिधियों के ऊपर ये दबाव डालिए कि जो आप वृक्षारोपण के शासकीय कार्यक्रम भी करते हैं इन प्रजातियों की उपयोगिता इनको आप लगाइए। जिस आपने उपयुक्त तो प्रजाति लगा दी जो स्थानीय है, तो कीड़े पतंगे पक्षी स्वतः अपने आप वहाँ पर आ जाएंगे।
0: बिल्कुल
1: स्थानीयता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपके आसपास जो पार्क हो, स्कूल कॉलेज में वृक्षारोपण हो, या बहुत सी जो रैलियाँ निकलती हैं, स्थानीय विषयों को जो पर्यावरण से जुड़े हैं उनका अध्ययन करिए और जोड़िए और आगे बढ़ाइए।
0: जितने भी हमारे अतिथि आते हैं उनसे हम ये एक आग्रह करते हैं कि इतनी सारी बातचीत में अगर आपको ऐसा लगता है कि हमसे कुछ पूछना बचा रह गया हो, या आप हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं से कुछ अपील करना चाहें संक्षेप में।
1: दो बातें बोलने चाहेंगे हम। मुझे बेहद खुशी है कि जो कुछ भी मैंने सीखा, मैं चाहता हूँ समाज के पास जाए, वो जनप्रतिनिधियों के पास जाए। जो आकाशवाणी प्रयागराज ने अवसर दिया, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको ऐसे विषय को लिए आपने। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको कि हम लोग अपनी परंपराओं को उस पर गौरवान्वित नहीं होते, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है गोदना। टैटू शब्द हम सुनते हैं तो बहुत आकर्षित होते
0: नहीं,
1: हैं,
0: आजकल तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पर टैटू बनवा
1: करते
0: लेते हैं और
1: हैं,
0: बहुत
1: बिल्कुल,
0: महंगे पैसे दे करके बनवाते हैं।
1: पर गोदना कह दें तो सोचेंगे पिछड़ी कोई बात कर रहे हैं।
0: जी
1: मैंने इसके ऊपर बहुत शोध किया मध्य प्रदेश में, और टैटू ऐसा नहीं कोई आधार नहीं है, उसका जैव विविधता का एक कैनवास है, उनके शरीर के ऊपर आवरण है, जो
0: अच्छा
1: पेड़ पत्ती पशु नदी नाले सबको अपने शरीर पे चित्रण कराते हैं,
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: एक खास प्रकार के लोग इस काम को करते हैं, खास टेक्निक है। और मैंने अध्ययन किया है 20 से 25 प्रकार की वनस्पतियाँ अलग अलग क्षेत्रों में जो मिलती हैं स्थानीयता पर, उसका उपयोग वो करते हैं कि टैटू बनाने में काजल के साथ वो वनस्पति का रस अंदर जाए जिससे कि सूजन ना हो, इन्फेक्शन ना हो। साथ ही साथ गोदना विशेष प्रकार की बीमारियों में भी जीवन भर भी करवाते हैं, वो कोई विशेष प्रकार का
0: अच्छा
1: आर्थराइटिस हो गया, कार्डियोवेस्कुलर है, उसके पास जाएंगे जानकार का और वो इस काम को करता है। तो एक जैव विविधता से जुड़ा स्थानीय विषय है, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, ऐसे कलाकारों को प्रमोट करना चाहिए, और इस संस्कृत को यदि हम एक्यूपंचर बोल दें चाइना का
0: बिल्कुल
1: तो लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एक्यूपंचर। जो उनके पीढ़ियों कितने पीढ़ियों ने इसका ज्ञान अर्जित किया, परंतु आज उस पीढ़ी के लोग भी गाँव में डिंडोरी मंडला मैंने देखा है इसको लोग छोड़ने लगे हैं, क्योंकि शहर में जाते हैं तो कहते हैं अच्छा ये तो ऐसा है, पिछला है बहुत। इसकी वैज्ञानिकता के ऊपर शोध, उसको पुनः स्थापना, ऐसे

0: तमाम विषय है जिनको कि अध्ययन करके स्थापित करके नए युवाओं बच्चों को बताना चाहिए, क्लास सेवेंथ एट्थ के बच्चों को गोदना क्या है, उसकी वैज्ञानिकता क्या है। एक आदिवासी, एक वनवासी, गांव के पास रहने वाला जो जैव विविधता को जानता है, किसी शहर के बच्चे को पूछिए बबूल का फूल किस रंग का होता है, नहीं बोल सकता। गांव का पास रहने वाले आदमी से पूछिए किसी से, सबको बता देगा किस में फूल कब आता है, किस रंग का आता है। यह है जैव विविधता का ज्ञान क्रियात्मक रूप से।
1: बहुत ही अच्छी बात बताई आपने और बड़ी आश्चर्यजनक बात बताई कि गोदना जिसे हम टैटू कहते हैं उसको हम एक थेरेपी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रकृति के साथ जुड़ने का या जुड़े रहने का उदाहरण क्या होगा कि वो शरीर जो अंत में उनके साथ तक रहेगा उस शरीर पर ही उन्होंने उस प्रकृति को ओढ़ लिया और स्थायी रूप से ओढ़ लिया।
0: जनजाति की औरतें क्या बोलती जानते हैं, इतना मार्मिक है आपका दिल में हलचल मचेगी कि जब मैं मरूंगी तो ये जंगल मुझको याद करेगा, मेरे साथ जा रहा है ये, एक भाव के रूप में ये जंगल मुझको याद करेगा, कोई था जिसने अपने ऊपर मुझको ओढ़ रखा था।
1: क्या बात,
0: कितना मार्मिक जुड़ाव, दिस इज द जैव विविधता।
1: बिल्कुल सही बात है डॉक्टर पीसी दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी और जैव विविधता के ऊपर खुल करके इतनी बेहतरीन बातचीत की, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे श्रोता हैं, खासकर जो ग्रामीण श्रोता हैं और जो युवा हैं, वो इससे लाभान्वित होंगे, समझेंगे, जैव विविधता को समझेंगे और उसका महत्व अपने लिए समझेंगे। चलते चलते श्रोताओं, आपको उसी नेटिव इंडियन कहावत के साथ छोड़ जाऊंगा जो मैं प्रकृति से जुड़े हर कार्यक्रम के अंत में कहता हूं। जब अंतिम पेड़ काट लिया जाएगा, जब अंतिम नदी की अंतिम बूंद सूख जाएगी और जब अंतिम मछली पकड़ ली जाएगी, शायद तब हमें ये महसूस होगा कि पैसे खाए नहीं जा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पीसी दुबे हमारे साथ जुड़ने के लिए और जैव विविधता के ऊपर इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए। श्रोताओं, अगली बार फिर किसी विशेष हस्ती को लेकर आपकी सेवा में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञ पांडे को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए पंचायत घर। धन्यवाद।
2: हाँ भैया, देखा जैव विविधता पे प्रकृति की असली पूंजी, डॉक्टर पीसी दुबे से भैया कितना बढ़िया फरियाए के अभिनव प्रज्ञ पांडे भैया पूछे ने, और डॉक्टर साहब भी कितना विधिवत तरीके से का बताए ने कि जैव विविधता हमारे सबके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण बाटे और ओकरे लिए हमका सबके कितना जो ना है सचेत रहे क्या है, उपे काम करे क्या है,
3: साथ ही साथ जो मतलब प्रजाति विलुप्त हो जात बाटे उनके बारे में बताई ना।
2: बिल्कुल,
3: ध्यान दे बाटे।
2: देखा भैया, बातचीत तो होत रही लेकिन आवा पहले की संदेश हो जाए फिर आगे बात बात कही हो।
3: बिल्कुल भैया, सुनवा दिया।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
6: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
5: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
6: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
7: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ भैया, देखा संदेश भी हो गया भैया। देखा हम लोग बातचीत करते रहे कि जैव विविधता के बारे में, और देखा यह समय भी आ गया बटे भैया गर्मी।
3: बिल्कुल,
2: और गर्मी में भैया यही के बाद जब बरसात शुरू हो थे तो देखा बाग बगीचा के भी लगावे के जो ना है समय रहा थे, लेकिन बाग बगीचा लगावे के तैयारी जो ना है अभी से ही शुरू होते। जौन भी किसान भैया हरेन विचार करे हैं कि यह बार जो ना है पेड़ लगाओ या बाग लगाओ, तो ओके तैयारी जो ना अभिने से शुरू कर दें ताकि समय रहते वो काम पूरा हो जाए, तो जैसे ही बारिश शुरू हो तो पेड़ पौधा अपन वो लगा सकें।
3: भैया खेत के जुताई उताई अच्छे से कर दें भैया, ताकि हवा पानी लग जाए।
2: बिल्कुल भैया, जो ना है साथ ही साथ देखा गर्मी में इतना लू

0: गलत है जो ना है, तो किसान भैया ने से कहा कि अपने खेती बाड़ी के जो भी काम है ओका कोशिश करें कि जो ना है जब मौसम थोड़ा सुबह में या शाम में ठंडा रहे तबई
1: हाँ
0: करें। और बहुत ज़रूरी है अगर दिन में निकले के खेती बाड़ी में तो बढ़िया भैया गमछा से
1: बिल्कुल
0: हाथ मुंह ढके रहें और बराबर जो ना है ढका ठंडा पानी पियाएं। और साथ में अगर जो ना है दूध दही होता है तो वह का सेवन करें
1: हाँ
0: ताकि जो ना है गर्मी के जो ना है प्रभाव उनके सेहत पे कम से कम
1: हाँ
0: होए, है
1: भाई
0: कि नहीं।
1: हम तो कहा भैया जो खेत जो है सुबह 10 के पहले पहले निपटा लें खेत काम, या फिर शाम के निपटा भैया 5-6 के बाद है।
0: बिल्कुल भैया
1: और भैया
0: बिल्कुल।
1: खेते में जाए तो भैया गमछा वमछा बांध रहे हैं मोड़े में, हाँ पानी अपने साथ लिए रहे हैं भैया, पानी कमी ना हो दें।
0: बिल्कुल भैया। और देखा अपन तो ध्यान रखें कि भैया, लेकिन साथे साथे देखा हमारे सबके खेती किसानी के जो ना है परिवार में जो ना है एक अनमोल सदस्य होती हैं जो ना हमारे पशु,
1: पशुगण, हाँ
0: हाँ पशु भैया देखा उनके लिए विशेष ध्यान रखें क्या है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: देखा भैया वो अपन जो ना है दर्द तकलीफ के हो से कह नहीं पावाथिन, तो
1: बिल्कुल
0: ओकरे लिए ऐसा करें कि भैया कि जो सुबह शाम में उनका जो ना है ताज़ा पानी दें, हरा चारा दें, और जो ना है उनका छाहे में
1: छाए माने
0: रखें,
1: भैया, हाँ
0: हाँ, और ताज़ा पानी से उनका जो ना नहवावें ताकि उनके भी जो ना है कोनो तरह के दिक्कत ना
1: ना
0: हो,
1: हो भैया,
0: खास
1: हाँ
0: करके जो दुधारू पशु हैं। तो उनमें क्या होता है ना भैया देखा गर्मी में जो ना है दूध के कमी आए
1: हाँ
0: जाते ये गर्मी की वजह से। तो
1: हाँ हाँ
0: लेकिन अगर किसान भैया रहें तनि सचेत रहें उनका जो
1: हाँ
0: ना है
1: हाँ
0: विशेष ध्यान रखें तो कोनो तरह के दिक्कत
1: और
0: ना
1: साथ ही
0: होए।
1: साथ भैया देखा जो किसान भैया खेत से घास लाओ दिन काट के, तुरंत ना दें, का घास कुछ देर रख दें ठंडी हो जाए तब दें, ताकि पशु के
0: बिल्कुल
1: खाए
0: भैया
1: बीमार ना हुई भैया।
0: बिल्कुल भैया। अगर देखें ऐसे में क्या होता है ना बहुत सारे किसान भैया जो ना है एका जाना तो है कि जो ना है शाम के लिए आएं तो अपन ओका रखें सुबेरे खातिर,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और सुबेरे की चारा दे दें, सुबेरे उन काट के लिए आवें चरी या घास जो भी जो ना है तो ओका शाम के खातिर जो ना व्यवस्था करें तो उसी जो ना है पशुअन में कोनो तरह के बीमारी
1: बिल्कुल
0: नहीं
1: हाँ
0: होते हैं।
1: हाँ आप पशु को जहाँ बांधे भैया थोड़ा सुबह शाम हवा में बांध दें, हाँ खुली हवा में,
0: हाँ
1: बाकी
0: हाँ
1: जो है धूप में छाए में बांधे भैया।
0: बिल्कुल भैया छाँव में रखें, ये गर्मी देखा बहुत ज़्यादा पड़ पटे, और ख़ास करके जो उन पशुओं के लरुआ होते हैं ना भैया तो उन्हों के जो नहाए
1: ध्यान दें।
0: ध्यान रखें उनका, हो सके तो जो नहा उनके लिए अपन घर में जहाँ पंखा उनका लगा हुआ रखें, ये
1: बिल्कुल
0: लिए
1: बिल्कुल
0: कि वो तो और जो ना भैया उनका ध्यान दे के ज़रूरत पड़े थे।
1: हाँ भैया हाँ
0: भैया देखा अपने पंचायती में हम लोग अपने पंच भैया हरिन के तमाम तरह के कार्यक्रम सुनवावत रही थी, और ओकरे प्रति जो ना किसान भैया लोग जो ना है और भी नया नया कुछ ना कुछ जाने के उनके इच्छा होत हुई।
1: हाँ
0: तो ओकरे लिए जो ना अपने किसान भैया जो ना है हमारे फेसबुक पे अपन जो ना है विचार
1: प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते।
0: प्रतिक्रिया दे सकथिन, और साथ ही साथ जो ना है अपन आकाशवाणी की जो रेडियो के नंबर है फ़ोन नंबर ओ पे भी जो ना है अपन विचार संदेश
1: हाँ हाँ
0: भेज के हमका बताई सकथिन कि
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: और का सुनई चाहता है और का जानई
1: हाँ,
0: चाहता
1: ताकि
0: है।
1: हम लोगों पे और सुधार कर सके भैया।
0: बिल्कुल भैया उनके लिए नई नई जानकारी हम लोग ले आ
1: हाँ तो
0: सकें।
1: भैया
0: तो
1: अरे नंबर नोट कर लें,
0: बिल्कुल भैया
1: हाँ
0: भैया रघु भैया बोले।
1: भैया देखा नंबर नोट करें भैया, अरे 800-4926-250। भैया अरे नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 800-4926-250।
0: हम तो कहे भैया देखा एक अंग्रेजी में बताई दे
1: बताओ भैया।
0: 8004926250। भैया देखा आप जौन भी संदेशा कहा चाहे जौन भी विचार हो उसका आप बोलें
1: बिल्कुल
0: ताकि हम लोग आपके लिए कुछ नया कार्यक्रम ले आ सके। देखा भैया आप तो जो नहाए
1: घड़ी
0: पंच
1: इशारा
0: लोगन
1: कर
0: से
1: दर्ड
0: भी
1: है।
0: विदा ले के समय होत बटे, तो जाते जाते भैया यही कहा कि गर्मी में भैया देखा तनी बच बचाए के रहा और
1: हाँ
0: जौन भी खेती बाड़ी काम है उसका सुबेरे संझा में करा।
1: हाँ
0: तो
1: भैया
0: ठीक है पंचो
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

श्रोताओं, अब हम आपको हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। सात बजकर 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर ललित कुमार की वार्ता होगी, संस्कृत व्याकरणस्य प्रयोजना नाम उपादेयता। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में महेश्वर दयाल से गीत और भजन सुनिएगा। रात 8:30 अंग्रेजी कार्यक्रम के अंतर्गत के राशि कुमार की वार्ता होगी, आकाशवाणी 90 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। 9:30 पर सुनिएगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। 10:00 हम आपको सुनवाएंगे कलीम उर्फी का लिखा नाटक दाढ़ी वाला हाथी। 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे

7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर ललित कुमार की वार्ता होगी संस्कृत व्याकरणस्य प्रयोजना नाम उपादेयता। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में महेश्वर दयाल से गीत और भजन सुनिएगा। रात 8:30 अंग्रेजी कार्यक्रम के अंतर्गत के राशि कुमार की वार्ता होगी आकाशवाणी 90 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। 9:30 पर सुनिएगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। 10:00 हम आपको सुनवाएंगे कलीम उर्फी का लिखा नाटक दाढ़ी वाला हाथी। 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित उमा शंकर का श्रितार वादन।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और विरासत के नए मॉडल में बदला। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज से प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रयागराज में आज दोपहर 46 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी। कई इलाकों में चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 19वें रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। रोजगार मेला आरम्भ किए जाने के बाद देश में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है और अब विकास की यात्रा रुकने वाली नहीं है। श्री योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। यूपी विरासत और विकास दोनों का संगम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद नए भारत का निर्माण हुआ है।
2: 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
0: इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विजय लक्ष्मी गौतम सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यमुना एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन पत्र प्रदान किया। इस पहल से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ संवाद कर उन्हें प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया। इस कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी उपस्थित रहे। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत आज से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। आज से राज्य के 3,89,312 मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास और आगरा में ताजमहल परिसर की भी गणना की गई। आज 1,35,00,000 से अधिक घरों पर जनगणना मकान संख्या अंकित की गई। इससे पूर्व 7 से 21 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में जनगणना में संपूर्ण जिले को कुल 3,682 गणना ब्लॉक में विभाजित किया गया है। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि प्रगणक घर घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं।
3: हमारे 3,680 HLBs हैं और हर किसी को अराउंड 150 एवरेज, यानी कि अराउंड 600 टू 800 की पॉपुलेशन हर किसी एन्यूमरेटर को करना है। और ये काम जैसे वो अपने स्कूल की ड्यूटी करते हैं उसके बाद के 1 घंटे में करना है। और जो ये कैलकुलेशन हुई है इसकी साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से एक परिवार के कराने

लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देशभर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़

0: बनाने में लगभग 10 मिनट लग रहे हैं। तो अगर एन्यूमरेटर डेली 1 से 1.5 घंटा भी देंगे तो अपने वो दैनिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आज 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्यबागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने आज लखनऊ के जिला न्यायाधीश मलखान सिंह के नेतृत्व में एक साइकिल जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य बढ़ती ईंधन खपत के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ये सर्वेक्षण देश के गाँवों में स्वच्छता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कराया गया था।
2: यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण होता है, ये मुख्यतः इसके 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा गांव का सर्वे किया जाता है, इसके अलावा जो सेवा स्तरीय प्रगति होती है उसकी भी निगरानी इस सर्वेक्षण में होती है। तीसरा जो हमारे नागरिक हैं उनका जो फीडबैक है, सिटीजन फीडबैक के भी इसमें 100 अंक होते हैं। और इसके अलावा जो विभिन्न तरह के संयंत्र हमारे जनपद में लगे हुए हैं, जैसे कि 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट हैं, बायोगैस प्लांट है, FSTP है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सबके जो कार्य क्षमता है उसका भी आकलन इस सर्वे में किया जाता है।
1: उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने आज बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर कैंट पनियावा रेलखंड में उन्नावला पिपराइच स्टेशन के बीच रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के चलते मुरादाबाद मंडल में 18 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने 28 मई से 8 जून तक विभिन्न तिथियों में ट्रेनों को निरस्त और परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला लिया है। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। प्रयागराज में आज दोपहर तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आगरा में पारा 45 डिग्री रहा। राजधानी लखनऊ सहित कई शहरों में तापमान 42 डिग्री के पास रहा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में दिन में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है।
3: प्रदेश में आगामी 1 सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के साथ कहीं कहीं उष्ण लहर से होने की संभावना के दृष्टिगत आगामी 3 दिनों के लिए 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट, जबकि उसके बाद के 4 दिनों में 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देशभर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और विरासत के नए मॉडल में बदला। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज से प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1 करोड़ 35 लाख

0: कोपकारकं ग्राह्यं कृत्स्नं त्याज्यं न किंचन। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।
1: संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ललित कुमार की वार्ता, संस्कृत व्याकरणस्य प्रयोजना नाम उपादेयता। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

शिक्षा वह रक्षक है जो सपनों को साकार में बदल सकती है। शिक्षा वह आईना है जो आपकी असाधारणता को प्रकट करता है। शिक्षा हमें वह पंख देती है जो हमें ऊंचाइयों तक उड़ने की क्षमता देता है। शिक्षा हमारे भविष्य की नींव है जिसे हम मजबूती से निर्माण करना चाहते हैं और हमें इसे मजबूती से निर्माण करना भी चाहिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए महेश्वर दयाल की आवाज में ये भजन।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभिलाषा फिल्म से। संगीत आरडी बर्मन का, शब्द रचना मजरूह की।

श्रोताओं, अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में अभिनेत्री फिल्म से। संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, शब्द रचना मजरूह की।

श्रोताओं, इसी गाने के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अंग्रेजी कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए के राशि कुमार की वार्ता आकाशवाणी 90 ग्लोरियस इयर्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग।
1: Is no ordinary day on your airwaves. We are gathering around, bringing millions of listeners together to celebrate a monumental milestone, 90 glorious years of broadcasting by Akashvani. On June 8, 1936, a humble voice was born that transformed the Indian State Broadcasting Service into All India Radio. Two decades later, in 1956, it formally

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, चित्रपट संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुना रहे हैं दिल है तुम्हारा फिल्म का ये गाना, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में। संगीत है नदीम श्रवण का, शब्द रचना समीर की।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत के कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में, अवाम फिल्म से, संगीत और बोल हसन कमाल के।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति

0: निकोलस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर

0: ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंटली बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकत दारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बनाया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वुजराए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कुब्रुस

सदर निकोस क्रिस्टोडिलाइट्स ने आज दहशतगर्दी की तमाम किस्मों और सरहद पार की दहशतगर्दी समेत तमाम मजाहिर से मुकाबला आरई के अपने अज़्म का इरादा किया। दोनों लीडरों ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज एक बाहमी मीटिंग की। दोनों लीडरों के दरमियान मुजाकिरात के बाद मुख्तलिफ माहदे तय पाए, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने से मुतालिक एक मफाहमतनामा और सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट बराए खारजी खिदमात और कुब्रुस की सिफारती अकेडमी के दरमियान सिफारतकारी के शोबे में तरबियत से मुतालिक एक मफाहमतनामा शामिल है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री इस मीटिंग में मौजूद थे। मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस कनेक्टिविटी से मुतालिक स्कीमों पर मिलकर काम करेंगे, जैसे भारत बहरुल काहिल समंदरों से मुतालिक स्कीम और भारत मशरक वस्ता यूरोप इकतसादी राहदारी दिफा और सलामती के शोबे में तआवुन के बारे में जनाब मोदी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने साइबर सिक्योरिटी, समंदरी सरहदों की सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी में शिरकतदारी को मजीद मुस्तकम करने से इत्तफाक किया है।

0: इन सतह पर पहुंच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। बिजली की वजारत ने कहा कि कल दिन के वक्त बिजली की सबसे ज्यादा खपत 270.82 गीगावाट रही, जिसने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अहम वजारतों और सरकर्दा सनती एसोसिएशनों के अहलकारों के साथ आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसका मकसद मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने की गरज से हिकमत अमली तय करना था। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में जनाब गोयल ने बताया कि हुकूमत सनत के साथ गहरे रवाबित के साथ काम करने के तई पुरअज़्म है। भारत के दो कोहे पैमा अरुण कुमार तिवारी और संदीप माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चढ़ाई से उतरते वक्त अपनी जान गंवा बैठे। नेपाल के सयाहत के महकमे के हकाम ने बताया कि ये दोनों दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी सर करने के बाद नीचे उतर रहे थे। बताया जाता है कि अरुण और संदीप चोटी से नीचे आते वक्त बहुत थक चुके थे और गाइड की हर मुमकिन कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मणिपुर में आसाम राइफल्स ने कल और आज बिरादरियों तक रसाई की सिलसिलेवार आउटरीच पहल का इनेकाद किया। इन सरगर्मियों का मकसद नौजवानों को तालीम को अपनाने, करियर के इंतखाब से मुतालिक पूरी वाकफियत हासिल करने और सभी शुरका को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की तहरीक देना था। हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक्वामी स्टेडियम में जारी आईपीएल क्रिकेट मैच में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 256 रन का निशाना दिया है। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरक फोर्स तश्कील देने से इत्तफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना दिया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन साजो सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 256 रन का निशाना दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कहकशा। हमारा आज का ये कार्यक्रम आधारित है गजलों पर। सबसे पहली गजल हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में, साथ साथ फिल्म से। संगीत है कुलदीप सिंह का, शब्द रचना जावेद अख्तर की।

तलत अजीज की आवाज में सुनिए अगली गजल उमराव जान फिल्म से। संगीत है खयाम का, शब्द रचना शहरयार की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कहकशा। गजलों पर आधारित ये कार्यक्रम है और अगली गजल हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में दुश्मन फिल्म से। संगीत है उत्तम सिंह का, शब्द रचना आनंद बख्शी की।

श्रोताओं, कहकशां कार्यक्रम में कहकशां फिल्म की गजल हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की आवाज में। संगीत है मधु मुखर्जी का।

जगजीत सिंह की आवाज़ में लीजिए सुनिए अर्थ फिल्म की ये गज़ल। संगीत जगजीत सिंह का, शब्द रचना कैफी आज़मी की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कलीम उर्फी का लिखा नाटक दाढ़ी वाला हाथी। भाग लेने वाले कलाकार हैं रामचंद्र गुप्त, शैलेश कुमार श्रीवास्तव, अभिलाष नारायण और रूपा सहाय।

0: कोटि समत् प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा लड्डुन का भोग लगे संत करे सेवा लड्डुन का भोग लगे संत करे सेवा लड्डुन का भोग लगे पंच करे। अरे क्या है उमेश?
1: पिताजी
0: हुआ क्या बेटा?
1: पिताजी पिताजी मैं कल रात से बहुत विचलित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत व्याकुल हूँ। दिल उछल रहा है, सीने में दौड़ रहा है।
0: बताओगे हुआ क्या?
1: पिताजी पिताजी रात 9 बजे जब मैं मंदिर से आ रहा था, एक ज्योतिषी पंडित से टकरा गया। ज्योतिषी पंडित मस्तक रेखा हस्त रेखा पढ़ने में बहुत निपुण है।
0: हुआ क्या?
1: पिताजी निपुण ज्योतिष पंडित ने बताया बहुत बड़ा संकट आने वाला है, अष्टक लगा है, मस्तक रेखा और जीवन रेखा पर शनि का प्रभाव है, राहु केतु छिपकर देख रहा है, मंगल अस्त हो चुका है, शुक्र की कृपा दृष्टि तनिक भी नहीं है, गुरु को राहु केतु ने जकड़ लिया है, सूर्य को शनि ने पकड़ लिया है, सूर्य छटपट आ रहा है, अकेला बुद्ध मारा मारा फिर रहा है। ज्योतिषी पंडित ने संकट भगाने के लिए महामृत्युंजय का जाप करवाने के लिए कहा है, 5,000 रुपया खर्चा आएगा, नहीं तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा।
0: अरे अरे अरे राम न करे, राम न करे, राम की कृपा बनी रहे, राम अपनी छाँव में रखे।
1: पिताजी
0: राम, राम, राम, राम,
1: पिताजी रात मैंने एक बहुत बुरा सपना भी देखा।
0: बुरा स्वप्न? क्या देखा बेटा?
1: पिताजी
0: बताओ ना, बुरा स्वप्न बता देना चाहिए बेटा, बताने से बुरे स्वप्न का बुरा प्रभाव नष्ट हो जाता है।
1: पिताजी मैंने देखा।
0: क्या देखा?
1: एक बहुत बड़ा बड़े पेट का दाढ़ी वाला हाथी।
0: दाढ़ी वाला हाथी?
1: हाँ।
0: राम राम राम।
1: दाढ़ी वाला हाथी घर का जितना भी राशन था साफ खा गया, एक कनस्तर घी पी गया, एक कनस्तर कड़वा तेल पी गया, 10 किलो चाय की पत्ती भाग गया, एक बोरी चीनी खा गया।
0: राम राम राम राम, हाथी की दाढ़ी तो नहीं होती बेटा।
1: और पिताजी रात एक उल्लू भी बोल रहा था।
0: राम राम राम राम।
1: रात कुत्ते भी बहुत रो रहे थे।
0: राम राम राम राम।
1: और पिताजी पिताजी छत पर बिल्ली भी अपने परिवार के साथ रो रही थी।
0: राम राम राम राम।
1: और तो और रात 12 बजे से मेरी दोनों आंखें फरफर फरफर फरफर करके भड़क रही हैं।
0: बेटा राम राम, ये दोनों आंखें?
1: हाँ पिताजी। और पिताजी पिताजी सुबह भोर मुर्गा के स्थान पर काला कौआ बोल रहा था।
0: राम राम राम राम।
1: पिताजी कार्यालय से एडवांस लेकर महामृत्युंजय का जाप तो अवश्य करवाऊंगा, जब तक आप गायत्री मंत्र का जाप करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, संकट घर में घुसने ना पाए, दाढ़ी वाला हाथी सब राशन खा गया।
2: रेखा रेखा,
0: अब महामृत्युंजय का जाप करवाने से कुछ नहीं होगा बेटा। लो दाढ़ी वाला हाथी आ गया।
1: दाढ़ी वाला हाथी आ गया। घंटी बज रही है। रेखा रेखा चिल्ला रहा है।
2: रेखा।
1: अरे अरे ये तो मजले साले जी है, घंटी बजा रहे हैं, रेखा रेखा चिल्ला रहे हैं।
0: देखा नहीं, मजले साले की फ्रेंच कट दाढ़ी है।
1: हाँ।
0: और वही दाढ़ी वाला हाथी है।
1: हाँ।
0: घर में घुसने वाला है, घंटी बजा रहा है और रेखा रेखा चिल्ला रहा है।
2: रेखा।
1: हाँ।
2: रेखा।
0: अरे अब दरवाजा खोलो ना बेटा, न खोलोगे तो दाढ़ी वाला हाथी चला थोड़े ही जाएगा।
1: ठीक है पिताजी खोलता हूँ।
3: नमस्कार चाचा जी, नमस्कार, चरण स्पर्श करता हूँ चाचा जी।
0: चिरंजीवी भव।
3: अरे उमेश तुमने मुझे देखा नहीं, नमस्कार नहीं किया।
1: नमस्कार।
4: कौन आया है? अब मैं नहा रही थी, कोई चिल्ला रहा था रेखा रेखा। अरे मजले भैया आप, अरे आप कब आए?
1: अभी आए हैं तुम्हारे मजले भैया।
4: नमस्ते मजले भैया।
3: नमस्ते नमस्ते बहना, नमस्ते।
4: बहुत दिनों के बाद आए, ना कोई फोन किया ना पत्र आया, कहाँ थे मजले भैया आप?
3: अरे कहाँ रहूंगा रेखा, सीमा रीता अनीता के यहाँ था।
4: सब दीदी लोग कैसी हैं?
3: सब अच्छी हैं रेखा, सब अच्छी हैं, अपने

0: बाल बच्चों के साथ सब कुशल मंगल से हैं।
1: अरे बच्चों, कहाँ हो? तुम्हारे मछले मामा जी आए हैं।
2: हाँ छुट्टी है ना, ना जाने बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, ऊपर होंगे, देखकर बहुत प्रसन्न होंगे।
0: पापा देखो पापा, बच्चों के लिए मैं 5 किलो देशी घी की मिठाई।
2: अरे मझले भैया, 5 किलो देशी घी की मिठाई लाने की क्या आवश्यकता थी? बच्चे खाकर बीमार हो जाएंगे।
3: अब क्या बताऊं रेखा बहन, लेकर मैं आ रहा था, ट्रेन में डिब्बा ही छूट गया।
0: पिस्ता बादाम की 500 रुपए किलो वाली मिठाइयाँ थी।
4: विजय बेटे, तुम्हारा 2500 रुपए का शुद्ध घाटा हो गया।
3: चाचा जी,
0: यहाँ स्टेशन के पास हरे लाल की दुकान से शुद्ध देशी घी की बनी 5 किलो नमकीन ला रहा था, 200 रुपए किलो वाली, अब वो रिक्शे पर ही छूट गया।
4: विजय बेटे, अरे तुम्हारा फिर 1000 रुपए का शुद्ध घाटा हो गया है।
2: भैया किसका मुंह देखकर चले थे, मिठाई भी छूट गई, नमकीन भी छूट गया।
4: अरे भाई, चलते समय शीशे में अपना ही चेहरा तो देखकर हर कोई चलता है। राम राम राम राम। आज नहीं, कई बार से ऐसा हो रहा है, कभी ट्रेन में मिठाई का डिब्बा छूट जाता है, कभी नमकीन कुली लेकर भाग जाता है, कभी फल रिक्शे से गिर जाता है, कभी कपड़ा कोई चुरा ले जाता है। देखो विजय बेटे, शीशे में अपना चेहरा देख कर ना चला करो, समझे? तुम्हारा बड़ा घाटा होता है और बच्चों को भी कुछ नहीं मिलता, केवल मुँह देखते रहते हैं बेचारे।
2: पिताजी, जब से मछले भैया 15 लाख रुपया लेकर अपने से रिटायर हो गए हैं ना, बहुत भूलने लगे हैं।
4: हाँ बहू, जब आते हैं 2-3 हजार की मिठाई, नमकीन, खिलौना, कपड़ा, ये सब ट्रेन में रह जाता है।
0: अब हाँ चाचा जी, अब ऐसी ही बुद्धि हो गई है, अब बच्चों की मिठाई नमकीन भी भूल जाता हूँ।
4: विजय बेटे जी, देखो भैया, तुम ना लाया करो। अरे बार बार भूल जाते हो, पैसा देकर मुझसे मंगवा लिया करो, मैं ला दूंगा।
0: हाँ चाचा जी, अच्छी बात है, आपसे ही मंगा लूंगा।
4: देखो देखो, अभी बच्चे खेल रहे हैं, आकर मामा जी को खाली हाथ देखेंगे, वो क्या समझेंगे? जब तक बच्चे खेल कर आएंगे, मैं लाए देता हूँ। 5 किलो क्या करोगे, 1-1 किलो मंगवा लिया करो, कल फिर ताजी ले आऊंगा।
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ चाचा जी, लेकिन वो ऐसा है कि मेरे पास तो वो 1000 रुपए का नोट
4: तो
0: है।
4: हुआ है? बड़ी दुकान से मिठाई नमकीन लाऊंगा, 1000 का नोट टूट जाएगा।
0: स्नान करने के बाद मैं ही चलता हूँ।
4: देखो बेटे, 1000 का नोट लेकर मैं भाग नहीं जाऊंगा।
0: अरे नहीं चाचा जी, कैसी बातें करते हैं, अब आप कहाँ कष्ट करिएगा, मैं स्वयं जाऊंगा चाचा जी।
4: अच्छा बेटे, तुम ही ले आना।
2: मछले भैया, नाश्ते में क्या लेंगे आप?
0: अरे जो तुम खिलाओगी, अब छोटी बहन हो, बड़े भाई को तो अच्छा ही लगेगा।
2: अच्छा मछले भैया, पराठा और आलू पनीर की सब्जी बनाए देती हूँ, दही भी जमी हुई है।
0: रेखा, वो देशी घी का हलवा भी बना देना।
2: वो तो बनाऊंगी ही बनाऊंगी।
0: रेखा, पराठा भी तरह वो देशी घी में बनाना बड़ा स्वादिष्ट होता है।
2: हाँ मछले भैया, पराठा देशी घी का ही बनाऊंगी, कल ही 1 कनस्तर देशी घी आया है।
0: 1 कनस्तर?
2: मुझे पता है आपको देशी घी का पराठा बहुत पसंद,
0: बहुत पसंद है।
2: अब आप स्नान पूजा अर्चना कर लीजिए। हाँ
0: अब स्नान पूजा अर्चना बाद में करूंगा रेखा, पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। अब पेट में चूहे कूद रहे हैं, कल सुबह 8 बजे अनीता के यहाँ से खाकर ट्रेन में बैठा था, रास्ते में खाने के लिए जो अनीता ने दिया था वो मैं रिक्शे पर ही बैठ कर खा गया, अब 24 घंटे से भूखा हूँ।
2: अच्छा भैया, मैं पराठा सेकती हूँ, तब तक तुम पिताजी से बात करो, बड़ा अच्छा लग रहा है, सच घर भरा भरा लग रहा है।
1: अभी मैं आपको जाने ना दूंगी भैया।
0: अरे मैं अभी ना आता, मैंने सोचा सब मुझको याद कर रहे होंगे, देर से जाऊंगा तो चाचा जी बहुत क्रोधित होंगे और कई महीने तक जाने भी नहीं देंगे, क्यों चाचा जी?
4: हाँ बेटे हाँ हाँ, अरे कई साल ना जाने देता तुमको।
5: वाह, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना है भाई, वाह, ना देशी घी की बात ही कुछ और है, वाह।
2: भैया और लीजिए ना, शुद्ध देशी घी का है, पिताजी क्रीम से निकलवाकर 1 कनस्टर देशी घी लाए हैं, लीजिए ना और खाइए।
5: लगता है शुद्ध देशी घी है।
2: मछली भैया और लीजिए ना, आप तो बड़ा हाथ रोक कर खा रहे हैं।
0: लेता हूँ अब।
4: विजय बेटे, देखो खाते जाओ, खाते जाओ, 25 घंटे से भूखे हो ना, इस कारण भोजन में अधिक स्वाद लग रहा होगा। खाते जाओ
2: और लीजिए भैया, आप संकोच क्यों कर रहे हैं, लीजिए ना।
5: लेता हूं भाई, बहुत स्वादिष्ट है। ये देसी घी जो चाचा जी लाए हैं क्रीम

0: वाला, इसकी तो बात ही कुछ और है। शुद्ध देसी घी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। वाह बहुत सुंदर रेखा, बड़ी प्रसन्नता की बात है तुम्हारे यहाँ शुद्ध देसी घी का भोजन बनने लगा। लगता है उमेश का महंगाई भत्ता बढ़ गया है और चाचा जी की पेंशन भी बढ़ गई है। भाई वाह।
1: अरे विजय बेटा, न उमेश का महंगाई भत्ता बढ़ा है और न मेरी पेंशन बढ़ी है। हमारे यहाँ रोज देसी घी का भोजन नहीं बनता, ये तुम्हारे लिए बहू ने बनाया है, हमें भी स्वाद मिल रहा है।
2: मजले भैया, दो एक रोटी और लीजिए ना।
0: अरे दो एक क्या रेखा, अभी 8-10 रोटी और लूंगा, बस घी चुपड़ चुपड़ कर देती जाना। मैं मूर्ख थोड़े हूँ, सदा अपने पास चूरन भारी भोजन हजम रखता हूँ। ये देखो वाह बहुत स्वादिष्ट भोजन, वाह वाह रेखा वाह।
2: दही और लीजिए मजले भैया, दही।
0: दही बहुत स्वादिष्ट है, दही भी बहुत स्वादिष्ट है।
1: अरे विजय बेटे खाते जाओ, बहू बड़ी सयानी है, पेट देख कर भोजन बनाती है, किंतु मुझे आज विश्वास है कम पड़ जाएगा बहू।
0: कम पड़ जाएगा? अब तुम लोग जाने नहीं दे रहे हो, आज 10 दिन हो गए, अब एक दिन के लिए आया था।
3: मजले भैया 10 दिन हो गए, कितने काम पड़े होंगे।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, सेवा निवृत्त।
1: अरे भैया विजय का क्या, न जोरू न जाता भगवान से नाता, जिसने मुंह चीरा है वो भोजन दे रहा है, भाग्य में जहाँ का भोजन होता है विजय वहाँ पहुँच जाता है। हाँ
2: मजले भैया, पनीर का पकौड़ा आपको बहुत पसंद है ना, गर्म गर्म बनाकर लाई हूँ आपके लिए, लीजिए खाइए।
0: अरे बहुत नहीं रेखा, बहुत बहुत पसंद है। वाह बहुत स्वादिष्ट है, शुद्ध कड़वा तेल, वाह वाह बहुत स्वादिष्ट बना।
1: हे विजय बेटे जरा धीरे धीरे खाओ, मुंह जल जाएगा, तोड़ तोड़ के खाओ ना, नहीं गले में फंस जाएगा।
0: वाह अरे चाचा जी आप भी स्वाद लीजिए ना। अरे उमेश तुम भी तो लो पकौड़ा, बड़ा स्वादिष्ट बना है भाई।
4: है कहाँ जो लूँ,
0: क्या पनीर पकौड़ा था, बहुत स्वादिष्ट बनाया है रेखा, बहुत स्वादिष्ट। रेखा और है क्या?
2: अब नहीं है मछले भैया, कल फिर बना दूंगी भैया, कल फिर बना दूंगी।
4: 500 ग्राम पनीर लाया था।
0: अरे उमेश इतने मुंह में केवल 500 ग्राम पनीर, अरे 1000 ग्राम से कम न लाया करो भाई।
4: अरे मछले भैया मित्रों से उधार लेकर घर चला रहा हूँ, तब किचन से देशी घी की सुगंध आती है, उधार ना लूं तो घासी घी की सुगंध भी ना आए। 1 महीने का नहीं कई महीने का बजट बिगड़ गया है, 1 महीने का राशन 10 दिन में साफ हो गया।
2: कैसी बात कर रहे हैं, 10 दिन में राशन साफ होने का भैया से क्या संबंध?
0: बताओ बताओ क्या संबंध?
3: रेखा रेखा
2: आई मजले भैया, आई।
3: देखो रेखा
2: जी भैया,
3: आज भोजन में क्या क्या बना रही हो?
2: भिंडी अरवी की सूखी सब्जी, भरवा परवल करेला और हींग आलू।
3: देखो रेखा मेरे लिए रोटी ना बनाना।
2: क्यों मजले भैया, आज आप भोजन नहीं करेंगे?
3: नहीं नहीं, नहीं, नहीं मेरे लिए रोटी नहीं, पराठा सेक दो, देशी घी का पराठा बहुत स्वादिष्ट होता है।
2: घी का पराठा?
3: घी तो अभी होगा ना?
2: हाँ मजरे भैया अभी आधा कनस्टर है।
3: फिर तो सूजी या गाजर का हलवा भी बना देना, खाने के बाद मीठा खाते बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा स्वाद मिलता है।
2: अच्छा भैया बना दूंगी।
3: दही तो होगा ना?
2: नहीं भैया आज दही नहीं जमी, दूध नहीं बचा ना, आपने रात में दूध पी लिया था ना, अभी 250 ग्राम ताजी दही मंगवाती हूँ।
3: अब 250 ग्राम से क्या होगा, इतने मुंह, अब 1000 ग्राम से कम दही न मंगाया करो। उमेश अब 1000 ग्राम से कम दही न लाया करो भाई।
1: उमेश बेटा।
4: जी पिताजी।
1: 1000 ग्राम मीठी दही ले आओ और विजय से 1000 का नोट ले लो, बच्चों के लिए ताजी मिठाई भी लेते आना, 20 दिन से मिठाई आजकल पर तर रही है।
4: जी पिताजी जी। मजले भैया बच्चों के लिए कितनी मिठाई लाऊं?
3: देखो अभी रहने दो उमेश, वो दही कल ले आना, आज बहुत सी चीजें बनी है ना, रेखा ने सब बना दिया है। अब देखो बच्चों का मिठाई खाने का मन भी नहीं है, आज सुबह से तो एक बार भी नहीं कहा उन्होंने।
4: पिताजी मजले भैया तो जाने का नाम ही नहीं लेते, 25 दिन हो गए, एक बूंद भी आंखों में लाज का पानी नहीं, छोटी बहन के यहाँ मांग मांग कर खाते हैं।
1: हाँ उमेश ये तो महासंकट है।

0: स्वामी कृपा करें, स्वप्न में तो दिखाई दिया था एक दाढ़ी वाला हाथी घर में घुस आया।
1: हाँ पिताजी।
0: क्या किया जाए उमेश, कैसे ये संकट टले?
1: पिताजी, यदि महामृत्युंजय का जाप कराया जाए तो क्या ये संकट टल जाएगा? यदि ऐसा हो सकता हो तो आज ही मैं अपने कार्यालय से एडवांस ले लेता हूँ।
0: धीरज रखो बेटा, कोई उपाय अवश्य निकलेगा। मैं रात भर एक पल नहीं सोया, जागता रहा, विचार करता रहा क्या किया जाए जो दाढ़ी वाला हाथी चला जाए।
1: हाँ पिताजी, मगर निर्लज्ज कहीं ना गया तो क्या होगा? रेखा समझती नहीं और खिलाए जा रही है और निर्लज्ज खाए जा रहा है। पिताजी पिताजी, मुझे ऐसा लगता है दाढ़ी वाला हाथी जाएगा नहीं।
0: राम न करे, राम न करे। अरे ऐसा बुरा मुंह से ना निकालो उमेश।
1: निर्लज्ज छोटी बहनों के यहाँ खा रहा है, खाता ही जा रहा है।
0: रेखा ने देसी घी का

0: बेइज्जती नहीं और खिलाए जा रही है और निर्लज्ज खाए जा रहा है। पिताजी पिताजी, मुझे ऐसा लगता है दाढ़ी वाला हाथी जाएगा नहीं।
1: राम न करे, राम न करे। अरे ऐसा बुरा मुंह से ना निकालो उमेश।
0: निर्लज्ज छोटी बहनों के यहाँ खा रहा है, खाता ही जा रहा है।
1: रेखा ने देसी घी का भोजन खिला दिया है ना, मुझे भय है साल भर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा।
0: अरे पिताजी पिताजी, आप मुझे मना करते हैं और अपने मुंह से अशुभ निकाल रहे हैं, साल भर ना जाएगा। राम न करे, राम न करे, राम न करे।
2: रेखा, वो आलू गोभी वाली सब्जी जरा। हाँ,
3: जी जी दिया भैया, ये लीजिए।
2: वो उसमें बूंदी का रायता है क्या?
3: हाँ जी, हाँ, लेंगे। हाँ ये लीजिए, ये हाँ,
2: ये पालक पनीर वाली सब्जी थोड़ा। हाँ,
3: लीजिए लीजिए।
2: हाँ, एक पूड़ी।
3: हाँ, लीजिए दो पूड़ी ले लीजिए।
2: दे एक तो क्या देती हो, दिया करो तो थोड़ा। बस बस बस रेखा बस। अरे और लीजिए और लीजिए करके तुमने बहुत खिला दिया।
0: अब बस कर रहे हैं भैया, किसी के लिए एक पूड़ी एक चूर सब्जी भी नहीं बची।
3: मुंह ना बनाओ, अभी आटा गूंथ कर पूरी बनाए दे रही हूँ, अचार के साथ खा लेना।
0: हाँ हाँ खा लूंगा, अरे कुछ मिले भी तो।
2: वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना था भाई। दो गिलास पानी पी चुका, हाथ धो चुका, किंतु मुंह से अभी तक देशी घी का स्वाद जा ही नहीं रहा है और हाथ में देशी घी की सुगंध आ रही है। मन करता है हाथ सूंघता रहूं, सूंघता रहूं।
0: अरे तो सूंघते रहिए ना, मना किसने किया है।
3: मछले भैया, आप कई दिन से कह रहे हैं ना, आज कचौड़ी बनाने जा रही हूँ।
2: अरे वाह, देशी घी की कचौड़ियाँ। वाह वाह वाह, देशी घी की तो बात ही कुछ और है।
0: मछले भैया, देशी घी की बात और क्यों ना हो, 180 रुपए किलो पड़ता है, पिताजी अपने सामने क्रीम से निकलवा कर लाते हैं।
1: अरे विजय बेटे।
2: जी चाचा जी।
1: कब जा रहे हो बेटा?
2: बस चाचा जी, अब नहीं रुकूंगा। आप लोग के कहने से बहुत रुक चुका, अब एकदम नहीं रुकूंगा।
1: विजय बेटे, जब का टिकट कहो उमेश ला देगा।
0: हाँ बिल्कुल ला दूंगा। हाँ मछली भैया, मैं ला दूंगा, चाहे उस दिन कार्यालय ना जाना।
1: देखो बेटे, आज 10 तारीख है, 20-21 का ला दो।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। अरे 20 का ला दूंगा, 20 का ना मिला तो 19 का ला दूंगा, 19 का ना मिला तो 18 का ला दूंगा, 18 का नहीं तो 17 का ला दूंगा, 17 को नहीं तो 16 का ला दूंगा, 16 को नहीं।
1: अरे उमेश बेटे, उमेश बेटे, टिकट लाने इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो भाई? केवल बनियान पहने हो, अरे चप्पल तो पहन लो ना। बहुत देर में आए उमेश, कहाँ थे?
0: मझले भैया को ट्रेन में बैठाकर मंदिर चला गया था।
1: राम की कृपा से संकट टल गया।
0: हाँ पिताजी, मझले भैया के जाने की खुशी में मंदिर वाली मिठाई की दुकान से 1 किलो मोतीचूर का लड्डू लाया हूँ।
1: अच्छा किया, अच्छा किया। अरे भगवान की कृपा से संकट तो टल गया ना।
0: बिल्कुल पिताजी।
1: देखो तो ये कौन आया।
0: देखता हूँ।
4: नमस्कार चाचा जी, नमस्कार। साधन चरण स्पर्श चाचा जी, साधन चरण स्पर्श।
1: विजय, तुम तो ट्रेन में बैठ गए थे।
4: चाचा जी, मैं अगले स्टेशन पर उतर गया, टेम्पो पर बैठकर वापस चला आया। बच्चों के लिए 5 किलो देसी घी की मिठाई और 5 किलो देसी घी का नमकीन ला रहा था, लेकिन वो टेम्पो में ही छूट गया। चाचा जी,
1: क्यों उतर गए, क्यों वापस आ गए भाई?
4: अब चाचा जी, आपके प्राण की सौगंध, एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे ऐसा लगा आपका मन नहीं था कि मैं जाऊं। अब आपने मन न होते हुए भी भारी मन से मुझे जाने की आज्ञा दे दी थी। चाचा जी, यदि मैं चला जाता तो कितना पाप लगता, और उमेश भी मन से नहीं चाहता था कि मैं जाऊं।
0: मैं भी मन से नहीं चाहता था कि आप जाएं। अरे तभी तो मैं मंदिर गया था कि आप वापस लौट आए।
4: मुझे पता है उमेश, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, रेखा से भी अधिक मुझसे प्रेम करते हो।
0: हाँ, हाँ, रेखा से भी अधिक प्रेम करता हूँ। और पिताजी, पिताजी तो आपको आंख का तिल समझते हैं।
4: पता है, पता है, पता। अरे ये मिठाई का डिब्बा कहाँ से आया, देखू देखू कौन सी मिठाई है। अरे वाह, बिल्कुल ताजी है। वाह वाह वाह, बड़ा स्वादिष्ट मोती चूर का लड्डू,

0: देसी घी का बना है। वाह वाह, अरे वाह, मुंह में रखते ही एकदम घुलता जा रहा है भाई।
1: अरे मछली भैया आप,
0: देखो चाचा जी का मन नहीं था इस कारण मैं वापस लौट आया। अब जाते समय चाचा जी बहुत खिन्न हो गए थे ना।
1: बहुत अच्छा किया मछले भैया, बहुत अच्छा किया। घर बड़ा सूना सूना लगने लगा था। अब देखो बच्चों, मछले मामा जी तुम्हारे लिए मोती चूर का लड्डू लाए हैं।
0: मैं हाँ।
1: बच्चे कहाँ खेलते रहते हैं। मैं आपके लिए देशी घी का नमकीन बनाती हूँ। अभी कनस्तर में कुछ देशी घी पड़ा है।
0: पड़ा है, देशी घी का नमकीन बड़ा ही स्वादिष्ट होता है।
1: मछले भैया, मैंने आपको ट्रेन में खाने के लिए जो देशी घी का पकवान बांधा था, क्या ट्रेन में छूट गया?
2: ट्रेन में ना छूटा होगा, पेट में चला गया होगा।
1: उमेश, तुम मछली भैया से ठट्टा करते हो।
0: अब करने तो रेखा, करने तो, हमारा तो संबंध ही ऐसा है। अब जीजा साले के बीच में हंसी ठट्टा नहीं होगा तो किसके बीच में होगा।
2: पिताजी।
3: हाँ बेटे।
2: पिताजी, पिताजी क्या विचार कर रहे हैं? बहुत गंभीर और खिन्न है।
3: हाँ बेटे, ये दाढ़ी वाला हाथी 3 घंटे बाद लौट कर फिर आ गया, टल ही नहीं रहा है।
2: हाँ पिताजी, मझले भैया तो जाते ही नहीं, जाते हैं तो फिर आ जाते हैं। जाने का 1000, 2000, 5000 ले ले तो मैं मित्रों से उधार ला कर दे दूंगा।
3: उमेश, अधिक विचलित न हो बेटे, मैंने तो सोच लिया है। राम ने चाहा तो दाढ़ी वाला हाथी ऐसा जाएगा फिर कभी नहीं आएगा।
2: राम करे मझले भैया जाए तो फिर कभी ना आए।
0: वाह वाह चाचा जी, आपने खाया? रेखा ने देशी घी की जलेबियां बनाई है। वाह वाह, देशी घी की जलेबी की बात ही कुछ और। अच्छा
3: हाँ, विजय बेटे, तुम्हारी छोटी बहन ना बड़ी गुणवत्ती है। तुम्हारे मुंह में स्वाद है और उसके हाथ में स्वाद है।
0: हाँ चाचा जी है।
3: विजय बेटे, बेटे एक समस्या आ गई है, कठिनाई हो रही है ना। अब तुमसे क्या कहूँ, मान और सम्मान की बात है।
0: कैसी कठिनाई चाचा जी, बताइए।
3: बेटे मुझे 50,000 की आवश्यकता है।
0: 50,000?
3: अरे भाई, तुम्हारा 15 लाख तो ब्याज दर ब्याज बढ़कर बैंक में 20-21 लाख हो गया होगा। तुमने तो अभी तक 1 पैसा भी ना निकाला होगा। भाई उसी में से 50,000 दे दो
0: चाचा जी। 50,000?
3: हाँ विजय बेटे, 50,000 वचन देता हूँ बेटे, जबान का पक्का हूँ। और फिर बेटे इस आयु में चिता पर लेटे हुए झूठ बोलूँगा। अरे जब मेरे पास होगा तब दूंगा। और यदि जो बेटा मेरा निधन हो जाए ना, तो 50,000 के लिए क्षमा कर देना है। समझना, तुम्हारे पास 50,000 नहीं था।
0: 50,000 नहीं था, क्षमा कर देना।
3: अरे भैया कब दोगे? तुम आज ही चले जाओ ना। अरे 2 दिन में लेकर आ जाना। मान और सम्मान की बात है बेटा, मैं फिर वचन देता हूँ, जब मेरे पास होगा मैं लौटा दूंगा। और यदि मेरा निधन हो गया तो क्षमा कर देना।
0: क्षमा कर देना।
3: आज जा रहे हो ना बेटा, जा टिकट मंगाए दे रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, अच्छा।
3: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा। लड्डुवन के भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुवन के भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुवन के भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुवन के भोग लगे।
2: पिताजी पिताजी।
3: अरे क्या है उमेश, पूजा अर्चना में क्यों बाधा डाल रहे हो भाई?
2: पिताजी पिताजी
3: क्या हुआ?
2: अरे पिताजी, मैं कल रात से बहुत विचलित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत व्याकुल हूँ। पिताजी पिताजी, कल रात 9 बजे जब मैं मंदिर से आ रहा था, फिर वही ज्ञानी विद्वान ज्योतिषी पंडित मिला। मस्तक रेखा देखते ही बोला, बहुत बड़ा महासंकट आने वाला है। और पिताजी, प्रातःकाल मैंने फिर बहुत बुरा सपना देखा। वो दाढ़ी वाला हाथी घर में घुसकर किचन में बैठ गया है। मैंने और आपने मिलकर डंडे से मार मार कर बहुत भगाया, किंतु दाढ़ी वाला हाथी अपने स्थान से हिला भी नहीं।
3: अरे

0: बेटा चिंता ना करो, अब दाढ़ी वाला हाथी नहीं आएगा।
1: कहीं आ ना जाए पिताजी, बहुत भय लग रहा है। रात उल्लू भी बोल रहा था, कुत्ते बिल्ली भी रो रहे थे, भोर मुर्गा के स्थान पर काला कौआ भी बोल रहा था।
0: चिंता ना करो बेटे, अब दाढ़ी वाला हाथी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा।
1: पिताजी, कौन आया? कहीं कहीं दाढ़ी वाला हाथी ना
0: नहीं,
1: हो।
0: और कोई होगा बेटा, दाढ़ी वाला हाथी अब कभी नहीं आएगा। जाकर देखो।
1: अच्छा, देखता हूँ।
2: अरे चाचा जी, लुट गया चाचा जी,
0: है?
2: चाचा जी,
0: है?
2: चाचा
0: अरे क्या हुआ विजय,
2: जी।
0: क्या हुआ बेटा?
3: क्या हुआ, क्या हुआ मजरे भैया? आपके रोने की आवाज सुनकर मैं भाग कर आई।
2: अरे यार, ट्रेन में डाका पड़ गया बहन, डाका पड़ गया। 40 डाकू थे, 40
0: डाका पड़ गया।
3: डाका पड़ गया भैया?
2: हाँ, चाचा जी, डाका पड़ गया। मैं बैंक से 50,000 के स्थान पर अपना पूरा जमा धन 40,22,420 रुपए 50 पैसे निकाल कर ला रहा था। मैंने सोचा चाचा जी आपके नाम से बैंक में रख दूंगा, जब आपको आवश्यकता हो उधार ले लिया करिएगा, और बाद में जब आपके पास रुपए आ जाए तो वापस कर दिया करिएगा। आया है चाचा जी, सब धन चला गया, अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा। उमेश, जाकर रिक्शे का किराया दे दो भैया।
3: भैया, पिताजी के उधार मांगने के कारण आपके पास एक पैसा भी ना बचा।
2: हाँ मैडम।
3: आप लखपति।
4: कली मुर्फी का निलिखा नाटक अभी आप सुन रहे थे, दाढ़ी वाला हाथी। भाग लेने वाले कलाकार थे रामचंद्र गुप्त, शैलेश कुमार श्रीवास्तव, अभिलाष नारायण और रूपा सहाय। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित उमा शंकर का राग हेम बिहाग में सितार वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित उमा शंकर का राग हेम बिहाग में सितार वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री लतीफ अहमद खां। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Navanita Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU designated terrorist and terrorist entities, including those under 1,267 UNSC sanctioned committees. They underline the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also call for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defence and security cooperation, Mr. Modi said both countries agreed to further strengthen collaboration in cyber security, maritime security and counter-terrorism.
2: Aaj humne cyber security, maritime security और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: Later, President Draupadi Murmu received Cyprus President Nikos Christodoulidas at Rashtrapati Bhavan today. She also hosted a banquet in his honor. Welcoming President Nikos Christodoulidas and his delegation to India, President Murmu said India and Cyprus share close relations based on trust and goodwill. She said bilateral relations have been elevated to the level of a strategic partnership, which reflects the growing maturity, depth and mutual trust.